0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7।
1: आज का योगा टिप। हमेशा से हमें ये कहा गया है, यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा काम करते हैं। जब हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, हमें नींद पूरी करनी चाहिए। मस्तिष्क को शांत करने के लिए सबसे जरूरी होती है नींद, पर्याप्त नींद और अच्छी नींद। रोज 7 से 8 घंटे की नींद शरीर की मरम्मत करती है, मानसिक स्वास्थ्य सुधारती है और त्वचा व बालों को भी स्वस्थ रखती है। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

0: सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और योग की योग पाठशाला में 30 दिवसीय योग शिविर में प्रतिदिन आकर के योग अभ्यास करते होंगे। सर्वप्रथम तो आज हम आपसे ये पूछते हैं कि योगशाला में आकर के आप सभी को कैसा लगता है, क्योंकि योगशाला में हम एक एक प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और देते हैं, तो बड़ा ही आनंद सा महसूस होता है। आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एक प्रेरणा और एक श्रृंखला बन चुकी है। हमारे शरीर और मन मस्तिष्क को किस तरीके से संतुलन रखने में यह सहायक होता है, आप सभी जानते हैं। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि यदि हम कितना भी परेशान रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रोजमर्रा के काम कार्य की रुचि में, उनकी सूची में, उनके व्यवहार में, लेकिन यदि अगर हम योग से जुड़ जाते हैं तो हमारा एक व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है जिसे हम चाह करके भी उससे दूर नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम लगातार योग से जुड़ जाते हैं, लगातार नित्य सवेरे योग करते हैं और जिस दिन वह नहीं हो पाता है तो हमें पूरे दिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मानो आज हमने खाना नहीं खाया है, आज हम सोए नहीं हैं या आज हम अपने प्रिय मित्र से मिले नहीं हैं। योग हमारे लिए एक बहुमूल्य चीज है जिसे हम बिना मूल्य दिए ही ले सकते हैं, बिना कोई तकलीफ लिए ही हम कर सकते हैं, बस जरूरी है उसमें समय, लगन और विश्वास की। आइए आज के यानी कि हमारे योग शिविर के अगले दिन के लिए, जो कि आज हम करने जा रहे हैं ध्यान योग। प्रवाह सीरीज में आज का दिन जो है वो हम आपको बताएंगे ध्यान योग के बारे में। कई बार हम लोगों ने ये सोचा है कि जब हम नित्य क्रिया करने के बाद में थकावट सी महसूस होने लगती है तब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने कमरे में जाएं या किसी एकांत वातावरण में जाएं और चुपचाप से बैठ जाएं, अपनी मन मस्तिष्क और सारी वृत्तियों को शांत करके एकाग्र होकर बैठ जाएं। आपको पता है इस स्थिति को क्या कहा जाता है? योग के माध्यम से, योग के अभ्यास से, योग की श्रृंखला में, योग की कक्षा में हम इसे ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग बहुत ही सरल और एक सुलभ सा साधन है अपने आप।
1: योग करें, योग करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
0: आज का योगा टिप। हमेशा से हमें ये कहा गया है, यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ है तो हम अच्छा सोचते हैं और अच्छा काम करते हैं। जब हमारा मस्तिष्क शांत रहता है हमें नींद पूरी करनी चाहिए। मस्तिष्क को शांत करने के लिए सबसे जरूरी होती है नींद, पर्याप्त नींद और अच्छी नींद। रोज 7 से 8 घंटे की नींद शरीर की मरम्मत करती है, मानसिक स्वास्थ्य सुधारती है और त्वचा व बालों को भी स्वस्थ रखती है। स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा, उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम।
2: सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

सुप्रभात दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और योग की योग पाठशाला में 30 दिवसीय योग शिविर में प्रतिदिन आकर के योग अभ्यास करते होंगे। सर्वप्रथम तो आज हम आपसे ये पूछते हैं कि योगशाला में आकर के आप सभी को कैसा लगता है, क्योंकि योगशाला में हम एक एक प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं और देते हैं तो बड़ा ही आनंद सा महसूस होता है। आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए बहुत ही आवश्यक एक प्रेरणा और एक श्रृंखला बन चुकी है। हमारे शरीर और मन मस्तिष्क को किस तरीके से संतुलन रखने में यह सहायक होता है आप सभी जानते हैं। कहने का तात्पर्य केवल यह है कि यदि हम कितना भी परेशान रहते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रोजमर्रा के काम कार्य की रुचि में, उनकी सूची में, उनके व्यवहार में, लेकिन यदि अगर हम योग से जुड़ जाते हैं तो हमारा एक व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है जिसे हम चाह करके भी उससे दूर नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम लगातार योग से जुड़ जाते हैं, लगातार नित सवेरे योग करते हैं और जिस दिन वह नहीं हो पाता है तो हमें पूरे दिन एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मानो आज हमने खाना नहीं खाया है, आज हम सोए नहीं हैं या आज हम अपने प्रिय मित्र से मिले नहीं हैं। योग हमारे लिए एक बहुमूल्य चीज है जिसे हम बिना मूल्य दिए ही ले सकते हैं, बिना कोई तकलीफ लिए ही हम कर सकते हैं। बस जरूरी है उसमें समय, लगन और विश्वास की। आइए आज के यानी कि हमारे योग शिविर के अगले दिन के लिए जो कि आज हम करने जा रहे हैं ध्यान योग। प्रवाह सीरीज में आज का दिन जो है वो हम आपको बताएंगे ध्यान योग के बारे में। कई बार हम लोगों ने ये सोचा है कि जब हम नित्य क्रिया करने के बाद में थकावट सी महसूस होने लगती है तब क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम अपने कमरे में जाएं या किसी एकांत वातावरण में जाएं और चुपचाप से बैठ जाएं, अपनी मन मस्तिष्क और सारी वृत्तियों को शांत करके एकाग्र होकर बैठ जाएं। आपको पता है इस स्थिति को क्या कहा जाता है? योग के माध्यम से, योग के अभ्यास से, योग की श्रृंखला में, योग की कक्षा में हम इसे ध्यान योग कहते हैं। ध्यान योग बहुत ही सरल और एक सुलभ सा साधन है अपने आप को एकत्रित करने का। एकत्रित करने का महत्व मैं बताती हूँ। दिन भर क्या होता है, सबसे पहले जब हम किसी काम पे जाते हैं, हम अगर महिलाएं घर में भी रहते हैं तो हमारा मन जो है वह घोड़े से भी तीव्र गति की तरह कभी इधर कभी उधर दौड़ता रहता है। महिलाओं की चिंता, बच्चों की चिंता, आगे भविष्य में क्या होना है, इन सब की चिंता। लेकिन जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने आने वाले भविष्य की चिंता, परीक्षा की चिंता, अपने लक्ष्य को पाने की चिंता, ये सारी चिंताओं से घिरा हुआ हमारा मन मस्तिष्क इस तरीके से झंझोड़ता रहता है अपने आप को। काश हमें इन सब से 10 मिनट का ब्रेक मिले और हम आराम से बैठ जाएं। कोई सुख सुविधा हमें नहीं चाहिए, हम उस समय ये सोच रहे होते हैं कि हमें सिर्फ एकांत चाहिए। तो आज हम सभी मिलकर के उस एकांत को ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे और क्या लाभ है ध्यान योग का। आइए हम आज के प्राणायाम की ओर अब चलते हैं। सर्वप्रथम आप एक स्वच्छ वातावरण में बैठे, स्वच्छ स्थान पे बैठे, यानी कि आप एक योगा मैट बिछा लें। और यदि योगा मैट आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई भी ऐसी चद्दर है जो साफ सुथरी हो, आप उसे बिछाएं और उस पर पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं। सर्वप्रथम हम अपने आप को एकांत कर लें। एकांत करने का मतलब है हमें बाहरी दुनिया की कोई भी आवाज सुनाई न दे, और यदि यह संभव हो सके तो हम सवेरे उठ करके ध्यान योग करें जिस समय हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो स्थिर रहती हैं। हमारे परिवार के कई लोग जो कि आराम कर रहे होते हैं और उस समय हम उठ करके योग की योग शाला यानी कि हमारी योग शाला में आकर के आप इसे नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। ध्यान योग के बारे में हम अभी पहले जान लें किस तरीके से करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पद्मासन की स्थिति में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, मुद्राएं यानी कि पहली मुद्रा अंगूठे के नीचे, तीन उंगलियां सामने की ओर और मुख पर प्रसन्नता लिए हुए सीधे, हमें एकाग्रचित होकर के अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम का उच्चारण करना है। ओम।
ये प्रकृति की वह आवाज है जो कि हमें सीखनी नहीं पड़ती है। ओम का अर्थ सर्वव्यापी यानी कि सर्व सम्मान या ओम हमें अंतर आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए ध्यान के लिए स्थान की व्यवस्था जो है हम सबसे पहले वो जान लें। ध्यान के लिए एक ऐसा नीरव और शांत स्थान ढूंढें जहां आप अलग से बैठकर निर्बंधित रूप से ध्यान कर सकें। अपने लिए एक ऐसा पवित्र स्थान बनाएं जो मात्र आपके ध्यान के अभ्यास के लिए ही हो। अगर आपको मैट पे नहीं बैठना है तो आप कुर्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बिना हत्थे वाली होती है। आप उस पर भी बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि कुछ लोग जमीन पर बैठकर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बिना हत्थे वाली जो कुर्सी होती है आप उस पे भी बैठ करके ध्यान योग लगा सकते हैं। उस कुर्सी पर सिल्क का आसन या फिर चादर या फिर हल्का कंबल जो कि बहुत पतला वाला होता है आप उसको बिछा लें और उस पर आप पद्मासन की स्थिति या पलथी मारकर बैठें। यह आपकी चेतना के प्रभाव को नीचे की ओर खींचने वाले धरती के सूक्ष्म प्रभावों को अवरुद्ध करता है। उचित स्थान के लिए प्रभावपूर्ण ध्यान करने के लिए आसन का कुछ ऐसा विशेष निर्देश जिसे हम जरूर से अपनाएंगे ध्यान योग के लिए। तो सबसे पहला है मेरुदंड सीधा होना चाहिए यानी कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ध्यान के लिए सर्वप्रथम उचित आसन यानी कि मेरुदंड सीधा होना चाहिए। उसी से एक बात याद आ गई है कि जब भक्त अपने भगवान और प्राण शक्ति को मेरुदंड में चक्रों से होते हुए ऊर्ध्व चेतना की ओर भेजने के लिए प्रयासरत होता है तो उसे अनुचित आसन कारण मेरुदंड की नाड़ियों में होने वाली सिकुड़न व संकुचन से बचना चाहिए। स्वयं को ईश्वर के आशीर्वादों के लिए उन्मुक्त रखना चाहिए। वे लोग जिनके पैरों में दर्द होता है उनके लिए ध्यान बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। हालांकि परमहंस योगानंद जी ने अपने ध्यान के लिए निम्न प्रकार से आसन लगाए हैं, जैसा कि एक बिना हत्थे की कुर्सी पर इस प्रकार बैठें कि आपके पांव जमीन पर सपाट रहें और मेरुदंड सीधा हो, पेट अंदर की ओर, छाती बाहर की ओर, कंधे पीछे और हुड्डी जमीन से समानांतर हो। यदि आसन सही है, स्थिर शरीर फिर भी तनाव रहित रहेगा और एक भी मांसपेशी को बिना हिलाए हुए ही आप निश्चल अवस्था में संभव कर सकते हैं। अब अपने नेत्र बंद करें और अपनी दृष्टि को धीरे से बिना तनाव ऊपर की ओर भूमध्य से स्थित करें। एकाग्रता के केंद्र बिंदु और ईश्वरीय बोध को दिव्य चक्षु पर यानी कि हम दोनों आंखों के मध्य जो कि हमारा ध्यान योग केंद्र मेन वहीं लगता है, वहीं पर ही आपको एकाग्र चित होकर के ध्यान लगाना है और हमें अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए समयानुसार यानी कि आप प्रारंभिक अवस्था में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट कर सकते हैं। तत्पश्चात आप ध्यान की अवधि आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं। तो ध्यान योग करने के लिए जो महत्वपूर्ण हमने निर्देश बताए उन्हीं निर्देशानुसार हम ध्यान योग की ओर करके अपने आप को एक सफल और एक स्वस्थ इंसान बना सकते हैं। जब नया अभ्यासी कठोर जमीन पर ध्यान के लिए बैठता है तो मांसपेशियों और रक्त नलिकाओं के दबने के कारण पैर सो जाते हैं। हमने अमूमन देखा हुआ है कि कई बार जब हम जमीन पे बैठ जाते हैं, पलथी मार के बैठ जाते हैं तो हमारे पैरों की नसों में झुंझुनाहट सी होने लगती है और यह समस्या अब आम सी हो गई है।

सुप्रभात, आप सुन रहे हैं रेडियो कैनेस्टली 89.6 एफएम पर भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई प्रेरणा लाती है। मैं हूं आरजी आकांक्षा, आपके ऊर्जावान सुबह की साथी। और आज है दिन सोमवार, हफ्ते की पहली किरण, नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई ऊर्जा का दिन। और हर नई शुरुआत में छिपा होता है एक नया मौका, तो उठिए, मुस्कुराइए और इस सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। हर दिन एक नया चांस है खुद को बेहतर बनाने का।

हारे हार है मन के जीते जीत, यानी मन की शक्ति। मानव को परमात्मा ने जो अनेक विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक है मन की शक्ति। मनुष्य का मन वायु और प्रकाश की गति से भी अधिक गतिमान रहता है। उसमें भांति भांति के विचार आते हैं, उनमें अच्छे विचार बुरे विचार सभी निहित है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन मन के इन विचारों से ही संचालित रहता है। मानव का मन बहुत अशांत और चंचल प्रकृति का होता है। इस अशांति के मूल में मुख्य रूप से मनुष्य की मोह माया ही होती है।

हमारे ग्रंथों में उल्लिखित है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही उन बंधनों से मुक्ति दिलाता है। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देता है तो पल भर में हमें पतन की गहराइयों में भी धकेल देता है। ऐसे में अशांत एवं चंचल मन को स्थिर और नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कबीर जी के दोहे के अनुसार, मन ही स्वरूप देव निरंजन, तू है लाख भरमाए, हे हंसा तू अमर लोक का

जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि मन की साधना से बड़ी कोई साधना नहीं, अंतर्मन से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। मनुष्य के मन में यदि दुर्बलता व्याप्त है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। कमजोर मन वाला व्यक्ति आसान काम करने में घबराता है। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शक्ति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। तो आज हम बात कर रहे हैं मन की, इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। बहुत पुरानी बात है, एक युवक एक ऋषि के पास गया और बोला, महाराज मैं जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए निम्न स्तर से शुरुआत करना मेरे लिए नागवारा है। अगर आपके पास कोई मार्ग हो तो कृपया मुझे सुझाएं। ये सुनकर ऋषि बोले, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मेरे आश्रम के बगीचे से गुलाब का सबसे सुंदर फूल लाकर मुझे दो। युवक बोला, अभी लेकर आता हूँ बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऋषि बोले, बड़ी बात तो नहीं है, पर एक शर्त है, जिस गुलाब को तुम पीछे छोड़ जाओगे उसे पलटकर नहीं तोड़ोगे। युवक बात मानकर बगीचे में चला गया। बगीचे में एक से बढ़कर एक सुंदर गुलाब लगे हुए थे। जब भी वह गुलाब के एक फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता, कुछ ही दूरी पर उसे उससे भी अधिक सुंदर फूल नजर आ जाता, जिसके कारण युवक आगे बढ़ जाता। ऐसा करते करते वह बगीचे के किनारे तक पहुंच गया। यहाँ उसे जो फूल मिले, जो बाकी फूल थे उनसे मुरझाए हुए थे। ये देखकर युवक निराश हो गया और बिना किसी फूल के आखिरकार वो खाली हाथ ही लौट आया। उसे खाली देख ऋषि बोले, क्या हुआ, गुलाब का फूल नहीं मिला। युवक बोला, बाबा मैं बगीचे के अंदर गया, वहाँ बहुत सारे सुंदर और ताजे फूल खिले हुए थे। मैं हर एक फूल को छोड़ता गया और अंत में केवल एक मुरझाया फूल ही बचा। आपने मुझे पलट कर फूल तोड़ने के लिए मना किया था, इसलिए मैं गुलाब के ताजे फूल नहीं ले पाया। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन भी इसी तरह से है, इसमें शुरुआत से ही हमें जो अवसर मिलते हैं यदि हम उसका त्याग करते जाएं, तो कई बार सफलता शुरू के कर्मों और अवसरों पर ही निहित होती है। सर्वोच्च पाने की लालसा में आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में हम खाली हाथ रह जाते हैं। तो यहाँ साफ होता है कि हमारा मन ही हमारे लिए शत्रु भी है और हमारा मित्र भी। इसको हम जैसा मार्ग दिखाएंगे ये हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा।

0: चलिए आपको ले चलते हैं मन के आध्यात्मिक स्वरूप और सकारात्मक परिणाम की तरफ। भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसका नाम विश्वरूप दर्शन योग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन कराते हैं, जिसमें ब्रह्मांड, सभी प्राणी और समय भी समाहित है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाते हैं, जिससे वो अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराते हैं, जिसमें सब कुछ समाहित है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर भय और आश्चर्यचकित हो जाता है। इस विश्व रूप यानी ब्रह्मांड रूप अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप का दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वो श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन कर पाए। ये रूप संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी प्राणी और समय को समाहित करता है, जो सृजन और विनाश दोनों को साथ साथ दिखाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में स्वयं को काल के रूप में प्रकट करते हैं, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। यहाँ काल का अर्थ है श्री कृष्ण स्वयं समय और परिवर्तन के स्वरूप है। वे कहते हैं कि वे तीनों लोकों के संहारक और उनके विराट रूप में वे संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। समय परिवर्तन और विनाश से है काल का अर्थ। श्री कृष्ण ने खुद को महाकाल के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है बड़ा समय या विनाश का स्रोत। इस अध्याय में श्री कृष्ण का काल के रूप में प्राकट्य का कारण हुआ है। कारण ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वे काल के रूप में आते हैं, जो कि विनाश का स्रोत है और जो युद्ध का कारण है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि वे केवल एक साधन मात्र हैं और जो युद्ध है उसकी व्यवस्था पहले से ही तय है। अर्जुन को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस तरह अर्जुन का समर्पण होता है और कुछ इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा और शक्ति को देखकर अपने कर्मों और कर्तव्यों को समझने और उन्हें सही ढंग से करने की प्रेरणा पाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा और अध्याय का सार। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका यह विराट रूप केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, शक्ति और शक्ति की प्रशंसा करता है। ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान का रूप सर्वत्र विद्यमान है और हमें उनके ज्ञान, शक्ति और भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए।
1: अथ एकादशो अध्याय।
2: जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता के इस 11वें अध्याय में अर्जुन श्री भगवान के ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त विश्व रूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य विश्व रूप का दर्शन कराया है और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया तथा संजय को पहले ही महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया था। इसलिए अर्जुन और संजय भगवान के इस परम दुर्लभ तेजोमय विश्व रूप का दर्शन कर सके। प्रिय भक्त जन, इस अध्याय में अर्जुन एवं संजय श्री भगवान के विश्व रूप का विस्तार से वर्णन करते हैं और इसी अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस प्रभाव को नहीं जानते थे। वे भगवान को अपना सखा मानकर साधारण ढंग से हे यादव, हे सखे कहा करते थे। अर्जुन विहार करते समय और भोजन करते समय और विश्राम करते समय श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा समझकर असत्कार पूर्वक उपहास कर दिया करते थे, परंतु आज विश्व रूप देखने पर उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। क्योंकि वे श्री कृष्ण भगवान की ऐसी महिमा नहीं देखे थे। अर्जुन युद्ध और भाषण में कभी किसी से पीछे नहीं हटते थे। आज जब श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, तब अर्जुन तत्काल प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे पिता पुत्र का अपराध क्षमा करता है, मित्र मित्र का अपराध क्षमा करता है और पति पत्नी का अपराध क्षमा करता है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना समझकर मेरे सभी अपराध क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि मैं आपकी ऐसी महिमा नहीं जानता था। मुझे आप अपना शंख चक्र गदा पद्म युक्त अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दीजिए। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और पुनः श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण रूप धारण करके व्याकुल और भयभीत अर्जुन को धीरज दिया और श्री कृष्ण भगवान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योगो नाम है। जय श्री कृष्ण।

ग्यारहवें अध्याय यानी विश्वरूप दर्शन में भक्ति का महत्व बताते हुए ये दर्शाया गया है कि भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से व्यक्ति को ज्ञान और मुक्ति मिल सकती है। इस अध्याय में कुछ प्रमुख श्लोक हैं। अर्जुन।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 981 976, 9260 981 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: के पास रिलायंस ज्वेलर्स स्टेशन रोड गोंडा
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 5346।

0: नॉट आया रे बल्कि आ गया रे, आ गया रे, आ गया रे। सो आप सभी का वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। सो आज का दिन फाइनली थर्सडे है, लेकिन सिर्फ इतना स्पेशल नहीं कि भाई वेंसडे के बाद आज थर्सडे है, बल्कि आज का ख़ास दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आज का मौसम आपने देखा कि नहीं देखा, इतनी खूबसूरत शुरुआत जब मौसम से हो जाती है सो दिन तो अलग हो ही जाता है खुद ब खुद। लेकिन अगर कुछ और बातों का ज़रा सा मज़ा और लेना चाहे तो जाहिर है ये मज़े काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। सो क्या है आज का एक्स्ट्रा वाला मज़ा? आज का जो एक्स्ट्रा वाला मज़ा है वो ये है कि कहीं ना कहीं इस बात को जाना जाए कि जब ये मौसम बदलता है तो एन्जॉय करने का मौका भी हमको अलग से मिल जाता है, यानी वो मॉर्निंग जो रोज़ यूजुअली होती है मौसम से हटकर, वो तो हम बना लेते हैं अपने खुद का दिन, खुद की सुबह। लेकिन जब कुदरत भी मेहरबान होती है और बड़ा ही सुहावना सा मौसम आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे कि सच में चार चांद लग गया हो, है ना। और आज ऐसा ही मौसम साफ नज़र आ रहा है, यानी बादलों ने घेर रखा है और कह रहे हैं मानो कि चलो घर से बाहर आओ, हवाओं को तुम्हारे लिए एज पैगाम भेजा है। बड़ा ही खूबसूरत सा इस वक्त मौसम हो रखा है और मुझे लगता है कि जो लोग जान गए हैं या जो लोग सुबह उठ चुके हैं देख लिया है उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड इवन अगर आप निकले होंगे मॉर्निंग टाइम में कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए या कुछ सामान के लिए या कुछ भी पर्पज़ से, तो फिर आपने देखा होगा कि ओहो इतना बेहतरीन मौसम, वाओ, मतलब कम ही ऐसा नसीब होता है ऐसा मौसम। सो चलिए फटाफट से उठ जाइए और मौसम का मज़ा लेते रहिए क्योंकि आरजे अदनान भी आपको फुल टू एंटरटेन करने वाले हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, मॉर्निंग वाले वाइब के साथ साथ ही मॉर्निंग सॉन्ग्स होंगे और बहुत सारी बातें आज होने वाली है आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। तो यस, अब क्या है, अब आपको सीधे ले चलना है आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताना है कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या होने वाला है, क्या कुछ कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे और आज के थॉट ऑफ द डे को हम अपनी लाइफ में किस तरह से आगे ले जाने वाले हैं, किस तरह से उसको मुकम्मल करने वाले, किस तरह से फॉलो करने वाले और किस तरह से वो हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आ रहा होगा। तो चलिए अब बताते हैं आज का मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे जो मेरे मंडे और आपके थर्सडे में आ रहा है, है ना। और सॉन्ग्स तो वैसे ही आपको दिल ले जाने वाले सुनाई देते रहेंगे।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Aajya Khan.

कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं ऐसा लगता है जैसे वो हिदायत दे रहे हैं, यानी कोई चीज़ ऐसी बता रहा है कि आप इसको सीख लो, इसको कर लो। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो ऐसा लगता है कि भाई जिम्मेदारी निभा रहा है। कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपके रिश्तों की तरह होते हैं, और कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो बड़े ही प्यारे से होते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं आपसे, आपके बदलाव को लेकर के। सो ऐसा ही है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट कहता है कि अगर कोई घर आपको घर जैसा लगता है, अगर कोई घर आपको घर जैसा लगता है, तो उस घर को घर जैसा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई घर आपको घर जैसा लगता है, तो उस घर को घर जैसा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। भाई घर हम कब कहते हैं? जब घर वाली फीलिंग आती है। घर वाली फीलिंग में क्या होता है? नहीं, ऐसा कोई परिभाषित नहीं है कि ये जो बोला जाएगा या जो ये हम मानते हैं वही परिभाषा है। हाँ, लेकिन ये बात सच है कि जहाँ हमको बेतहाशा सुकून मिलता है, जब कहीं कोई चैन आराम नहीं मिलता, तो घर पर ही आके सुकून मिलता है और ऐसा लगता है घर से कभी दिल भरने वाला है। कुछ वक्त के लिए भले ही बाहर निकल जाते हैं बोर होकर के, लेकिन वापस जब आना होता है तो घर जाने की ही जल्दी होती है। और घर वो होता है जहाँ पे आप खुद अपने जैसे रह पाते हैं, आपको बनने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो आपने चाहे आप घर को घर कहते हो, अपने मकान को आप घर कहते हो, अपने रूम को आप घर कहते हो, आपका कोई कॉर्नर हो उसको आप घर कहते हो, या कहीं और आप जाते हो और वो घर जैसा लगता हो। तो आज का थॉट यही कह रहा है कि जो भी आपको अगर घर जैसा लगता है, तो उस घर को घर जैसा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। हमेशा वो एहसास जुड़ा रहे कि वो घर ही है, और क्योंकि घर जैसी वाइब आपको पूरी तरह से उस घर से मिलती है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको घर जैसा बनाए रखा जाए। अब घर जैसा बनाए रखने के लिए क्या है? जब ज़्यादा दिमाग हम कहीं चलाते हैं तो चीज़ें, रिश्तों में अगर स्पेशली चलाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हैं। फीलिंग्स में चलाते हैं दिमाग ज़्यादा तो वहाँ पे ख़राब होती है। घर में भी ऐसे ही होता है, जो फीलिंग जहाँ से मिल रही है उसको बस वैसे ही लिया जाए, उसके पीछे का रीज़न ना जाना जाए, उसकी पड़ताल ना करने लग जाया जाए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा आम बातचीत में भी लोग अक्सर कहते हैं कि इसके पीछे की कोई वजह होगी, देखो क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। समटाइम्स आपको जो फील हो रहा होता है वो अंदर से बहुत सही फील होता है। अगर सेफ फील है, अच्छा फील हो रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा है। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और कोई अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको वाइब अगर आ जाती है, तो आप भी जान जाते हैं कि सिर्फ ये कोशिश है, ऐसा है नहीं। सो इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, आप जो सोच रहे हैं, जो करने वाले हैं, वो बिल्कुल सही है। सो अब आज के थॉट ऑफ द डे ने इतने प्यारे से मौसम में इतनी खूबसूरत सी बात कही है कि अगर कोई घर आपको घर जैसा लगता है, तो उस घर को घर जैसा बनाए रखना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो चलिए भाई, हो सकता हो किसी और का घर आपको घर जैसा लगता हो सकता हो कोई शख्स आपको घर जैसा लगता हो सकता हो कोई फीलिंग आपको घर जैसी लगती है, तो उसको वैसा ही बनाए रखें और वैसा ही फील करते रहें कि भाई ये आपका घर है। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। तो आज का थॉट ऑफ द डे आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और आज के थॉट ऑफ द डे ने अपनी बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने कहा था ना, कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जैसे रिक्वेस्ट करते हैं और बड़े ही प्यारे से होते हैं। उनमें से एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा ये थॉट आपने सुना, मुझे लगता है ये आपकी ज़िंदगी में आएगा तो डेफिनेटली जैसे बच्चों के आने से घर में किलकारियाँ गूंज जाती है, वैसे इस प्यारे से थॉट के आने से ज़िंदगी गूंज जाएगी।

0: अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि जो आपके मैसेजेस आते हैं मॉर्निंग वाले शो के, उसके बाद उसको पढ़ने में और बताने में कि क्या कुछ लिख भेजा है। तो चलिए पहले आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप सुनते हैं हमको फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से। और जब आप एप्लीकेशन से सुनते हैं तो आपको मौका मिलता है चैट करने का, और वो लाइव आपके गोंडा FM के RJs तक पहुंचता है। तो फिलहाल क्या लिखा है और क्या हम तक पहुँच आया है उन चैट के मैसेजेस में, लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

कभी कुछ किया हो या ना किया हो, आज मेरी एक बात मानिए, लिटरली बता रहा हूँ, एक बार आप छत पर जाके देखिए, विंडो से बाहर आकर देखिए, घर से बाहर निकल कर देखिए, मज़ा आ जाएगा। मतलब भाई साहब जो मौसम हो रहा है ना, हवाएं जो चल रही है, बदली जो है, कसम से बता रहे हैं, बहुत अमेजिंग सा मौसम है। सो फिलहाल गुड मॉर्निंग होंडा इसीलिए होता है कि भाई आपको उठा भी दिया जाए और एक दिन की परफेक्ट सी शुरुआत कर दिया जाए, और कुदरत ने अपने एंड से बहुत बेहतरीन सा मौसम किया हुआ है, बहुत बेहतरीन शुरुआत की है। सो जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो फटाफट से उठ के जाएं और आइए फील करिए। साथ ही साथ हम आपके मैसेजेस पढ़ने वाले हैं जो आपने भेजे हैं गुड मॉर्निंग होंडा शो में। सबसे पहले जो मैसेज आया है वो आशु मिश्र जी का आया है, और आप लिखती हैं कि सुप्रभात सर जी, सुप्रभात आपको भी। साथ ही आपने कहा कि हर सुबह कुछ याद दिलाती है, ज़िंदगी एक नई उम्मीद लाती है, आपका दिन खुशियों से भरा हो। थैंक यू सो मच, आपका दिन भी खुशियों से भरा हो। सैनी पांडे हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके अलावा महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान, आपका स्वागत है, वेलकम है। आप लिखते हैं ताज़ी हवा और ये खूबसूरत सुबह आपको एक नई शुरुआत की प्रेरणा दे, चेहरे पर मुस्कान और दिल में उम्मीद रखकर अपने दिन की शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है महेंद्र फ्रॉम राजस्थान। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट मैसेज आया है हमारी प्रीति जी का आया बहराइच से, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है। इसके अलावा हमारे अनूप जी ने भेजा है, सूरज के साथ आता है सवेरा, दूर होता है दुनिया का अंधेरा, आप हैं तो हम हैं, फिर क्यों हो जीवन में बादलों का फेरा, नई सुबह की करे जोशीली शुरुआत, क्योंकि भगवान है आपके साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है, वेलकम है आपका। एंड सविता दुबे जी हैं, लिखती हैं हरखापुर गोंडा से, सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी, स्वागत है आपका। एंड साथ ही साथ महेंद्र लिखते हैं गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत करते हैं। आशु जी लिखती हैं पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हों, वेरी नाइस थॉट, थैंक यू सो मच। सविता जी लिखती हैं बहुत ही प्यारा सुविचार लगा, अपने घर जैसा, वाओ क्या बात है, थैंक यू। हमारी गीता श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। सर शो छोड़कर मैदान में जाए खेलने के लिए, अरे बेशक आप अपने ट्रांजिस्टर को लेते हुए जाइए, खेलते रहिए आंगन में और सुनते रहिए अपना 99.6 FM। हमारे अनूप जी लिखते हैं आज के थॉट को सुनने के बाद, वह सर घर में प्रेम निवास करता है, वहीं ईश्वर भी निवास करता है। घर का मतलब सिर्फ घर नहीं, वो सुकून गाह जहाँ पर इंसान अपने आप को महफूज फील करता है, बाकी थोड़ा बहुत तो हर जगह लगा ही रहता है, बस छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए घर को प्यार का मंदिर बनाए रखते हैं। ऑफ कोर्स नाइस थॉट ऑफ द डे अदनान भाई, लव यू एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू। और क्या ही बोले, थोड़ा सा वो भी हो जाता है, अच्छा लगता है। ऑलराइट, सो चलिए, घर जैसा फील आया इन सारी बातों में, ये बहुत अच्छी बात है। एंड यस, मैं यही कह रहा हूँ लगातार कि मौसम भी एंजॉय करते रहिए, क्योंकि मौसम इतना प्यारा है, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहने वाला कि आप इसको मिस करिए। और साथ ही साथ उसी मौसम में उन्हीं हवाओं के बीच ज़रा सोचिए, अगर ये सॉन्ग्स ऐसे प्ले होते रहेंगे तो आपका तो दिन बन ही जाएगा, आज का नहीं कई दिनों का दिन बन जाएगा।

0: आपका मैसेज बड़ा प्यारा, मुझे मैसेज अच्छा लगे। सो चलिए भाई, आपके प्यारे से मैसेजेस को हमने पढ़ लिया है, बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच चैट बॉक्स पर मेंशन करने के लिए, वो लोग जो आ करके कर सकते हैं और उन्होंने किया। अब फिलहाल के लिए इस गाने को एंजॉय करिए, आने के बाद आपको सिटी अपडेट की तरफ ले चलने वाले हैं। सो बी रेडी
1: भाई। जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हाँ जी, तो जिस वादे के साथ गए थे फिलहाल वापस से आ गए हैं और आपको लेकर चलते हैं भाई आज की गोंडा अपडेट्स की तरफ और बताते हैं कि सिटी अपडेट में आज आपके लिए क्या कुछ होने वाला है। सो यस, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज का मौसम, आज की वाइब, आज के सॉन्ग्स, आज का मूड, आज का थॉट और आज की हमारी आपकी बातचीत सब कुछ बहुत स्पेशल है। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

सो यस, चलिए आपको हम बताते चल रहे हैं सिटी अपडेट्स में आज क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बता दें कि 6 पाठ्यक्रमों की सीट का आवंटन जो सूची है वो जारी हो गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सेशन 2026-27 में ग्रेजुएशन में एडमिशन के तहत 6 कोर्सेज के ऑनलाइन काउंसलिंग की सीट का आवंटन सूची जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय की तरफ से कल यानी बुध को जारी सूचना के हिसाब से बीएससी मैथ्स एनईपी की छठी बीए, एनईपी की छठी बीबीए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की 8वीं, एलएलबी इंटीग्रेटेड 5 साल की 10वीं, एलएलएम की तीसरी और एलएलबी की चौथी सीट आवंटन सूची जारी की है। सो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी यूजी के कई सारे फेजेस के सीट्स आवंटन का परिणाम उपलब्ध कराए गए हैं। सो ये जानकारी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज इसमें सीट आवंटन की जो सूची जारी हुई है उसको लेकर के। इसके अलावा आपको हम बता दें कि भाई लापरवाही पर एसडीओ समेत 4 को नोटिस भी दिया गया है। झटपट पोर्टल पर नए विद्युत संयोजनों के निस्तारण और लापरवाही पर मुख्य अभियंता ने कार्रवाई की है और समीक्षा में निर्धारित समय सीमा पार होने के बावजूद 52 मामले लंबित मिले। इस पर एक एसडीओ और 3 अवर अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 वर्किंग डेज में स्पष्टीकरण मांगा गया है। सबसे ज़्यादा धानेपुर उपखंड पे 30 TFR लंबित मिले। इसके अलावा रायबोझा उपकेंद्र मीहपुरवा से 5, तुलसीपुर बलरामपुर और BSNL और घरेलू श्रेणी के 6 और टिया थोक और धानेपुर मंकापुर में 11 आवेदन जो है समय सीमा के पार मिले। सो ये आपको हमने अपडेट बताई। इसके अलावा पानी को लेकर के बहुत प्रॉब्लम आई है। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त चल रही है वो शहर में भरते पानी को लेकर के है। सो बारिश ने शहर में लोगों की मुश्किलें फिलहाल बढ़ा दी है। कई इलाकों में पानी भरने से आवागमन में जो है वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हालांकि खेती किसानों के लिए बारिश का फ़ायदा तो माना जा रहा है, लेकिन मौसम को देखते हुए कल DM के निर्देश पर नर्सरी से इंटर तक के स्कूल्स बंद रहे हैं और ज़िले में बीते 24 से घंटे में 72.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। सो बारिश के बाद में न्यू कैलाशपुरी कॉलोनी की जो सिचुएशन है काफ़ी ख़राब नज़र आई। यहाँ कई रास्तों पे घुटने तक पानी भरा मिला और नाली का गंदा पानी भी इसमें बह रहा था। कीचड़ और काफ़ी ज़्यादा बदबू के बीच लोगों का निकलना मुश्किल हुआ और हालात से परेशान जो मोहल्लेवासी से उन्होंने चंदा जुटा करके पानी निकलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। और फिलहाल वहीं के लोग बता रहे हैं कि करीब 10 साल से ये प्रॉब्लम्स बनी हुई है, लेकिन स्थानीय कोई समाधान अभी तक नहीं हो रहा है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो हम बता दें कि ज़िले की सीमाओं पर 77 जगह लगेंगे कैमरे और बैरियर्स। जी हाँ, सो देवी पाटन मंडल मुख्यालय की सीमाओं पर पुलिस निगरानी व्यवस्था और मजबूत होने जा रही है। ज़िले में अयोध्या, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती और श्रावस्ती से जुड़ी जो सीमाओं के 77 जो प्रमुख प्रवेश बिंदु हैं उस पर CCTV कैमरे और बैरियर्स लगाए जाएंगे। इससे ज़िले में आने जाने वाले वाहन लोगों को और संदिग्ध गतिविधियों पर 2400 घंटे नज़र रखी जा सकेगी। सो फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र में उन स्थानों को चिन्हित किया गया है जहाँ से बड़ी संख्या में वाहन और लोग ज़िले में प्रवेश करते हैं या बाहर जाते हैं। नवाबगंज क्षेत्र में अयोध्या सीमा के ढेमुआ घाट, लोलपुर और कोल्हमपुर के अलावा बस्ती सीमा और परशुरामपुर मोड़ और कोल्हमपुर के खौड़ुआ मोड़ पर कैमरे लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा अयोध्या सीमा के दुर्जनपुर बलरामपुर सीमा पर इटिया थोक, महाराजगंज और धानेपुर के दतौली समेत कुल 77 जगहों पर कैमरे स्टैब्लिश किए जाएंगे। सो बैरियर से जांच होगी आसान। जी हाँ, फिलहाल CO City ने बताया कि बैरियर लगने से संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी जांच करना आसान होगा। ज़रूरत पड़ने पर तलाशी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी जांच की जा सकेगी। इससे चोरी, लूट और बाकी अपराधों में इस्तेमाल होने वाले वाहन और उनकी आवाजाही पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी। सो कैमरों से प्रभावी होगी निगरानी व्यवस्था। ASP पश्चिमी राधेश्याम राय ने बताया कि कैमरे और बैरियर की जो व्यवस्था है पूरी होने के बाद 5 जिलों से जुड़े जो प्रमुख मार्ग हैं उनकी निगरानी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। इससे अपराधियों की आवाजाही पर अंकुश लगाने और घटनाओं की जांच पर पुलिस को मदद भी मिलेगी।
सो फिलहाल ये जो अपडेट थी वो ज़िले की सीमाओं पर लगने वाले कैमरे और बैरियर से रिलेटेड थी, जिसको हमने आपको बता दिया। और अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है उसको लेकर बताते हैं। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में थायराइड समेत कई जांचें ठप हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। सो मेडिकल कॉलेज में हार्मोन जांच की मशीन ख़राब होने से कल मरीज़ों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था। थायराइड, विटामिन डी, विटामिन B12 समेत जो हार्मोनल जांचें हैं वो नहीं हो सकी। सो जांच कराने पहुंचे मरीज़ों को जो है निजी सेंटर्स का सहारा लेना पड़ा। एक्सरे प्लेट ख़राब होने के ख़त्म होने की वजह से मरीज़ों को रिपोर्ट मोबाइल से फ़ोटो खींचकर डॉक्टर को दिखानी पड़ी। सो विभागीय कर्मियों ने शाम तक हार्मोन जांच की जो मशीन है वो ठीक होने की दावा भी किया है। सो मेडिकल कॉलेज की OPD में हर रोज़ तकरीबन 1,500 से 2,200 मरीज़ जो है वो पहुँचते हैं। इनमें से सैकड़ों मरीज़ों को डॉक्टर जांच कराने के बाद ही दवाएं लिखते हैं। सो क्षेत्रीय निदान केंद्र में भी रोज़ाना 500 से ज़्यादा मरीज़ जांचों के लिए पहुंचते हैं। और मंगल की शाम की बात अगर करें तो ख़राबी आने के बाद बुध को हार्मोन संबंधी जांच जो है ये काफ़ी प्रभावित रही। और दूर दराज से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कराने वाले मरीज़ों को सबसे ज़्यादा फ़िलहाल परेशानी हुई। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है, फिलहाल आपको हम बता दें कि अगली अपडेट योग शिविर को लेकर के आ रही है। सो राम जानकी धर्मशाला शिविर का आयोजन आज किया 7 बजे, जिसमें योगाभ्यास कराया गया। इसके अलावा आपको बता दें सुबह 9 बजे से करनैलगंज बाज़ार से व्यापारी कुंभ के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी रवाना होने वाले हैं। सुबह 9 बजे परसपुर ब्लॉक संसाधन केंद्र में टीचर्स को FLN का प्रशिक्षण दिया जाना है। और सुबह 10 बजे RPS इंटर कॉलेज इटियातोक में शिक्षकों को 5 दिन का FLN प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। इसके अलावा बहराइच रोड पर झूलेलाल चौराहे के पास में जन्माष्टमी पर भगवान गोंडाधीश का शुभागमन होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आज ही एक बहुत बड़ा इवेंट नारी ज्ञानस्थली में हो रहा है। सुबह 9:45 यानी 9:45 पे शहर के नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी जो हैं वो जो यहाँ की बच्चियाँ हैं उनसे संवाद करने वाली हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको जानने वाली हैं। और कहीं ना कहीं ये बातें जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने वाली उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक काफ़ी हेल्प मिल जाती है और कहीं ना कहीं एक मोरल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ये काफ़ी बड़ा इवेंट है नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज की तरफ से। आज 3 सितंबर को सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज में बालिकाओं के साथ संवाद कार्यक्रम है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय उपाध्यक्ष जो हैं श्रीमती चारू चौधरी जी द्वारा आज संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ। और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑफकोर्स 33 आंगनवाड़ी जो सहायिकाओं हैं उनको दिया गया है नियुक्ति पत्र। जी हाँ, सो ब्लॉक सभागार में कल आयोजित कार्यक्रम में जो नए चुने गए हैं 33 आंगनवाड़ी सहायिका उनको नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। सो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 20 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल्स भी दी गई है। एंड इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो KGBV की दीवारें होंगी और भी मजबूत। जी हाँ, 17 कस्तूरबा विद्यालयों में होंगे निर्माण और मरम्मत के काम। सो आपको बता दें कि ज़िले के 17 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अब बाउंड्री वॉल, जल निकासी और भवन मरम्मत से जुड़े काम जो है वो कराए जाएंगे। विद्यालय परिसरों को सुरक्षित बनाने के लिए पंचायतों के जरिए निर्माण और मरम्मत का काम कराने की जिम्मेदारी BDO को सौंपी गई है। फिलहाल जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर जो है अनुश्रवण समिति की बैठक के बाद प्रभारी जो DPRO हैं GD जैन ने सभी BDO को विद्यालयों में प्रस्तावित कार्य को प्राथमिकता से कराने को भी कहा है। सो आई होप कि आप तक ये जानकारी जो है वो पहुँच गई है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी आपके काम की रही। एंड ये थी आपके शहर की सिटी अपडेट्स। आई होप कि काफ़ी कुछ आज आपको
जानने को ज़रूर मिला होगा। फ़िलहाल वक्त है आपको ले चलने का अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, तो चलिए भाई ले चलते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ और आपको सुनाते हैं एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा सॉन्ग इसी रोमांटिक सी मॉर्निंग में।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
0: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9281 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

हाय, ये गाने भाई साहब ऐसा लगता है जैसे दिल ही निकाल ले जाएंगे, है ना। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपसे हम साझा करते ही रहते हैं, और बातचीत तो हमारी आपकी लगातार होती ही रहती है। लेकिन इसी बीच में फ़िलहाल कुछ एक ऐसी बात है जिसको लेकर के बहुत बड़ा ख़तरा एक सामने आने की बात कही जा रही है। नेपाल का हाल हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से होता जा रहा है। सो फिर एक डर और आ रहा है कि बगल में ही भारत पड़ोसी है, क्योंकि उत्तराखंड में मिले हैं 219 हैंगिंग ग्लेशियर्स। जी हाँ, सो नेपाल की ग्लेशियर त्रासदी के बाद क्या भारत भी खतरे में है? सवाल ये आता है। तो इस सवाल का जवाब ऑफ कोर्स मिलने वाला है आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। और कहीं ना कहीं ये जो सवाल है ये वाजिब सवाल है, लेकिन एक्चुअल में हम कितना ज़्यादा ख़तरे में हैं या क्या बात है पूरी, आइए आपको इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार बताते हैं कि भाई आखिर भारत में जो उत्तराखंड में 219 हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, क्या सच में उससे भारत को भी बहुत ख़तरा है?

बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओहो, सॉन्ग्स की तारीफ पर तारीफ होती जा रही है। फिलहाल महेंद्र पूछते हैं, सर प्लेलिस्ट कहाँ से लाएं? हमारे पास तो प्लेलिस्ट का एक सागर है जिसको हम प्ले करते हैं और आप तक पहुंचा देते हैं ये खूबसूरत से सॉन्ग्स। फिलहाल इसी बीच में हमने कहा था कि भाई क्या नेपाल के बाद भारत पर भी ख़तरा है? ये जो उत्तराखंड के 219 हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, तो क्या इनका ख़तरा भी वैसा ही है जैसा कि नेपाल में हुआ है? सवाल बहुत ही वाजिब है और इसका जवाब क्या है ये चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही पेचीदा है। जिस तरह पूरी दुनिया नेपाल की तबाही देख रही है, पड़ोस में ही भारत है और भारत को भी अपने 219 हैंगिंग ग्लेशियर्स से काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस होने लगा है। सो क्या है पूरी बात, आइए बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

हाँ जी, तो फिलहाल सवाल जो था वो ये था कि जिस तरह से नेपाल की ग्लेशियर त्रासदी है, तो क्या भारत में भी ख़तरा है? सो आपको हम बता दें आपके पहचान के लिए, जान के लिए, कि भाई भारत का हिमालयी क्षेत्र कुल जो है वो 10,000 ग्लेशियर्स का घर है, जिसमें अकेले उत्तराखंड में 1,495 ग्लेशियर्स हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इनमें से कई लगातार पीछे खिसक रहे हैं। जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी ये जो इंसान रहने नहीं दे रहा है ना प्रकृति को, उसका असर अब ग्लेशियर्स पे साफ नज़र आने लगा है। सो बात आती है कि भाई ये हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं क्या? यस। सो ये पहाड़ी ढलान पर लटका हुआ बर्फ का वो हिस्सा है जो अक्सर किसी बड़े ग्लेशियर से अलग होता है। तापमान बढ़ने पर और जमी हुई मिट्टी के पिघलने से ये अस्थिर होकर टूट सकता है। इसी को कहते हैं हैंगिंग ग्लेशियर्स। सो हिमालय का एक छोटा सा बर्फ का चट्टान टूटना भी हिमस्खलन नहीं, नदी ब्लॉकेज और अचानक बाढ़ जैसी तबाही ला सकता है। समझ रहे हैं? हिमालय का एक छोटा सा बर्फ की चट्टान का टूटना भी हिमस्खलन, नदी ब्लॉकेज और अचानक बाढ़ जैसी सिचुएशन ला सकता है। 2026 में एक स्टडी की माने तो उत्तराखंड में 219 हैंगिंग ग्लेशियर्स यानी 71.7 वर्ग किलोमीटर में हैं। इनमें से 30% बर्फ अकेले ऊपरी अलकनंदा में है, और रिसर्चर्स ने मॉडल तैयार किया है कि अगर इनमें से 25 पूरी तरह ढह जाए तो क्या होगा। बद्रीनाथ माणा के पास सबसे बुरा हिमस्खलन 50 मीटर ऊंचा हो सकता है। 2030 तक इस खतरे के दायरे में आने वाला इलाका 2000 से 19 गुना बढ़ जाएगा। खतरा सिर्फ हिमस्खलन तक मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि ग्लेशियर करोड़ों लोगों के पानी का मुख्य स्रोत है। इनमें छोटे होने से गर्मियां और सूखे दिनों में नदियों का जो जलस्तर है वो कम हो जाएगा, जिससे पेयजल, खेती और हाइड्रो पावर जैसे प्रोजेक्ट्स पर भारी दबाव पड़ेगा। सो इस खतरे से डरने की नहीं, बल्कि सही तैयारी करने की ज़रूरत है। बेहतर निगरानी, शुरुआती चेतावनी और प्रणालियों को सुरक्षित प्लानिंग से हम इस खतरे से निपट सकते हैं। हम हर ग्लेशियर के टूटने की सटीक भविष्यवाणी भले ही ना कर सके, पर हाई रिस्क जोन की पहचान और सही तैयारी से जान माल बचाई जा सकती है। ये फॉसिल फ्यूल छोड़ने की एक बड़ी चेतावनी है। फिलहाल ये बात जो है वो सामने आई है। आई होप कि हम और आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि भाई ग्लेशियर्स का पिघलना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ है और होने का ख़तरा है, तो उससे हम पहले ही उसकी तैयारी कर लें, यानी हम तैयारी में लेट ना करें, क्योंकि तैयारी जब सही होगी तो ख़तरा ही हम उतना ज़्यादा टाल पाएंगे। सो फिलहाल ये रही वो बात जिसको हम बताने के लिए हमने आपसे वादा किया था, और बताया भी कि भाई नेपाल के ग्लेशियर त्रासदी के बाद क्या भारत की ये जो हैंगिंग ग्लेशियर्स हैं, क्या ये ख़तरा है? तो हाँ, बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लानिंग के साथ चलेंगे तो इसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा एफएम, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। फिलहाल थैंक यू सो मच, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें आप लोगों ने की है गाने को लेकर के, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और मैसेजेस आए हैं, हमारी प्रीति जी भी आ गई, सच्चाई बयां करता हूँ, ऑसम थाट, अब तो रिश्ते में तोल मोल का भाव आ गया है, अनमोल रिश्ते बहुत कम रह गए हैं, थैंक यू। एंड सोनिया तिवारी मौजूद है, हेलो सर कैसे हैं, थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप कि आप भी अच्छे होंगे। एंड गीता जी ने भी बोला सर सॉन्ग मौसम की तरह खूबसूरत लाते हैं खोज कर, जी हाँ। धर्मेंद्र मोहन जी हैं फ्रॉम आवर्स फिकर्स, सदना सर जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, यू वेलकम, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हैं तो घड़ी मत देखो, अपनी दिशा देखो, सही दिशा में उठाया गया एक कदम भी गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है। वाह क्या बात है सर, हम लोगों अपने आप नुकसान पहुंचा रहे, पेड़ लगाना चाहिए, बेशक हम प्रकृति को कहीं ना कहीं वाकई नुकसान पहुंचा रहे हैं। और गीता श्रीवास्तव जी कहती हैं सर इतने ख़तरों के बीच, चूँकि देखिए खतरे की बात हुई ना अभी ग्लेशियर्स की, यस ऑफ कोर्स, तो आपने कहा सर इतने ख़तरों के बाद भी कल फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग गोंडा में, ये पॉजिटिविटी आपने 1 सितंबर वाले थॉट का रिजल्ट है, बेशक थैंक यू सो मच कि आपने उसको अपना लिया है पूरी तरह से। एंड 1947 से अब तक पॉल्यूशन कानून नहीं बन सका है और बढ़ता ही जा रहा है, तालाब छोटी सहायक नदियों पर पाट करके, पहाड़ों को तोड़ करके, पता नहीं कहाँ जाना चाहता है इंसान, बेशक सही बात है। एंड मिश्र ऑप्टिकल से अजय जी हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आई होप कि आज का मॉर्निंग शो आप लोग काफ़ी धांसू एंजॉय कर रहे हैं अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो के होस्ट मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान के साथ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऑफकोर्स हमको भी आता रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमको भी पता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा काम की होती है और काफ़ी फ़न होता है। चलिए वापस से आने वाले हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे बतानी है, जो आपसे कहनी है, इसलिए आपको तो कहीं भी खिसकना ही नहीं है, जी हाँ, मतलब आपको यहीं रहना है और कहीं नहीं जाना है। तो आने के बाद आपको बताने वाले हैं कि और क्या क्या है जो आज आपके स्पेशल वाले शो में स्पेशली आपके लिए है। चलिए फिलहाल चलते हैं अगले गाने की तरफ और देखते हैं कि भाई अगला गाना आखिर कौन सा आ रहा है आपके मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में न जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: ये बच्ची बहुत दिन का भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो।
1: बाबा कल की रोटी चल जाएगी?
0: हाँ हाँ हाँ बहन, कल की रोटी बिल्कुल चल जाएगी।
1: तो फिर कल आना।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
9: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
10: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
9: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
11: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

हाँ जी, आपका एक बार वापस से वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अतान। फिलहाल स्कूल जाते वक्त गंदे हो जाते हैं मेरे कपड़े और हमारे स्कूल का रास्ता ठीक करवा दीजिए। जी हाँ, दरअसल ये बात किसी और ने नहीं बल्कि 7 साल की समरा नाज की गुहार पर मऊ डीएम ने फौरन कार्रवाई की और शुरू हो गया सड़क का काम। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो निकल के आ जाती है और सच में काफ़ी अलग सी लगने लगती है। सो आपको बता दें, रोज़ स्कूल जाते वक्त बच्ची के कपड़े गंदे हो जाते थे। उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले की 7 साल की बहुत प्यारी सी बच्ची है समरा नाज, और ये कोई ज़िद नहीं बल्कि रोज़ उसकी परेशानी की आवाज़ थी जिसे वो हर दिन स्कूल जाते वक्त झेलती थी। सो जब उसने अपने हक़ के लिए खुद आवाज़ उठाई और सीधे डीएम के दरबार पहुंच गई तो प्रशासन ने भी इस पर फौरन ध्यान दिया। मऊ डीएम के निर्देश पर तुरंत नगर पालिका परिषद के जरिए ज़मीन की माप करवा कर एस्टिमेट तैयार किया गया और रास्ते के निर्माण की कार्रवाई शुरू की गई। सो एक नन्ही सी बच्ची की आवाज़ और प्रशासन की इस तेज़ी और संवेदनशीलता ने दिखाया कि बचपन से ही अधिकारों को जानना और अपनी बात रखकर सीखा जाए तो बड़े बदलाव आने में देर नहीं लगती। सो ये बात किसी और ने नहीं, 7 साल की नन्ही सी समरा नाज ने ये साबित कर दिया है ना। तो देखिए कितनी प्यारी सी बात है। कई बार ये हल्की सी बातें जो है वो बहुत बड़ी बन जाती हैं और ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरीज की तरह सामने आती है। आई होप कि 7 साल की समरा की ये बात आपको काफ़ी पसंद आई होगी और शायद हम अपने बच्चों में ये परवरिश डालें कि उनको अपने अधिकारों को जानना और अपनी परेशानियों को बेहतर ढंग से कहने की ज़रूर आदत पड़ जाए। फिलहाल समरा के बारे में आपका अगर कुछ है थॉट कहने का तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं अपने 89.6 एफएम के मॉर्निंग वाले शो में। स्टे ट्यून्ड।

अखियों से तो नहीं सुना होगा, आपने मुझसे सुना होगा, मतलब मैं बताने वाला हूँ कि फिलहाल स्वाइन फ्लू का सच में कहर बढ़ता जा रहा है। जैसे कि चैट बॉक्स पे धर्मेंद्र मोहन जी ने फ्रॉम आवास विकास से लिखा है कि स्वाइन फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, ये सच है। तो हाँ, ये सच है कि लखनऊ में बदलते मौसम के बीच में स्वाइन फ्लू का ख़तरा जो है वो बढ़ा है और 6 मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे हेल्थ डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पर आ गया है। जी हाँ, सो जैसा कि भाई बदलता मौसम है, इसी बीच में सर्दी, खांसी, बुखार, ज़ुकाम, ये सब काफ़ी लोगों को होते हैं और इस वाले लक्षणों को संख्या बढ़ने पर स्वाइन फ्लू यानी H1N1 ने भी स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल कल की अगर हम बात करें बुध की, तो सर्दी, खांसी और बुखार से जो मरीज़ पीड़ित थे, उन 6 में जांच रिपोर्ट उनकी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राजधानी में पिछले 33 दिनों के दौरान स्वाइन फ्लू के 27 मामले सामने आ चुके हैं। लगातार नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल्स को अलर्ट रहने और संदिग्ध मरीजों की वक्त से जांच कराने के निर्देश भी दे दिए हैं। सो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है ज़ुकाम, बुखार। आपको बताया कि भाई मौसम चेंज हो रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण है और ये फैलता जा रहा है, इसलिए अपना ख्याल प्लीज़ आप लोग ज़रूर रखें, प्रॉपर रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल थैंक यू सो मच जो लोग फ्रीक्वेंसी से सुन रहे थे और जो लोग रेडियो गार्डन से और साथ ही रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सो आज का शो कैसा लगा? मुझे लगता है काफ़ी सुरीला था, काफ़ी रंगीला था और काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा था, लेकिन अब आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा और बने रहिए 89.6 FM पर।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: बरसों मेघा धड़ाके से, बुढ़िया मर गई छोके से, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे।
6: सिमी, ये क्या बच्ची बनी हो और ये क्या बोल रही हो?
5: अरे समता दी, बचपन में जब पानी बरसता था तो गांव में हम बहुत सारे कजिन्स थे, सब पानी में भीग कर यही बोलते थे। छोटे छोटे मेढक के बच्चे पकड़ते थे, कागज की नाव बनाते थे और मौसम की पहली बारिश देख कर बस बचपन ही याद आ गया।
6: सच में बचपन कितना प्यारा होता है, काश हम कभी बड़े ही ना होते। बारिश ने तो कितनी राहत दी है आपकी, तो इतनी गर्मी भी तो पड़ी है। भगवान करे आप कई दिन तक ऐसे ही पानी बरसता रहे। चलो स्टूडियो चलते हैं और किरण दीदी आ गई होंगी।

0: श्वेता, श्वेता।
1: अरे समता दी, मौसम का मजा ही नहीं देने दे रही हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है। याद कीजिए, अभी दो दिन पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी, एसी भी ठंडक नहीं दे पा रही थी।
2: 100% सही कहा श्वेता तुमने, पर जब मौसम इतना लाजवाब हो तो जो लोक गीत हमने तैयार किया है ना, वही सुन लो।
3: बदरिया

0: वेरी गुड बबलू बेटा, तुम तो बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो। ऐसे ही अपने दोस्तों को समझाओ कि स्कूल जरूर जाएं। अच्छा बेटा बाय, हम लोग जल्दी ही गांव आएंगे।
1: अरे हरि ओम, तुम किससे बात कर रहे थे? और ये बताओ कि हमारे गांव की गूंज की टीम को आज कौन से गांव जाना है?
2: सिमी, अभी तो कहीं नहीं जा पाएंगे, गांव में तो बहुत पानी भर गया होगा। अरे कॉलेज में स्टेज के पास ही देख लो, 2 घंटे की बारिश में कितना पानी भर गया है।
3: पहले कॉलेज के पीछे एक तालाब था, अब उसे पाट कर सबने घर बना लिया है, पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है।
4: याद है 1 साल पहले जब बहुत बारिश हुई थी, तब कितने दिन तक कॉलेज में पानी भरा हुआ था? पीछे की लाइन के घरों में तो 1 महीने तक पानी भरा ही रहा, उन लोगों को किराए पर घर लेकर अलग रहना पड़ा।
0: याद है आप लोगों को, एक बबलू नाम का लड़का मिला था जब हम लोग रामपुर गए थे। वो बता रहा था कि वो रोज स्कूल जाता है, और वो ये भी बता रहा था कि गांव में पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो अपने जूतों को नहीं पहन पा रहा है, और वो अपने जूतों को थैले में रखकर स्कूल में जाकर पहनता है।
2: हाउ स्वीट, कितनी परेशानी उठाकर गांव के बच्चे पढ़ाई करते हैं। क्या जलभराव का कोई समाधान नहीं है? क्या गांव की गूंज की टीम कुछ कर सकती है?
1: अरे क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर गांव में कोई नाली बनी है या घर से पानी निकलने के स्थान को फावड़ा लेकर साफ करें, जिससे जो मिट्टी पत्ती कूड़ा भर गया है वो साफ हो जाए और पानी आराम से निकलकर नदी तालाब या झील में चला जाए।
3: इसका समाधान बहुत ही जरूरी है, अभी तो बरसात शुरू ही हुई है, पूरे मॉनसून बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होगी, खेतों में पानी भरेगा, रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। किसानों को अपने जानवरों को जल भराव के कारण कई दिन पानी के अंदर ही बांधना पड़ता है।
2: अरे बस बस बस, पहले कुछ लोकगीत सुनकर रिचार्ज हो जाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे।

0: संतोष भैया की कड़क चाय और प्याज के पकोड़े के साथ किरण दीदी के मधुर गीतों ने हम सबको ताजगी दे दी है। कसम से मजा आ गया। अब नए जोश के साथ हमारी टीम दो भागों में बढ़ जाए और गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं।
1: जी हाँ, हर गांव में एक सफाई कर्मी होता है, उसका सहयोग ले लेंगे और अगर नाली बनी है गांव में तो उसे साफ करवाएंगे। अगर नाली नहीं है और पानी रुक रहा है तो अभी टेम्परेरी वाला नाली खुदवा कर पोखर या तालाब से जोड़ देंगे।
2: अगर छोटे छोटे गड्ढे हों तो उसे बंद जरूर करवा देना चाहिए, नहीं तो बरसात के बाद वो मच्छर का गढ़ बन जाता है और बहुत ही बीमारी फैलती है।
3: जो पास का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है ना, उनसे कहकर जहाँ गंदगी ज्यादा हो ब्लीचिंग पाउडर डलवाएं और छोटे छोटे गड्ढों में मच्छर की दवा का छिड़काव भी करवाएं।
1: कीचड़ में चलने से पैरों में बहुत इन्फेक्शन होते हैं, तो सभी को रटा दो कि जब भी बाहर से अंदर आए तो पानी से पैर को साफ कर लें और पैरों के बीच की उंगलियों को कॉटन या सूती कपड़े से सुखा लें।
0: विशेषकर बुजुर्गों का तो ध्यान जरूर रखना चाहिए, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर पैर में कोई घाव हो तो जरूर से उनके पैर में तेल और हल्दी लगाएं।
1: फिर से आप सभी से ये बता रहे हैं कि आसपास पानी न इकट्ठा होने दें, वो चिकनगुनिया डेंगू मलेरिया का केंद्र होता है। अगर पानी में भीग गए हो तो तुरंत कपड़े बदलो और सूखे कपड़े पहनो, नहीं तो त्वचा की बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। पानी दूषित हो जाता है बरसात में तो पानी छान कर उबाल कर ठंडा करके पिए।
2: हल्का खाना खाएं और बाहर के खाने से बचें। हाथ को जरूर धोएं, विटामिन सी का सेवन भी जरूर करें। बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से ना छुएं, बहुत करंट आता है बारिश में, इसीलिए बच्चों को स्पेशली समझाएं कि सूखे हाथ से ही प्लग ऑन करें।
1: इतने टिप्स दे दिए कि सब ऊपर से जा रहा है। अब सबसे पहले किरण दीदी के गीत, फिर आगे बात करेंगे।

0: गांव की गूंज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए हम लोगों को बहुत काम करना है।
1: सही कह रही हैं किरण दीदी, पर श्वेता मैम की बात भी सही है, आपके गानों के बिना हम लोग को एनर्जी ही नहीं मिलती।
2: अगर किसी के घर में पानी निकलने का कोई भी चारा ना हो तो वहाँ के प्रधान और सेक्रेटरी से बात करके सोखता बनवाएं। सोखते से दो फायदे होते हैं, एक तो वाटर लॉगिंग नहीं होती है, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है।
3: पर एक चीज जरूर ध्यान देना सब लोग, हर घर में पूछती रहना कि पानी कैसे निकालते हो। कुछ लोगों ने अपने पुराने जो कुएं थे उसमें नाली जोड़ दी गई, और कुछ लोगों ने तो बोरिंग करा के सीधे पाइप नाली ही जोड़ दी है, और बरसात का पानी उससे जमीन के नीचे चला जाता है।
0: अरे बिना फिल्टर हुए पानी नीचे जा रहा है तो ये तो बहुत बुरा है, जमीन के नीचे का पानी प्रदूषित हो रहा है। गांव के लोगों को समझाना पड़ेगा कि ऐसे डायरेक्ट बरसात के पानी को नीचे ना जाने दें।
2: गांव में इसीलिए लोगों को पेट की समस्या और लीवर की समस्या सबसे ज्यादा होती है।
1: सोखता जब बनाते हैं तो उसमें कंक्रीट की एक परत फिर एक परत बालू की बिछाते हैं, जिससे पानी फिल्टर होकर नीचे चला जाए, और जाली भी लगाते हैं।
2: आपको पता है क्या, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है कि सोखता कैसे बनवाएं और बरसाती पानी या नाली का पानी डायरेक्ट जाने से क्या क्या परेशानी हो जाती है। ये आप लोगों के मोबाइल में भेज रहे हैं और एक एक पेन ड्राइव भी दे रहे हैं, लोगों को जरूर दिखाकर समझा दीजिएगा।
3: जब तक वीडियो सिमी भेज रही है, संतोष भैया मसाला चाय पिला दीजिए, किरण दी आप लोकगीत सुना दीजिए।
4: भरवा जय बैगवनवा

0: चलिए, पानी लगभग रुक गया है। हरिओम ने गांव की लिस्ट दे दी है। हम ए टीम में हैं। हम लोगों का पहला गांव जय नगरा है।
1: एक जरूरी बात तो हम लोगों ने की ही नहीं, अगर ग्रामीण भाइयों में से किसी के घर के आसपास दिखे कि जानवरों के बैठने की जगह पर पानी भरा है और वो लोग पशुओं को खाना भी वहीं पर दे रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि जानवरों को सड़क पर बांधें।
2: हाँ, सड़कें ऊंची होती हैं और आजकल तो हर गांव में पनकी सड़कें हैं, तो अपने जानवरों को वहीं बांधें और वहीं उनको खाना भी दें।
0: चलिए, गांव की गूंज की टीम कृष्ण कुमार भैया और ननकू भैया गाड़ी लेकर आ गए हैं। जानते हो, हमारी टीम में किरण दीदी हैं, तो रास्ते में तो खूब रौनक रहेगी।
3: यह तो चीटिंग हुई। एक शर्त पर हम लोग किरण दी को तुम लोगों के साथ जाने देंगे, जब किरण दी घंटी बजे टनाटन वाला गाना सुना कर जाएंगी।

0: बरसात में होने वाले परेशानी से गांव के लोगों को जागृत करने के लिए गांव की गूंज की टीम निकल चली है। जल्दी आपके गांव में मिलते हैं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
9: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
10: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
9: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
10: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
9: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
11: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
12: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
11: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
12: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
11: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली पीजी कॉलेज गोंडा।
1: हुकई से खेलन जईबो

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9861 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून, हेलो एंड कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने फेवरेट वाले FM रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन पर आपकी आरजुनती मौजूद है आप सभी के साथ। लेकर आ गई है वेंसडे का स्पेशल वाला प्रोग्राम स्वास्थ्य संगनी, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले। बात होती है आपके स्वास्थ्य की, आपके अपनों के स्वास्थ्य की, क्योंकि भैया हेल्थ है तभी तो वेल्थ है। ये लाइन हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को हम मानते नहीं है। आप मानते हो क्या? नहीं मानते, मुझे पता है। इसीलिए हेल्थ को लेकर हम हमेशा से लापरवाही करते आ रहे हैं, बट अब और नहीं। भाई अगर बाहर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि सूरज दादा आजकल फुल टशन में हैं, और फुल टशन दिखाते हुए उन्होंने कसम खा रखी है कि किसी को भी आराम से शांति से इधर उधर जाने नहीं देंगे। भरी दोपहरी में अगर आपको कोई काम ना हो तो घर से बाहर ना ही निकलें, ये तो मेरी भी सलाह है, WHO की भी सलाह होती है, यहाँ तक कि आपके घर वाले भी यही सलाह देते हैं। वो अलग बात है कि घर वाले ये जरूर कहते हैं कि अगर बिना कारण के निकलोगे तो कलुआ हो जाओगे, जो कि आप हो भी जाते हो, कहीं ना कहीं आपको टैनिंग हो जाती है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी आप फेस करते हैं गर्मियों के मौसम में, और वो होता है हल्का सा सर दर्द, हल्का सा चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी। और इन सब के पीछे एक कारण होता है जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को चुरा रहा होता है, जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। वो है डिहाइड्रेशन, यानी आपके शरीर में पानी की कमी का होना। दोस्तों थोड़ा सीरियस होकर सोचिए, आप जब भी गाड़ी से जाते हो तो अपना पेट्रोल लेवल चेक करते हो ना, जब भी फोन का इस्तेमाल करना होता है तो उसकी बैटरी लेवल भी चेक करते हो, बट क्या आपने अपने शरीर में कभी वाटर लेवल चेक किया है कि क्या आपका आपके शरीर में पानी की कमी पूरी है या नहीं है, कमी कुछ ज्यादा हो रही है या फिर लेवल कंप्लीट चल रहा है, या फिर हमने पानी पिया है। अब हमें लगता है जब प्यास लगेगी तब तो पानी पी ही लेंगे ना, क्या दिक्कत है, क्या मसला है, बट गर्मियों में ऐसा नहीं करना होता है। गर्मियों में पानी आपको बार बार पीना होता है, भले ही आपको प्यास ना लगे, भले ही आपकी बॉडी आपको सिग्नल ना दे रही हो। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। पानी पीना एक आदत होती है, ना कि प्यास लगने पर प्यास बुझाना एक आदत होती है। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं इसी डिहाइड्रेशन पर, कि किस तरह से डिहाइड्रेशन लोगों को गर्मियों में मौत की तरफ ढकेलता जा रहा है। हीट स्ट्रोक हो गया है, हार्ट अटैक हो गया है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है, न जाने ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो गर्मियों में आए दिन हमें न्यूज़पेपर में सुनने को मिल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आए दिन अपने आसपास देखा करते हैं, और हमें लगता है कि ये तो धूप की वजह से हुआ है, ये तो गर्मी की वजह से हुए हैं, या फिर अगर किसी की मौत हम फूड पॉइजनिंग से सुनते हैं तो हमें लगता है कि भाई किसी बैक्टीरिया की वजह से उसकी डेथ हुई है। बट 90% केसेस जो आते हैं वो आते हैं डिहाइड्रेशन के, कि फूड पॉइजनिंग होने के बाद लगातार लूज मोशंस, लगातार वॉमिटिंग, इसके दौरान पानी ना पीने की वजह से शरीर में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स की काफी कमी हो चुकी है और बंदे की जान चली गई है। तो आपके साथ ऐसा ना हो और आप हॉस्पिटल तक ना पहुंचे, इसके लिए आज हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, बताते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है, कैसे होता है और इसको कैसे ठीक करना है। स्टे ट्यून्ड।

तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर की तरह लेकर इस खूबसूरत सी श्रृंखला में मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम की फ्रिक्वेंसी रेडियो ज्ञान असली आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की, और डिहाइड्रेशन सिर्फ तब नहीं होती जब आपको प्यास लगती है। अगर आपको लग रहा है कि आज काम में मन नहीं लग रहा, या अचानक बिना वजह का गुस्सा आ रहा है, या फिर हल्की फुल्की आपको थकान हो रही है, हल्का हल्का सर में दर्द बना हुआ है पिछले 2-3 घंटों से, तो समझ जाइए कि आपका शरीर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि भैया पानी दे दो पानी। आपने वो मीम तो सुना ही होगा, अंकल जी पानी पिला दीजिए प्यास लग रही है। जी हाँ, ये वही सिग्नल है जो आपका शरीर आपको ऐसे भेजता है। जब भी आपके सर में दर्द होता है, जब भी आपको हल्की हल्की थकान होती है, काम में मन नहीं लगता है, आंखें आपकी सूखी सूखी लगती हैं, आपके होंठ आपको ड्राई फील होते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी होती जा रही है, डिहाइड्रेट आपकी बॉडी होती जा रही है। ये सारे साइलेंट साइंस होते हैं जिसको हम बहुत ही धड़ल्ले से इग्नोर कर देते हैं, और हमें लगता है कि ये सब कुछ भी नहीं होता, मॉइस्चराइजर लगाएंगे अपनी स्किन को, अपने लिप्स को, बालों को, सबको बढ़िया चकाचक कर लेंगे, बट ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई अगर ये आपकी बॉडी आपको इमरजेंसी अलार्म पहले से ही फिट करके आपको सारे सिम्टम्स बता रही है तो भी आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, ये जरा मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी का कारण होता है। इसका सीधा प्रभाव आपके शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। दरअसल शरीर में कम से कम 60-70% पानी होता है, ब्रेन और हार्ट में लगभग 73, मांसपेशी और किडनी में करीब 79%, स्किन में 64 और फेफड़ों में लगभग 83% पानी ही होता है। इसीलिए शरीर में पानी की कमी होना एक गंभीर समस्या हो सकती है। गर्मियां बढ़ती जा रही हैं और हम पानी को इग्नोर यूं करते आ रहे हैं जैसे भाई पानी हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, पानी का कोई मोल नहीं है। वो अलग बात है जब आप रेगिस्तान में निकल जाते हैं और तब आपको पानी का मोल समझ में आता है। घर में पानी मौजूद होता है, मम्मी डांट डांट कर कहती है कि तो क्या तुमने पानी पिया, एक ग्लास पानी पी लो, या फिर अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बार बार इस चीज के लिए टोक रही है कि यार पानी नहीं पीते हो तुम, तो मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि भैया मैंने देखा है आजकल लोग हर एक इंसान का इसलिए मजाक बनाते हैं क्योंकि वो ऑल द टाइम पानी पिया करता है, उसके पास एक बड़ी सी बॉटल है जिसमें वो सिप सिप सिप सिप कर रहे हैं और हमको लगता है ये क्या चोचले हैं, क्या टेंट्रम्स हैं। नॉर्मली भी रहा जा सकता है, जी हाँ नॉर्मल ही रहना इसको कहते हैं कि आप लगातार अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते जाते हैं। और क्या सिर्फ पानी पीने से हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनता है हमारे लिए, स्पेशली गर्मियों में जब इतना ज्यादा पसीना आ रहा होता है और उस वक्त हम सोचते हैं कि क्या सिर्फ पानी पी लेने भर से डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो जाती है। और अगर कभी कभी हम इतने भी ज्यादा होनहार हो जाते हैं, इतने ज्यादा होशियार हो जाते हैं कि पानी पीने की जरूरत हमको पड़ती नहीं है, हम सोचते हैं आप फ्रूट जूस पी के काम चला लेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पी के काम चला लेंगे, नहीं तो सोडा हो गया, लस्सी होगी, कुछ तो हमने पिया ही है ना, फ्रूट्स खाकर काम चला लेते हैं। बट स्पेशली जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात आती है, जब बात आती है आपके शरीर में उन पदार्थों की, उन खनिज की पूर्ति करना जो आपके शरीर को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका ख्याल हम लेकर नहीं आते। कई बार ऐसा होता है कि आप पानी तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, इसके बाद भी आपकी बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से जूझ रही होती है और आप सोचते हैं यार इतना तो पानी पिया था, हुआ क्या मेरे साथ, क्यों बॉडी आज भी डिहाइड्रेट है, इसके पीछे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, वो आपको कहाँ से मिलता है भाई। इसीलिए कहते हैं कि गर्मियों में ORS पीना चाहिए, कोकोनट वाटर पीना चाहिए, इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो एक पिंच सॉल्ट को अगर आप थोड़ा से गुनगुने पानी में डाल के पीते हैं तो ये भी आपकी मदद करता है उन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने में। डिहाइड्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर में पानी और कुछ ज़रूरी फ्लूड्स की कमी हो जाती है जिससे आपका शरीर सामान्य तरीके से काम नहीं कर पाता है। ये तब होता है जब शरीर में पसीना, आपका बार बार उल्टी होना, बार बार आपको लूज मोशंस आना, जो कि गर्मियों में बहुत ही कॉमन सी बात है। अगर आप कुछ भी बासी खाना खा लेते हैं, ऊटपटांग खाना खा लेते हैं, बाहर के चाट पकौड़े थोड़े ज़्यादा कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं खुद को क्लीन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए कई बार फूड पॉइजनिंग, कई बार स्टमक फ्लू से जूझ हुए, बहुत बार आपको लूज मोशंस होते हैं, बहुत बार आपको वॉमिटिंग होती है और उस दौरान आपके शरीर का बहुत सारा पानी निकल जाता है जिसकी वजह से आपको थकान होना शुरू होती है, आपको कमजोरी होना शुरू होती है, इससे शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ जाता है और डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बन जाती है।
लेकिन ये पानी जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, जो पानी हम बार बार आपको नॉक नॉक करके याद दिला रहे हैं कि इसको पीना जरूरी है, क्यों इतना जरूरी है? पानी शरीर के तापमान को कंट्रोल में रखता है, इसलिए पानी को पीना जरूरी है। शरीर में आपके बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, उनको बाहर निकालने में मदद करता है। आपके सलाइवा को बनाता है, जो आपके खाने को पचाने के लिए जरूरी होते हैं। हड्डियों के जोड़ों को काम करने में मदद करता है। शरीर के केमिकल्स को बैलेंस में करता है। ब्रेन के हार्मोन्स को एक्टिव रखता है। शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। तो अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो आपकी बॉडी कितने सारे फंक्शंस को एक साथ रोक देती है। अब आप ही सोचिए, अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं और आपके शरीर में पानी की कमी होती जा रही है तो कितने सारे फंक्शंस शरीर के डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल हो रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं रहा। आप बार बार वॉशरूम जाते हैं तो आपको बहुत डार्क यूरिन आता है। आप यूरिनेट करते हैं, आपको बहुत डार्क आता है और लोगों को लगता है कि अरे ये तो किडनी फेल हो गई, अब तो किडनी खराब हो चुकी है, जो कि एक बात सच भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल्स, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्बेलेंस हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपके किडनी लीवर पे पड़ने वाला ही है। फिलहाल आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं और आपको हम बताते हैं और भी बहुत सारी बातें रिहाइड्रेशन और पानी से जुड़ी। पानी एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो आपकी आपकी हर जरूरत के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी, स्टे ट्यून्ड।

स्वागत है एक बार वापस से आप सभी का आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत श्रृंखला में बात कर रहे हैं आज हम डिहाइड्रेशन की। और आप सुन रहे हैं आपका अपना एफएम रेडियो 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आवाज है आपकी अपनी आरजी उन्नति की। गर्मी में जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है वैसे वैसे बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पसीना बाहर निकालती है। अब ये आपके बॉडी का कूलिंग सिस्टम होता है। जिस तरह से आप अपने रूम को ठंडा रखने के लिए कहीं एसी, कहीं कूलर, कहीं पंखा चला रहे हैं, ऐसे हमारे बॉडी में एसी कूलर तो ना सही लेकिन उसका अपना एक कूलिंग कंट्रोल है, एक कूलिंग फंक्शन है जिसमें आपकी बॉडी पसीने को बाहर निकालती है। और उस पसीने में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट्स भी शामिल होते हैं, कुछ बहुत जरूरी मिनरल्स शामिल होते हैं, सॉल्ट, पोटेशियम, सोडियम जैसी चीजें शामिल होती हैं जो बाहर निकल जाती हैं पसीने से। और ये पसीना जब बाहर निकलता है तो आपकी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इस दौरान आपको जरूरत होती है पानी पीने की। आपके द्वारा पिया गया पानी ही आपके टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करता है, आपकी बॉडी के केमिकल्स को मेंटेन करने में मदद करता है। चलिए भाई बात करते हैं कि डिहाइड्रेशन के शुरुआती संकेत क्या होते हैं। डिहाइड्रेशन के अगर लक्षणों की बात करें तो वो उम्र के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों में, खासकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें डिहाइड्रेशन के लक्षण जल्दी दिखाई देने लग जाते हैं। हम आपको बता दें, जीभ और होंठ का सूखना, रोते समय आंसू ना आना, दिन में 6 से कम बार डायपर का गीला होना, शिशु के सिर का नरम हिस्सा धंसना, आंखें धंसती हुई लगना, स्किन ड्राई होना, झुर्रीदार लगना, तेज गहरी सांसों का चलना या हाथ पैर ठंडे होना, ये वो लक्षण होते हैं, ये वो सिम्टम्स होते हैं जो आमतौर पर छोटे बच्चों में देखने को मिल जाते हैं। और अब बात करें कि बड़ों में, यानी कि जो वयस्क होते हैं, उनके अंदर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं अगर उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है तो। बार बार चक्कर आना, ब्रेन फॉग, कन्फ्यूजन, सीवियर कब्ज, थकान, कमजोरी, मुंह सूखना, सूखी खांसी, स्किन रेडनेस, हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का कम होना, भूख कम लगना, त्वचा लाल पड़ना, पैर में सूजन, मांसपेशियों में ऐंठन, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड लगना, सर में बहुत तेज दर्द होना या फिर गहरे पीले रंग का पेशाब आना, ये वो सारे लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि एक बड़े उम्र के व्यक्ति के अंदर पानी की कमी होती जा रही है, डिहाइड्रेशन बढ़ती जा रही है। क्या ये जानलेवा भी होता है? कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या डिहाइड्रेशन जानलेवा है, तो चलिए हम आपको बता दें, डिहाइड्रेशन जानलेवा है अगर शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स इस स्तर तक कम हो जाते हैं कि बॉडी फंक्शन अपना अच्छे तरीके से नहीं कर पाती है, तो जी हाँ, ये जानलेवा हो सकती है। ऐसी कंडीशन में किडनी फेलियर, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता जाता है। आजकल आपको कई लोग ऐसे दिखते हैं सड़क पर चलते हुए जो अचानक से बेहोश हो जाते हैं या फिर उनके अचानक से दौरे पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ। भाई इसके पीछे रीज़न ये होता है कि उनकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है, उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है और बढ़ते तापमान में उनकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उन्हें हीट स्ट्रोक जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ जाता है। हीट स्ट्रोक अगर इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ये कंडीशन इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान की जान तक चली जाती है। डिहाइड्रेशन सिर्फ आपको हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता, सिर्फ सर में दर्द नहीं कराता, इसके साथ साथ आपकी वो जान भी लेते हैं। कई बार बीमारी से लोगों की मौत कम होती है डिहाइड्रेशन से ज़्यादा होती है। अगर आपको लूज मोशंस बार बार आ रहे हैं तो डॉक्टर्स भी आपको सलाह देते हैं कि ORS पीते रहिए, ORS का घोल पीते रहिए, बट हम नहीं पीते हैं ये सोचकर कि यार जितना पानी पिएंगे उतना लूज मोशन आएगा, पहले से ही बहुत वाटरी लूज मोशन आ रहा है, और ज़्यादा पीऊँगा तो और ज़्यादा आएगा, और इसको ये सोचकर ना कुछ इंसान खाता है ना कुछ पीता है, और जिसकी वजह से ही उसकी डेथ होती है। तो फिलहाल अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, गर्मियों में आपके आसपास किसी को भी लूज मोशन की शिकायत है या फिर दिक्कत है, या आपको लग रहा है कि ये इंसान पानी की कमी कर रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, पानी इतना होने के बाद भी नहीं पिया जा रहा है, तो उन्हें छोटा सा रिमाइंडर जरूर से दीजिएगा कि भाई कि पानी पीते रहिए, नहीं पिएंगे तो हॉस्पिटल तक का सफर आप बहुत जल्दी तय कर लेंगे। हालांकि आपकी बॉडी आपको अलग अलग सिम्टम्स देती रहेगी, किडनीज आपको बताते रहेंगे, आपका लिवर आपको बताता रहेगा, आपकी स्किन आपको बताती रहेगी कि कब उसको पानी की ज़रूरत है, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत सूखी हो जाती है, त्वचा बहुत ड्राई हो जाती है, होंठ आपके फटने लगते हैं, ये सारी वजह, ये सारे लक्षण होते हैं कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ती जा रही है। आइए रहते छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और कहते हैं आपसे और भी ज़्यादा बातें, तब तक के लिए सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन रेडियो ज्ञानस्थली।

जी, तो भाई अब बात डिहाइड्रेशन की है, पानी की कमी की है, तो पानी की कमी पूरा करने के लिए सिर्फ पानी पर ही तो आप नहीं रहने वाले हैं। अगर आपके आसपास कहीं भी आपको पानी नहीं मिल रहा है और आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप खीरा खा सकते हैं कि भाई खीरा में 96% पानी ही होता है। गर्मियों में गॉड बहुत होशियारी के साथ कुछ ऐसे फल, कुछ ऐसी सब्जियां हमें तोहफे में देकर जा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और खुद में पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला मैंने आपको खीरा ही बताया, खीरा 96% पानी का बना होता है। उसी के साथ आप तरबूज ले सकते हैं, यानी कि वाटरमेलन, जिसके नाम में ही वाटर आ रहा है। ऑफकोर्स 92% पानी मौजूद होता है वाटरमेलन के अंदर। प्लस अगर आप वाटरमेलन में थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके, यानी कि छिड़क कर खाते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को भी पूरा करता है, प्लस के टेस्ट को भी इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप वाटरमेलन आज तक ऐसे ही खाते आ रहे हैं, तो अब मैं आपसे कहूंगी कि उसमें थोड़ा सा नमक छिड़क कर जरूर खाएं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसका टेस्ट, इसका क्रिस्पीनेस, इसका क्रंचीनेस कितना ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ जो बढ़ेगा वो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड साथ ही साथ अगर सब्जियों की बात करें, तो आप खा सकते हैं लौकी, टमाटर, पालक, तरबूज, खरबूजा, टमाटर, लौकी, संतरा और अंगूर। ये पानी के साथ साथ आपके विटामिन सी की भी कमी को पूरा करेंगे। पालक भी आप खा सकते हैं, लेकिन पालक के साथ ख्याल रखें कि विटामिन सी को तो लेना है, यानी कि विटामिन सी लेना है, बट उसके साथ टमाटर नहीं खाना है। अगर आप पालक के साथ टमाटर खाते हैं, तो ये आपकी किडनी स्टोन के खतरे को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं।

करते रहिए, बाहर की बनी चीजों से कोशिश कीजिए कि आप ना खाएं ना पिएं ज्यादा। बाहर बहुत ज्यादा शरबत वगैरह मिल रहे हैं बट उनमें कहीं ना कहीं चीनी का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप बाहर शरबत पी भी रहे हैं तो उसे एक सेफ क्वांटिटी मिले। बेल का शरबत आप पी सकते हैं, आप पी सकते हैं शिकंजी घर पर बनाकर, नींबू पानी नमक चीनी को मिक्स करके आप एक अच्छा सा घोल बना सकते हैं। खट्टा मीठा नमकीन स्वाद आता है जब आप ठंडे पानी में पुदीना डाल के स्पेशली पीते हैं, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पी सकते हैं, खुद के डिहाइड्रेशन को दूर कर सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि टेस्ट वाइज ये कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो आफ्टर ऑल आपके घर वालों को, आपके बच्चों को, सभी को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो घर में शिकंजी बनाकर पी सकते हैं, आम पन्ना बनाकर पी सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, बाकी फलों का सेवन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप खा सकते हैं वो सारी सब्जियां जो हैं पानी में बहुत ज्यादा रिच, लाइक लौकी तुरई। हालांकि लौकी तुरई देखने के बाद ये जो सड़ी हुई शक्ल बनती है वो लाजिम है, बट अगर आप अच्छे से बनाते हैं, कम तेल मसाले में बनाते हैं, तो ये आपको काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगी, साथ ही साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखने वाली है। गर्मियों में छाछ जरूर पीजिए, यानी कि बटर मिल्क का इस्तेमाल जरूर करें। दोपहर के वक्त अगर आप बटर मिल्क पीते हैं तो काफी अच्छा रहता है। दही का इस्तेमाल करते रहिए, हाई फाइबर हाई प्रोटीन कम तेल मसाले का खाना खाइए, कम तेल मसाले का भोजन खाइए, बहुत तेल मसाला गर्मी में अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ना खाएं अवॉइड करें, क्योंकि भाई तेल मसाला आपके गर्मियों में होने वाली फूड पॉइजनिंग और बाकी चीज़ों में अपना सहयोग पूरा पूरा देता है। आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना खाएं। बाहर जब निकले तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करें जिनकी प्रिपरेशन सुबह से की जाती है। आलू का बना सामान ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि भाई आलू शाम तक आते आते आते आते ख़राब हो जाता है। जो चीज़ सुबह तैयार की गई है वो शाम तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। बस छोटी छोटी चीज़ें, छोटा छोटा परहेज करने के बाद आप अपनी गर्मियों का मज़ा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, आइसक्रीम्स खा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखिए, पानी का ख्याल रखिए, पानी से भरपूर मात्रा में बनी चीज़ों का सेवन कीजिए, दाल खाइए, पानी पीजिए, नारियल का पानी पीजिए, खीरा खाइए, तरबूज खाइए और मस्त रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए।

0: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आर्जी और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन पर सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, जिसमें बात है आज डिहाइड्रेशन की। अगर डिहाइड्रेशन बहुत लंबे समय तक रहता है तो क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, ये सवाल आपके दिमाग में अक्सर आता होगा। तो भाई, शो सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल आया तो मैं आपको बता दें कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, हीट स्ट्रोक, किडनी डैमेज होना, किडनी फेलियर, लो ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में ऐंठन, कोमा या तक की डेथ भी हो सकती है। अगर बात करें कि किन लोगों को डिहाइड्रेशन का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है तो मैं आपको बता दें कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग, एथलीट जो धूप में काम करते हैं, जो हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें बुखार, उल्टी, दस्त की समस्या है, जिन्हें कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है या फिर जो आम तौर पर दवाइयाँ ले रहे हैं। अब इससे भी बड़ा सवाल आप सभी के सामने ये आता है कि क्या डिहाइड्रेशन सिर्फ धूप में निकलने से होता है, तो मैं आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिहाइड्रेशन केवल धूप में रहने से नहीं होता। अगर आप धूप में रहने के बाद पर्याप्त पानी पीते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है, आप डिहाइड्रेशन से बच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन के लिए सिर्फ धूप एकमात्र फैक्टर नहीं है। अगर आप घर के अंदर भी रहते हैं और दिन में पानी नहीं पीते हैं, प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेते हैं, तो आपको के अंदर भी डिहाइड्रेशन का सामना करना पड़ जाता है। लंबे समय तक शरीर में पानी की कमी रहने से आपका जो ब्लड है वो भी गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण हार्ट अटैक और हार्ट को ब्लड पंप करने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे हार्ट बीट तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होता है। वहीं डिहाइड्रेशन के कारण किडनी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं और किडनी पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से अगर लंबे समय तक ये कंडीशन यूं ही बनी रहती है तो आपकी किडनी फेल हो जाती है या फिर आपकी किडनी खराब हो जाती है। आपको किडनी में स्टोन यानी कि पथरी का भी सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए जिनको भी किडनी स्टोन होता है, डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि आप खूब पानी पीजिए। हो सकता है कि बिना ऑपरेशन ही आपकी किडनी स्टोन बाहर निकल जाए। तो भाई, पानी आपका दुश्मन नहीं है, पानी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम पानी की बात करते हैं तो एक कॉमन चीज हमने पकड़ रखी, दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीना, जो कि पूर्णतः सही नहीं है। अगर आप पानी पीने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दें कि आपके शरीर का वजन जितना है आपको उतना पानी पीने की जरूरत है। अगर आप 60 किलो के हैं या 62 kg के हैं तो अगर पानी की बात करें तो आपको 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में की आवश्यकता होती है, यानी कि 10 से 12 ग्लास पानी आपको दिन में पीना चाहिए। तो भाई, अपने वजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए कि आपका वाटर इनटेक कितना है। एक पिंच पिंक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक डाल के, हिमालयन सॉल्ट डाल के पानी को पीने की कोशिश कीजिए अगर आप वो नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक, ORS, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोकोनट वाटर और शुगरी ड्रिंक से बचने की कोशिश कीजिए, यानी कि गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक पीना या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज़ पी रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि एनर्जी ड्रिंक है, आपको एनर्जी देगी, आपको थकान हो रहा है तो आपको एनर्जी ड्रिंक लेनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। शुगरी ड्रिंक से दूर रहें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, पानी पीते रहें। और मुझे लगता है भाई, पानी पीते पीते इतनी हमने बातें कर ली है कि अब एक पानी वाला ब्रेक हो ही जाना चाहिए। फिलहाल घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। तो आई होप आज के बाद आप खुद की सेहत को लेकर कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, पानी को लेकर यूं लापरवाही नहीं करेंगे। इसी के आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: चांदनी

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका आरजे अदनान। श्रोताओं, कहते हैं ना कि घर की असली खुशी तभी होती है, यानी घर की असली खुशहाली तब आती है जब बच्चे स्वस्थ और खुश हों। लेकिन कई बार पोषण की कमी या गलत आहार की वजह से छोटे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण सिर्फ बच्चे के शरीर को कमजोर नहीं करता बल्कि उसके दिमाग के विकास पर भी बहुत असर डालता है। तो आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं और इसे कैसे समय रहते पहचाना जा सकता है और इसे दूर करने के लिए आखिर क्या करना चाहिए। साथ ही जानेंगे कि बच्चे के सही पोषण के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी टीकन भाभी, क्योंकि भाभी हमेशा अपने अनुभव से सेहत के जरूरी मुद्दों को समझाती हैं। भाभी, बच्चों में हम कुपोषण यानी पोषण की कमी आखिर कैसे पहचान सकते हैं और इसे समझना जरूरी आखिर क्यों है?
3: देखिए, बच्चों में कुपोषण जल्दी पकड़ में आ जाए इसके लिए कुछ संकेत साफ दिखते हैं। पहला संकेत है बच्चे का वजन। अगर बच्चा उम्र के हिसाब से हल्का है या वजन बढ़ नहीं रहा है तो ये पहली चेतावनी है। और दूसरा है सुस्ती। कुपोषित बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हमेशा सुस्त रहते हैं। तीसरा लक्षण है बाल और त्वचा। कुपोषित बच्चों के बाल कमजोर, रूखे या झड़ते हैं, त्वचा भी रूखी सी दिखती है। चौथा है भूख नहीं लगना। बच्चे ठीक से नहीं खाते तो ये भी कुपोषण की तरफ इशारा है। और पांचवा है बीमारियां। कुपोषित बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं और बार बार बुखार, दस्त या संक्रमण के शिकार होते हैं।
1: अच्छा, तो भाभी हमने बच्चों में कुपोषण के लक्षण तो जान लिए, अब जरा इसे दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए ये भी बताइए।
3: देखिए, कुपोषण सिर्फ खाने की कमी से नहीं बल्कि सही पोषण और देखभाल की कमी से भी होता है। इसे दूर करने के लिए कुछ आसान उपाय हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जन्म के 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें। 6 महीने के बाद भी दूध देना जारी रखें। माँ का दूध बच्चे को ताकत और बीमारियों से बचाता है। 6 महीने के बाद बच्चे को खिचड़ी, दलिया, सब्जी और फलों का गूदा देना शुरू करें। थोड़ा बड़ा होने पर उसे दाल, सब्जी, फल, अनाज और दूध दही जैसे पोषक खाना दें। साफ सफाई भी जरूरी है। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, साफ बर्तन में खाना देना और बच्चे के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना बहुत जरूरी है। समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच भी जरूरी है। डॉक्टर से बच्चों को नियमित दिखाना और जरूरी टीके लगवाना बीमारियों से बचाता है। परिवार की मदद भी बच्चे की परवरिश में खासा सहायक है। परिवार को खाना बनाने, दूध पिलाने और बच्चे का ध्यान रखने में माँ की मदद करनी चाहिए।
1: तो भाभी, क्या बच्चे के दिमागी विकास में भी पोषण का असर होता है?
3: हाँ, पैदा होने के बाद बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से बढ़ता है। दिमाग के सही विकास के लिए पोषण की जरूरत होती है। उचित पोषण नहीं मिलने से बच्चे के सीखने का स्तर कमजोर हो सकता है। माँ का दूध इस मामले में सबसे खास है। जन्म के पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध बच्चे को सभी जरूरी पोषक तत्व, फैटी एसिड और एंटीबॉडीज देता है। ये दिमाग को सही तरह से विकसित करने में मदद करता है। 6 महीने के बाद ऊपरी आहार बच्चे के दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है। दाल, खिचड़ी, सब्जी और फल जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत करते हैं। साथ ही सीखने, सोचने और याद रखने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। मतलब जितना बच्चा पौष्टिक आहार पाएगा, उसका दिमाग उतना ही तेज और सक्रिय होगा।
1: तो भाभी, आजकल बच्चे जंक फूड बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या ये नुकसान कर सकता है?
3: जंक फूड बहुत ही ज्यादा तला भुना, मीठा या मसालेदार होता है, जैसे चिप्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर या फ्राइज। ये बिल्कुल पौष्टिक नहीं होते। इस प्रकार बच्चे को जंक फूड से पोषक तत्व नहीं मिलता और उनमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी हो जाती है। जंक फूड से बच्चे का मोटापा बढ़ सकता है। मोटापे से हड्डियां कमजोर और दिल की समस्याएं हो सकती हैं। जंक फूड दांतों के लिए भी खराब है। ज्यादा मीठा खाने से दांत सड़ सकते हैं और मसूड़े कमजोर हो सकते हैं। जंक फूड जल्दी ऊर्जा देते हैं, लेकिन जल्दी खत्म भी हो जाता है, जिससे बच्चा सुस्त और चिड़चिड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लगातार जंक फूड खाने से बच्चे का स्वाद बदल सकता है। फिर वो अनाज, दाल, सब्जी और फल खाने से मना कर देता है, जो उसके शरीर और दिमाग दोनों के लिए जरूरी है। जंक फूड स्वादिष्ट तो है, लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को पौष्टिक खाना ही मिले, ताकि वो स्वस्थ हो।
1: भाभी, एक और जरूरी बात बताइए कि परिवार बच्चों और माँ के पोषण में कैसे मदद कर सकता है?
3: देखिए, बच्चे और माँ का पोषण पूरे परिवार के सहयोग पर निर्भर करता है। परिवार के सदस्य कई तरह से मदद कर सकते हैं। अगर घर में दादी, दादा, पापा खाना बनाने में थोड़ा हाथ बटाएं, तो माँ को पौष्टिक खाना खाने और बच्चे को खिलाने का समय मिलता है। परिवार देख सकता है कि बच्चे और माँ को रोजाना दाल, सब्जी, फल, दूध, दही और अनाज मिल रहा है या नहीं। बच्चे को खाना और माँ को आराम दिलाना परिवार का काम है। साथ ही घर की साफ सफाई और हाथ धोना, ये सब बच्चे और माँ की सेहत को मजबूत बनाता है।
1: तो भाभी, मुझे ये बताइए कि गर्भवती महिला के खाने में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
3: गर्भवती माँ का खाना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी होता है। इसलिए खाना पूरा और पोषक होना चाहिए। उसे रोज दाल, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल, दूध, दही जैसी चीजें खानी चाहिए। अगर घर में अंडा या मछली खाया जाता हो तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना मसालेदार खाना थोड़ा कम खाना चाहिए। साफ पानी पीना भी जरूरी है।
1: भाभी, अक्सर डॉक्टर्स गर्भवती महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां खाने को कहते हैं। ये गोलियां खाना क्या जरूरी होता है?
3: जब महिला गर्भवती होती है तो उसके खून की जरूरत बढ़ जाती है। बच्चा माँ के खून से ही पलता है। अगर खून की कमी या एनीमिया हो जाए तो माँ को कमजोरी, थकान और चक्कर आने लगता है। ये कमी बच्चा भी झेलता है। उसका वजन कम हो जाता है, समय से पहले जन्म हो सकता है और कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां देते हैं। आयरन खून बनाने में मदद करता है और फोलिक एसिड बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अच्छी तरह से विकसित करता है।
1: तो भाभी, मेरा एक और सवाल है, जब माँ बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसके खाने में क्या खास चीजें होनी चाहिए?
3: माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा पोषण है। उसका स्वाद और गुण भी माँ के खाने पर निर्भर करता है। इसलिए माँ को संतुलित और पोषक आहार लेना बहुत जरूरी है। रोज माँ को दाल, हरी सब्जियाँ, फल, दूध, दही जरूर खाना चाहिए। गेहूँ, चावल, बाजरा जैसे मोटे अनाज भी ताकत देते हैं।
1: तो भाभी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरी सब्जियाँ और दूध दही आखिर क्यों जरूरी होता है?
3: हरी सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, गाजर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि उसके शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भी देती है। इससे माँ की सेहत ठीक रहती है और बच्चा भी मजबूत पैदा होता है। दूध और दही हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। ये जरूरी कैल्शियम देते हैं, साथ ही प्रोटीन भी मिलता है जिससे माँ की ताकत बनी रहती है और दूध की मात्रा भी अच्छी रहती है।
1: भाभी, एक बात अक्सर सुनने में आती है कि जिन घरों में मांसाहार खाया जाता है वहाँ गर्भवती या दूध पिलाने वाली माँ अगर मांस, मछली या अंडा खाए तो क्या फायदा होता है? अगर घर में मांसाहार बिल्कुल ना खाया जाए तो फिर उसके लिए एक अच्छा विकल्प क्या हो सकता है?
3: माँ बनने वाली और दूध पिलाने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी जरूरत पोषण की होती है। अगर घर में मांसाहार होता है और माँ उसे खाती है तो उसे फायदा मिलता है। मांस, मछली और अंडे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन से माँ के शरीर में ताकत आती है, बच्चा ठीक से बढ़ता है और दोनों की सेहत बनी रहती है। इसके अलावा इन चीजों में आयरन भी खूब होता है जिससे खून की कमी नहीं होती है। गर्भ के समय और बच्चे को दूध पिलाते समय खून की कमी आम बात है। ऐसे में मांसाहार उस कमी को जल्दी पूरा कर देता है। इसमें विटामिन B12 भी होता है। ये माँ और बच्चे के दिमाग और नसों के लिए जरूरी है। कई परिवार पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। अगर माँ शाकाहारी है तो भी उसे भरपूर ताकत और सेहत मिल सकता है। दाल, राजमा, छोले, सोयाबीन, दूध दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और सूखे मेवे, ये सब खाने से शरीर को वही ताकत मिलती है। हरी सब्जियों से आयरन की कमी पूरी होती है, दाल और पनीर से प्रोटीन की कमी पूरी होती है और दूध दही से हड्डियाँ मजबूत रहती है। अगर ये सब रोजाना खाने में शामिल हो तो माँ को किसी तरह की कमी नहीं होगी और बच्चा भी अच्छी तरह बढ़ेगा।
1: सो दोस्तों, आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी में हमने जाना कि अगर छोटे बच्चे को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। कुपोषण का मतलब कि बच्चे के शरीर को जितनी ताकत चाहिए उतनी उसे नहीं मिल रही, इससे उसका वजन कम रह जाता है, अक्सर बीमार पड़ने लगता है और पढ़ाई लिखाई में भी पीछे रह सकता है। अगर समय रहते ध्यान दिया जाए तो कुपोषण को रोका जा सकता है। बस जरूरी है कि बच्चे को सही और संतुलित खाना मिले, समय पर टीकाकरण हो और साफ सफाई बनी रहे। अगर ये बातें अपनाई जाए तो बच्चा स्वस्थ और मजबूत होगा। छोटे बच्चे सहित गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माँ का पोषण बहुत जरूरी है। माँ अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चे को पूरा पोषण मिलेगा और वो सही तरह से बढ़ेगा। दाल, सब्जियाँ, फल, दूध दही जैसी चीजें माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। तो याद रखिएगा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे तभी घर परिवार में असली खुशहाली आएगी। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक और अहम जानकारी के साथ। पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे
1: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
1: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
4: साफ सफाई और स्वच्छता का
1: पालन करेंगे
4: ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे
4: और अपने
1: परिवार परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे
4: और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए। इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम। हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की। सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा। टीबी को हराएं, जीवन को जिताएं। 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन।
5: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है, क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आ गई आपकी आज समता और साथ में है अंशिका, यानी मैं हूँ आपकी आरजे आरजे आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो भाई आ गए हैं हम लोग, और कहते हैं ना कि जरा सा हाथ नहीं लगा कि फिर से गाना चल गया, तो गाना नहीं चलाना है अभी, गाना अभी थोड़ी देर के बाद चलाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आपके पसंदीदा शो को, जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड आज है हमारा ब्यूटीफुल सा थर्सडे, एंड थर्सडे के दिन हम बहुत कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन आज इस एक साथ एक ही फ्रेम में पहले विश कर देते हैं
7: शुभ दोपहरिया।
6: भाई शुभ दोपहरिया, अंशिका की आवाज आप लोग सुन ही रहे हैं कि अंशिका 2 दिन की पूरी छुट्टी के बाद आ गई है अपने काम के स्तर पर, और फिर से हमारी ट्रेन जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू कर दिया है।
7: बिल्कुल, ट्रेन ने एक पे पकड़ ली है रफ्तार, क्योंकि हम हैं साथ, और जब हम दोनों ही साथ हैं तो फिर ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी। Exactly. और पटरी पे भी चलेगी
6: और अच्छे से, जैसे कहते हैं ना कि उसको एक मंजिल भी मिलेगी, और साथ ही साथ में कहते हैं कि जब हम बहुत कुछ एक साथ कर रहे होते हैं तो उसको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है।
7: बिल्कुल मैम, तो आइए अब मुझे लगता है कि प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे की प्रोसेस में जो है 2 दिन से मैम भी मिस कर रही होंगी, मैं भी मिस कर रही थी।
6: कल संध्या के साथ मैं जब शो कर रही थी तो मुझे ये बात बहुत खल रही थी कि मतलब अंशिका होती है तो मुझे एक वो देती है, क्या बोलते हैं उसको, रास्ता देती है, बट अभी आज मुझे किसी ने 2 दिन से रास्ता नहीं दिया था और मैं ऐसे ही अपनी पोयम को पढ़ रही थी। तो अंशिका अपने काम पे लग जाए।
7: जी, तो वही जब आते हैं वापस तो फिर काम पे लगना तो बनता है। तो आइए सीधे चलते हैं और हमारे ब्यूटीफुल से डे पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रास्ता दे देते हैं हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैम को।
6: चलिए,
7: तो रास्ता आज यूं है कि आती है उनकी याद,
6: आती रहेंगी
8: रहेंगी बहारें
6: जी,
7: जाती रहेंगी बहारें
6: जी, जात बहारें जाती नहीं है,
7: आती हैं। ओके, तो आ रही है उनकी याद, दिल कर रहा है फरियाद, आ रही है उनकी याद, दिल कर रहा है फरियाद, कब मिलेंगे और कब होगी इरशाद इरशाद इरशाद,
6: और कब होगी प्यार की बरसात।
7: वाह,
6: इरशाद नहीं, कब होगी प्यार की बरसात,
7: बहुत जल्द
6: बहुत जल्द। ये ना, ये अब ये लाइन कंप्लीट होती है,
7: मैम ने अच्छे से उसको कंप्लीट किया।
6: हाँ,
7: तो भाई बहुत जल्द होगी प्यार की बरसात, फिलहाल चलिए आइए करते हैं, सीधे चलते हैं पोएम की बात आरजे समता के साथ।
6: थैंक यू सो मच, तो शुरू करें।
7: जी मैम।
6: घर के आंगन की वो रौनक, घर के आंगन की वो रौनक, वो बरगद की ठंडी छाया है, जिनके कदमों में जन्नत है, वो ईश्वर की पावन काया है, कड़वे अनुभवों से सींचा है उन्होंने जीवन की राहों को, बुजुर्गों की मौजूदगी ही तो घर में खुशियों की माया है, हाथों की कांपती उंगलियां बीते कल की कहानी कहती हैं, चेहरे की गहरी झुर्रियां संघर्षों की गवाही देती हैं, उनकी आंखें आज भी हमें सही राह दिखलाती हैं, उनकी डांट में भी सदा एक गहरी ममता बहती है, जब भी हम भटकते हैं राहों में उनका संबल काम आता है, उनका तजुर्बा हर मुश्किल को चुटकी में सुलझा जाता है, बिना कहे वो पढ़ लेते हैं बच्चों के दिल की हर बात, बिना कहे वो पढ़ लेते हैं बच्चों की दिल की बात, बुजुर्गों का आशीष ही जीवन को सफल बनाता है, आओ मिलकर मान बढ़ाएं उनके मान सम्मान का, तो वो जीवित तीरथ हैं, वो रूप है भगवान का, उनके साए में रहकर ही संस्कार हमारे पलते हैं, उनके साए में रहकर ही संस्कार हमारे पलते हैं, बुजुर्गों से ही सजता है हर कोना हिंदुस्तान का।
7: वाह, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत पोयम मैम, बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी लाइंस थी।
6: और अंजिका, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब मैंने कल पोयम पढ़ी तो रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, तो कहते हैं ना कि जब किसी के साथ बॉन्डिंग होती है, जब किसी के साथ अच्छा वाला वो हो जाता है शुभ आगमन,
7: जी मैम,
6: तो क्या होता है कि जब अच्छा वाला किसी के साथ बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो वो फिर किसी और के साथ ना मिसमैनेज होता है और फिर वो मजा नहीं आता है। तो जब रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की बात आई तो मैंने बोला कि जो कल मेरे साथ में थी, तो मैंने कहा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आपको बोलना है, खैर उन्होंने बोला अच्छे से हमारे शो में, उन्होंने साथ भी दिया, पर कहते हैं ना कि जिसके साथ में वो बाउंडिंग बन जाती है, जिनके साथ में वो एक स्टोरी हो जाता है, एक अच्छी सी रिश्ता हो जाता है, तो वो मिसिंग हमेशा से रहता ही रहता है।
7: बिल्कुल, क्योंकि समोसे के साथ आप हमेशा चटनी खाते हो,
6: किसी को लगता है कि यहाँ समोसा कौन है चटनी कौन है,
7: मैंने तो एग्जांपल
6: समोसा में चटनी
7: नहीं,
6: मैं समोसा तुम चटनी,
7: हाँ
6: मोमोज वाली चटनी, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ नहीं,
7: खट्टी मीठी वाली
6: चटनी।
7: तो क्या होता है, कहने का सेंस ये था कि समोसे के साथ आप चटनी खा सकते हो।
6: हाँ।
7: अगर आप सूखा समोसा खाएंगे मतलब बिना चटनी का तो भी खराब लगेगा।
6: हाँ।
7: और अगर उसके साथ आप कुछ और ऐड करेंगे तो भी आपको खालीपन लगेगा।
6: हाँ।
7: तो इन शॉर्ट हमें समोसे के साथ चटनी चाहिए।
6: हाँ।
7: वैसे इन शॉर्ट की आरजे समता के साथ आरजे अंशिका चाहिए, वरना खाली खाली लगेगा।
6: एग्जैक्टली 100% एग्जैक्टली। तो इस चटनी समोसा मोमोज चटनी छोला भटूरा इडली सांभर
7: टीवी एंड रिमोट
6: तो एवरीवन जो भी चीज़ें हैं, मतलब एवरीथिंग, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के पूरक ही बनती हैं, तो हम लोग भी एक दूसरे के बहुत ही अच्छे वाले पूरक बन चुके हैं, आई होप सो, नज़र ना लगे। तो चलिए फटाफट अब रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जान लेते हैं, उसके बाद सुनेंगे एक तरह सा गाना।
7: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कुछ ये है कि जब हम नज़र डालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो चीज़ें जगह जगह से मिल जाती हैं। तो कल भी मुझे जहाँ मैं थी वहाँ से ये रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ मिला।
6: अरे हाँ, अच्छा अच्छा।
7: और वो ये था कि जिंदगी हर बार मौका नहीं देती, अगर दिया है तो संभाल कर रखना। और साथ ही साथ में ये भी कि जब तक आपके पास, ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी लाइफ में होप ही ना हो, होप होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना कि हम हार मान जाते हैं, हमें लगता है कि अरे अब नहीं होगा, बट वो उम्मीद जिंदा होनी चाहिए कि होगा जरूर,
6: कहीं तो होगा।
7: और ये कहीं तो होगा लाइफ में कुछ भी हो सकता है, जिसके पास जॉब ना हो उसे ये होप हो कि उसे मिल जाएगी, या कई बार होता है कि हमारी लाइफ में हमें किसी समवन स्पेशल की भी होप होती है कि मेरी लाइफ में भी कोई आएगा जो मुझे प्यार करेगा, तो ये कोई गलत बात नहीं है।
6: और नहीं, होप रखना जरूरी है, लेकिन हाँ। कहते हैं ना कि ज्यादा होप रखना जरूरी नहीं होता है।
7: राइट।
6: ज्यादा किसी से उम्मीदें आप रखेंगे तो आपको कष्ट होगा, दुख होगा, परेशान होंगे, खुद को बीमार करेंगे। लेकिन हाँ, उम्मीदें वहां रखें जहां से पूरी हो सके, आपको लगे, क्योंकि हम पहचान जाते हैं उस इंसान को देख के कि यहाँ पर उम्मीदें पूरी होती हैं।
7: बिल्कुल मैम,
6: समझ में आ रही है मेरी बात?
7: समझ में आ रही
6: जी,
7: बिल्कुल सही कहा आपने। और उम्मीदें जब पूरी होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में होप को जिंदा रखिए। और याद रखिए कि लाइफ कभी पूरी तरह हारती नहीं है, बस आपको उस उम्मीद को ढूंढना है,
6: जागे रखना है,
7: जगा के रखना है,
6: है ना?
7: अच्छे वाले
6: चले अब ब्रेक की ओर।
7: जी मैम, तो आइए लिसनर्स चलते हैं इस प्यारे से रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के साथ और प्यारी सी हमारी जोड़ी के साथ, सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में है अंशिका। तो आइए फटाफट हम शुरू करते हैं आज की सबसे पहला यानी दूसरा सेगमेंट जो कि हमारा रहता है। भाई बड़े बुजुर्गों को तो ये प्रॉब्लम होती होती है, लेकिन आजकल छोटे से छोटे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देती है। क्या प्रॉब्लम है आइए जानते हैं।
7: तो आज जिस प्रॉब्लम को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं लिसनर्स, उसका नाम है ब्लोटिंग। और अगर सीधी भाषा में हम इसको बताना चाहें आपको, तो पेट में गैस बनने की प्रॉब्लम जो होती है, यानी कि गैस्ट्रिक होना। मैम ने बिल्कुल सही कहा अभी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बुजुर्गों को होता है या बढ़ती उम्र के लोगों को होता है, बच्चों में भी होने
6: लगा। आजकल तो हर किसी को ये प्रॉब्लम है, हर किसी को।

0: कॉमन प्रॉब्लम है ये।
1: तो आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर शुरुआत कहाँ से होती है। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि सबकी हैबिट सुबह एक कप चाय या आधी कप चाय की तो होती है।
0: और शायद ये ब्लोटिंग मुझे भी बहुत ज्यादा है, आपको पता है अंशिका
1: जी मैम।
0: और ये इसका कारण मेन यही है कि मैं ना खाली पेट चाय नहीं, मतलब एक बिस्किट मिल गया, आधी ब्रेड मिल गई तो बस वो खा लिया और चाय पी ली
1: जी मैम। लेकिन कुछ लोगों की आदत क्या होती है, जैसे सभी का नहीं कह सकती हूँ, बट कुछ लोगों की आदत होती है सुबह उठ के जब ब्रश कर लिया, नहा लिया,
0: हाँ।
1: उसके बाद सुबह एक ग्लास पानी पीते हैं,
0: हाँ।
1: चाहे वो कुछ मीठा खा करके पीते,
0: हाँ।
1: हो या खाली भी बहुत लोग पीते हैं।
0: हाँ, मेरी भी आदत है
1: जी।
0: तो आप, मेरी भी आदत है, जैसे कुछ भी अगर मिल जाता है मीठा तो वो खा करके आधा ग्लास पानी भी जरूर पीती हूँ।
1: तो ऐसी सभी की हैबिट होती है, अमूमन मेरी भी है। तो सुबह हम उठे, हमने खाली पेट था, हमने ब्रश किया, नहाया, कुछ नहीं खाया आपने, अगर मान लीजिए थोड़ा सा मीठा कुछ भी खाया और पानी पी लिया, एक ग्लास पानी मान लीजिए आपने पिया, और उसके थोड़ी ही देर बाद या जस्ट 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आपने चाय पी, आपने चाय बनाई की चाय पी, वही प्रॉब्लम शुरू होती है कि ठंडा पानी और गर्म चाय पेट में जाकर मिक्स हो जाती है और फिर वो गैस बनना सुबह से ही शुरू हो जाता है। देखा, गैस के नाम से जीभ भी
0: पता है। और मुझे भी ये लगता है भाई कि मैं तो कभी कभी ये करती हूँ कि, और मेरे घर में सभी लोग, मेरा भाई, मेरे पापा जब थे तो वो भी जैसे एक ग्लास पहले मीठा पानी और तुरंत कहते थे चाय लेकर के आओ, जस्ट चाय। और यही आदत मेरे को भी है कि जैसे पानी पिया आधा ग्लास और तुरंत हमने चाय मतलब पी ली, मतलब हम लेके बैठते हैं
1: जी मैम।
0: और इसीलिए
1: एक हमेशा ये याद रखिए कि अगर सुबह आपने एक ग्लास पानी मान लीजिए पिया हुआ है, और एक बात और होती है कि सुबह हम पानी पीते हैं तो बहुत लोगों की हैबिट होती है खड़े होकर पानी पीना,
0: हाँ।
1: और तेज तेज पानी पीना, मतलब किसी को आपने देखा होगा कि ग्लास लिया नहीं और 2 मिनट के अंदर पूरा खाली हो जाता है,
0: हाँ।
1: ये नहीं करना चाहिए, बैठकर सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, कुछ खाइए जरूर, खाली पेट पानी पीने से किडनी पे दबाव पड़ता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आपने पानी पिया तो ऑलमोस्ट आपको 1.5 या 2 घंटे बाद ही चाय लेनी चाहिए, 1.5-2 घंटे तक पेट में कुछ भी नहीं जाना चाहिए, गर्म चीज तो बिल्कुल ही नहीं जानी चाहिए।
0: सुबह सुबह की ऐसे पूरा दिन,
1: सुबह सुबह जैसे सुबह आपने उठे, जो भी आपका रूटीन हो, मान लीजिए 9 बजे, ऐसा करते हैं कि 9 बजे आपने एक ग्लास पानी मान लो सुबह पिया, ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि अब मुझे 10-10:30 एटलीस्ट 1.5 घंटा तो हो ही जाए, 10-10:30 बजे आप कुछ भी गर्म चाय या गर्म खाना, नाश्ता जो भी है वो आप लीजिए, क्योंकि सुबह ज्यादातर लोग मतलब 10-10:30 बजे तक ही नाश्ता करते हैं, मुझे नहीं लगता इससे पहले भी मतलब सुबह कोई करता है या ऐसे रूटीन है, तो उस टाइप से कभी तुरंत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पेट में जाकर चाय और पानी मिक्स हो जाता है जिससे सुबह से ही गैस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा कारण होता है कि किसी किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो धीमा डाइजेस्ट होता है, जैसे कुछ लोगों को आपने हमेशा सुना होगा मैम शिकायत करते हुए कि हम खाना खाते हैं तो कुछ देर तक भारी भारी महसूस होता है,
0: भारी महसूस,
1: तो इसका मतलब है कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, खाना जो पच रहा है वो देर से पच रहा है। और कुछ लोगों को होता है कि इधर खाया नहीं और आधे घंटे 1 घंटे बाद उनको लगता है कि रिलैक्स है, पेट हल्का लगता है, तो वो लगता है कि हाँ खाना पच गया। तो इसलिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम धीमा है तो सुबह आपको दलिया या फिर फल ऐसी चीजें खानी चाहिए जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए
0: जी, हाँ।
1: दलिया जल्दी डाइजेस्ट होता है, अगर आप मसाला और तेल वाली चीज नहीं खाएंगे तो वो आपको जल्दी डाइजेस्ट होगी, और अगर सुबह ही भारी खा लेंगे, भारी जैसे पराठा हो गया या कुछ भी
0: जो मसालेदार सब्जी है,
1: ऐसा कुछ भी आप खा लेंगे तो फिर आपको वो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होगी
0: जी।
1: मान लीजिए आपने सुबह खा भी लिया है, क्योंकि किसी किसी को हैबिट होती है कि सुबह पेट भर चाहिए, अगर ऐसा है तो फिर आप दोपहर का खाना स्किप करें, आप सीधा 8-9 बजे 8 बजे या जो भी रात को आपका टाइम है उस टाइम खाइए, उतना टाइम आपकी बॉडी को उसको कवर करने के लिए मिल जाएगा। दूसरी चीज होती है कि क्यों होता है, अब एक चीज ये है कि सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है कि ये तब होता है जब आपकी जो फिटनेस है बॉडी की वो वीक होती है। फिटनेस वीक होने का मतलब होता है कि हम ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, पूरे दिन बैठकर काम करते हैं, या कई बार कई लोगों को आपने देखा होगा कि खाना खाया नहीं तुरंत लेट गए, ये बहुत नुकसान करता है। खाना खाने के 15 मिनट या आधे घंटे तक या तो आप चलें, वॉक करें, और अगर चल नहीं सकते हैं तो बैठे रहें, बैठा रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम,
0: लेटना नहीं चाहिए,
1: खाना खाकर तुरंत,
0: चाहे रात में चाहे दिन में
1: कुछ नहीं है, ठीक है आपको रात में कहीं बाहर नहीं जाना है तो टेरिस पे,
0: ऐसे लोगों के पेट निकलते हैं पता है तुम्हें, जो लोग पेट निकल जाता है जिनका, तो यही होता है, या तो कहते हैं कि खाना खा करके वो लोग थोड़ा लेटते हैं
1: और
0: या फिर चलते रहते हैं।
1: नहीं
0: चलते रहते,
1: नहीं, चलते तो रहते नहीं, या तो लेट जाते होंगे
0: या तो बैठ जाते,
1: हाँ बैठ जाते होंगे। खाना खाने के तुरंत बाद ना लेटना चाहिए ना बैठना चाहिए। लेटने का सबसे बड़ा नुकसान होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि गैस बननी शुरू हो जाती है, और बैठने का सबसे बड़ा कारण होता है जो मैम ने भी आपको बताया कि पेट निकल जाता है।
0: सबसे ज्यादा जब बेली फैट बढ़ता है तो वो बैठने से ही निकल मतलब खाना खा के तुरंत लेटने से निकलता है। तो भैया ऐसा ना करें आप लोग, क्योंकि पेट अगर निकल गया ना एक बार तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है, आपकी पर्सनैलिटी को भी वो सूट नहीं करता। आप कितना चेहरे से सुंदर हो लेकिन अगर पेट निकला है तो आप अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों आंटी का तुम्हें हंसी क्यों आ रही है?
1: ऐसे ही मैम कुछ याद आ गया,
0: कुछ याद आ गया था ना,
1: इसलिए
0: तो मैं सोच रही थी कि निवारण मुझे ही बताना होगा। बट यहाँ एक गाना सुन लेते हैं,
1: okay.
0: ठीक है, और उसके बाद में फिर इसका निवारण बताएंगे कि ब्लोडिंग का निवारण क्या होता है।
1: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। बस यू गए यू आए स्टेडियम।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट, अभी लोडिंग की बात हो रही थी और उसका अब बाकी है निवारण।
3: बिल्कुल, तो कारण को जान लिया है, अब चलते हैं निवारण के लिए। और निवारण की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही क्या कहें, बहुत ही सुखद हाथों में है, जो बहुत अच्छे से हर चीज का निवारण करती हैं।
2: जी हाँ,
3: वैसे भी मैंने किसी से कुछ सुना है।
2: क्या
3: डांटती हैं? हाँ डांटती हैं, लेकिन बहुत प्यार से डांटती हैं। प्यार वाला
2: डांटते हैं ना,
3: और निवारण भी प्यार वाला ही होता है।
2: ट्रीटमेंट एक्चुअली हम बहुत अच्छे से करते हैं। उस ट्रीटमेंट में ना हम पेशेंट को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं दिलाते हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है।
3: ट्रीटमेंट हो जाता है
2: और फिर उसका ट्रीट और मेंट दोनों हो जाता है,
3: और फिर दोबारा ना उसे ट्रीट की जरूरत पड़ती है ना मेंट की जरूरत।
2: नो, बिल्कुल नहीं, मेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
3: वो क्या कहते हैं, एक लैंग्वेज कहते हैं ना कि बिल्कुल फिट हो जाता है,
2: चोक हो जाना,
3: फिट एंड फाइन हो
2: जाता है। ठीक है, तो चलें।
3: जी मैम।
2: तो भाई आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताने वाली हूँ, और घरेलू नुस्खों के साथ साथ में क्योंकि मैं खुद उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हैवी वाली ब्लोटिंग है, तो उस वजह से मुझे तो बहुत रिलीफ होता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके। तो मुझे लगता है कि बाकी मेडिसिन्स खाने से बेटर है कि अगर हम घरेलू चीज़ों को अगर अपनाएंगे तो वो हमारी आजीवन तक चलती हैं। मतलब अगर आप सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप काला नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारे किचन में आजीवन तक रहती है।
3: बिल्कुल सही।
2: ऐसा नहीं है कि आपकी कुछ एज के बाद आपके किचन में ये आपको दिखना बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ये आजीवन आपके साथ चलने वाली है। और रही बात मेडिसिंस की, कि मेडिसिंस की जब तक हैवी नीड ना हो, मतलब एक्सेस नीड ना हो, तब तक अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे काम चल रहा है हमारा, तो आप अपने घर में इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी ब्लोटिंग को ख़त्म कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपचार तो मैं बता दूं कि जो मैं इस्तेमाल करती हूँ इस वक्त, कि आपने क्या लेना है कि 5-6 आपको ले लेनी है इलायची, और 10-12 आपको, नहीं 5-6 इलायची ले लेनी है, और 8 और 10 के बीच में आपको ले लेना है लौंग। ठीक है, इनको बराबर मात्रा में हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तवे पे आप रोस्ट कर सकते हैं, या फिर जिसपे आप राई देते हैं ना, जो दाल वाल में छौंक लगाते हैं, उसमें आप इसको रोस्ट कर लें। और हल्की सी स्मेल जब आने लगे ना, तो बस इसको आप गैस बंद कर दें, उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद में इसको पीस लेना है। पीसने के बाद में इसके जो छिलके होते हैं ना इलायची के, वो आपको फेंकने नहीं है, वो आपको इलायची के डब्बे, चीनी के डब्बे में डाल देने हैं, ताकि उसमें भी स्मेल होती है, और जब आप चाय बनाएं तो चीनी के साथ में वो भी यूज होती रहे। एंड जो उसके दाने थे और जो ये लौंग का पाउडर था, इसको आपने बराबर मात्रा में अच्छे से इसको पीस करके रख लेना है किसी छोटे से कंटेनर में। अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप घर पे हैं, अगर आप नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो सुबह उठ करके खाली पेट, मतलब आपने ब्रशिंग कर ली, आपने नहा लिया, आपने खाली पेट एक चुटकी, मतलब एक चुटकी से भी कम आपने लेना है, अपनी जुबा पे रखना है, और हल्का हल्का पानी, 1-2 सिप खाली पानी पीना है, और उसको अंदर ले लेना है, मतलब उसको निगल जाना है। ये कंटिन्यू अगर आपने करना शुरू कर दिया, तो आपकी ब्लोटिंग जितनी भी हैवी होगी, जितनी भी हैवी गैस्ट्रिक आपको बनती है, वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग मेडिसिंस खाते हैं उनकी मेडिसिंस भी छूट जाएगी।
3: वाह, इसीलिए कहते हैं ना कि जिम्मेदारी जो निभा सके उसे ही देनी चाहिए। देखिए मैम ने कितने अच्छे से आपको नुस्खे बता दिए, मतलब मैम इतने अच्छे से बता रही थी कि अगर किसी को गैस्ट्रिक नहीं होगा तो भी वो यूज़ कर लेगा कि मुझे यूज़ करनी है।
2: ये ज़्यादा नहीं हो गया?
3: नहीं ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसे महसूस हुआ। मतलब देखिए ना, आप कितने अच्छे से बता रही थी, छोटी सी लेनी है, छोटी सी कोई आपके पास, तो अब इतने अच्छे से अगर कोई बताएगा और कोई सुनेगा, तो अगर उसे गैस्ट्रिक नहीं होगी तब भी वो सोचेगा कि यार इतने प्यार से बता रही थी, लाओ करके देख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, गैस्ट्रिक नहीं है तो कुछ और जो प्रॉब्लम। हाँ
2: श्योर। उसके बाद में एक और उपचार बताती हूँ कि अजवाइन और काला नमक। भाई ये वाला उपचार तो मुझे ख्याल, मेरे ख्याल से सभी लोग करते हैं घर में। क्या करना है कि 1/2 चम्मच अजवाइन में 1 चुटकी काला नमक मिलाकर गुनगुने पानी के साथ अगर आप दे रहे हैं, तो तुरंत से तुरंत गैस में आराम मिलता है। अगर आपको कहीं पे भी गैस का दर्द हो रहा है, पेट में हो रहा है, कहीं पे भी कुछ हो रहा है, तो आपने ऐसा कर लेना है, तो तुरंत आराम मिल जाता है। सेकंड थिंग आता है जो कि मेरे बैग में हमेशा होता है, सौंफ और मिश्री, यानी खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ चबाने से पाचन तंदुरुस्त होता है और गैस नहीं बनती है। तो अंशिका को बेहतर तरीके से पता है कि मेरे बैग में हमेशा से रहता है। एंड मेरी तो बहुत अच्छी सी एक हैबिचुअल है मेरी ये कि खाना खाने के बाद में कुछ भी अगर बाहर का कुछ खा लेते हैं ना, जैसे कभी मैंने चाउमीन खा ली, कभी मैंने डोसा खा लिया, कभी कभी मन कर जाता है तो तुरंत छोटा सा मतलब जैसे मतलब छोटी सी एक आधी चम्मच एक चम्मच सौंफ लेकर के मैं खा लेती हूँ और तुरंत उससे क्या होता है कि आपका पाचन भी अच्छा रहता है और बढ़िया रहता है। गुनगुना पानी, दिन भर में साधारण पानी की जगह अगर गुनगुना पानी अगर आप ले रहे हैं तो पानी पीने से आंतें सक्रिय रहती हैं और कब्ज नहीं होता है जिसके कारण से गैस नहीं बनती है। सेकंड आता है कि हींग का पानी या लेप, नाभि के आसपास हींग का हल्का पेस्ट लगाने से और हींग का पानी पीने से पेट का अफारा तुरंत कम होता है, ये भी आप कर सकते हैं। एंड कुछ प्रिकॉशंस हैं, मैं आपको वो बता दूं कि खाना खाने का जो तरीका है ना आपको वो बदलना है,
3: तरीका बदलना है।
2: हाँ जी, बुजुर्गों को या जितने भी मतलब बड़े हैं मतलब सभी को ये काम करना है कि एक बार पेट भरकर भोजन करने के बजाय दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा मील मतलब स्मॉल मील को आप ले सकते हैं। तो भोजन को बहुत चबा चबा कर खाना है और अगर आपने एक बार थाली भर के बैठ जाएंगे तो भी आपको एक साथ गैस हो जाती है, पेट भारी भारी हो जाता है। थोड़े थोड़े टुकड़ों में खाना खाएं, मतलब 2 घंटा आपने जैसे अभी खाया कुछ, एक रोटी डेढ़ रोटी खाई, 2 घंटे के बाद में आपको फिर अगर मन कर रहा है तो थोड़ा चावल और दाल ले लें।
3: हाँ।
2: फिर आप अगर आपको मन कर रहा है तो आप शाम में आधी रोटी ले लें, एक रोटी ले लें, तो मतलब प्रॉपर आपको मील लेना है लेकिन आपको क्या करना है कि टुकड़ों में लेना है,
3: छोटे छोटे बैचेस में खाइए।
2: हाँ ठीक है, ये एक पहला हो गया। उसके बाद है कि अगर आपको गैस बनाने वाली, हाँ गैस बनाने वाली चीजों से आपको परहेज करना है, जैसे गोभी हो गया, बीन्स, राजमा, छोले, अरबी, मैदा, तला भुना, मसालेदार खाना तो रात में बिल्कुल भी ना खाएं, अवॉइड करें।
3: जी
2: ठीक है। एंड अगर आपको दूध पीने से गैस बनती है तो उसकी जगह पर आप मट्ठा और दही अपने डाइट चार्ट में डाल सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, रात का जो भोजन करने जो हम लोग खाते हैं खाना, सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले ही खाना चाहिए और खाना खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं चाहिए।
3: यस,
2: खास करके रात में, दिन में तो खाना खा के आप लेट सकते हो लेकिन अगर आपने रात में कर लिया तो तुरंत गैस बनेगी और आपका मॉर्निंग में आपका पेट क्लीन नहीं होगा जिसकी वजह से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा होगी
3: और पेट निकल भी सकता है, जैसे मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि पेट निकलने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। नहीं, आपको नहीं है। तो मैम हमारी वॉक करती है ना इसलिए उनको नहीं है, लेकिन जो लोग वॉक नहीं करते हैं वो अपनी डेली रूटीन
2: में कहते हैं कि वॉक किया करिए।
3: यही मैंने भी अभी कहा ना मैम कि जो भी सुन रहे हैं वो भी रात को वॉक करें तो उससे 2 फायदे होंगे, पहला गैस नहीं होगी, ब्लोटिंग नहीं होगी और दूसरा आपका पेट नहीं निकलेगा, आप हैंडसम लगेंगे, वैसे भी हैंडसम मतलब लगेंगे ऐसा नहीं है, अच्छी पर्सनैलिटी निखर के आती है तो वो निखर के आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए रात में टहलना पड़ेगा।
2: हो गया।
3: हाँ।
2: और टहलते टहलते अगर आपके पास फोन है तो सही भी बात है,
3: तो वॉकिंग टॉकिंग सबसे अच्छा,
2: विद यू समवन स्पेशल
3: पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना चल लिया, ये भी होता है।
2: गुड आइडिया।
3: आजकल आपने देखा होगा कि वो जो ब्लूटूथ लगा के बातें करते हैं, पता लगता है बगल से बातें करते हुए निकल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, अगला इंसान देखने वाला सोच रहा होता है बेचारा।
2: मैं सोचती हूँ कि ये अकेले क्यों बात करता जा रहा है या जा रही है। मैं तो कई बार मैंने लोगों को टोका है, भैया आप किससे बात कर रहे हैं, तो ऐसे दिखाते हैं कान में।
3: हाँ, कि हमने वो लगाया हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इन्हीं बातों के साथ चलते हैं, एक प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आगे आपकी आज समता और साथ में RJ अंशिका। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी बहुत कुछ बाकी है हमारे पास, जो कि है प्लांट से जरूरी कुछ जुड़ी बातें।
6: तो आज से आज हम प्लांट में जिस प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं वो बहुत आम होती है, जो कि होती है रूट रॉट। रूट रॉट का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा कि पौधों की जड़ों में होल हो जाते हैं, उनमें कीड़े हो जाते हैं, और कई बार पौधों में हरे हरे कलर के कीड़े भी होते हैं, कभी पत्तों पे चलते रहते हैं, या हमने देखा हो जड़ में हो जाते हैं। तो अगर आपकी जड़ में होल हो जाता है तो पौधा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और फिर धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और फल नहीं देता है। फूल अगर है, फूल का पौधा है, तो फूल अच्छे से नहीं उगते। तो आज हम उसे लेकर बात करेंगे।
5: लेकिन अंशिका, हमने भी देखा है कि प्लांट्स में ना जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और जिसमें होल, जैसे एक एक उस पे पौधे में,
6: जी मैम,
5: उसकी जड़ों में जब होल हो जाता है, तो ये भी जब कहते हैं ना कि पत्तियाँ पीली पड़ने लगे, या फिर जैसे तुलसी के लिए कहते हैं कि जब सूखने लगे, तो वो उसके ऊपर से मंजरी जो आती है, मंजरी समझ रही हो, जो उसके बीज आते हैं,
6: जी मैम,
5: तो उसको हटा देना चाहिए। उसको हटाने के बाद में पूरे प्लांट्स में उसी मंजरी को ऊपर से छिड़क देना चाहिए, ताकि वो ही जो मंजरी है, जो बीज है, फिर से उस प्लांट्स में पड़ करके एक नया पौधा उगाए, और जो कि ऊपर से वो क्या कहते हैं, जब वो सूखने लगते हैं तो वो तब सूखेंगे नहीं।
6: समझ में आया। इसी को आप उल्टा कर सकते हैं,
5: जैसे
6: अपनी लाइफ में ले सकते हैं। जैसे अगर हम मोटिवेशन की तरफ जाना चाहें, तो मैम भी जब बात कर रही थी तो बहुत अच्छी बात आई मेरे मन में, तो अगर मैम कहें तो मैं कहूँ।
5: हाँ बिल्कुल,
6: यस। तो वो ये है कि जैसे अभी हमने पौधे के लिए बात की ना, कि वो जो बीज होते हैं उन्हीं को आप डालेंगे तो नया पौधा निकलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम हमारी लाइफ को लें, तो कई बार हमारी लाइफ में भी दुख कह लें या प्रॉब्लम्स के होल हो जाते हैं, लेकिन उम्मीद की और कुछ अच्छा होने की या किसी नई शुरुआत की बहुत सारे बीज कहीं ना कहीं आसपास आपकी लाइफ में भी पनपते हैं, लेकिन हम उन्हें देखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो एक तरीके से जो खराब हो गया है बस वही है, और अच्छा आप कुछ भी नहीं होगा, ऐसा आपको भी लगता है ना। लेकिन जब आप उन हम क्या करते हैं, जैसे मैम ने भी बताया कि जब पौधे सड़ने लगते हैं तो हम उस पे ध्यान देते हैं, उस पे तो ध्यान देते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं शायद, लेकिन जो नए बीज होते हैं उनको भी डालने की कोशिश करते हैं, ताकि नया पौधा आसानी से निकल सके।
5: लेकिन जब तक हम ध्यान देते हैं ना, लेकिन हमारा पहला जो ध्यान रहता है ना, वो वही रहता है कि जो चीज सड़ रही होती है ना, जैसे पौधा हो गया, कुछ हो गया, तो हमारा दिमाग सबसे पहले वही जाता है, नए की तरफ बाद में जाता है,
6: नए की तरफ बाद में जाता है, और यही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए जब भी कोई चीज खराब होने लगे और इतनी खराब हो जाए कि ये लगे कि आप उसे दोबारा नहीं सुधार सकते, हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है मैम जो थोड़ी खराब होती है, तो हम कहते हैं अरे थोड़ी सी खराब है, हम इसे सुधार लेंगे, ठीक कर लेंगे, और वो ठीक हो जाएगी। जब ये कॉन्फिडेंस मन में होता है तभी हम उसमें हाथ लगाते हैं कि वो ठीक होगी। लेकिन जब हम जानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है, तो हम जैसे कोई चीज हमारी खराब हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, इसको फेंक दो, ये ठीक नहीं होगा, ये प्रॉपर खराब हो चुका है, क्योंकि मैं पता है कि उसमें 2% भी कोई होप नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास कपड़ा होता है कोई और उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं अभी ये ठीक है, अभी हम इसको करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा।
5: हाँ।
6: तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी चीजें हैं जो खराब ज्यादा हो रही हैं, तो आपको उन्हें वही कहना है जो मैम बहुत प्यार से कहती हैं, और नए बीज अपनी ज़िंदगी में उगाने हैं, क्योंकि जब नए फूल आते हैं ना तो उनकी खुशबू और उनकी बहार बहुत प्यारी होती है, और पुराने जितने भी ख़राब चीज़ें होती हैं उन्हें हम जल्दी भूल जाते हैं। जैसे कि एक तुलसी का पौधा ख़राब होता है, मान लीजिए जड़ से आपने उसको निकाल दिया क्योंकि वो ख़राब था, नए बीज आपने डाल दिए, लेकिन पहली कली जब उस नए पौधे में आती है और हम उसे देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, अरे वाह देखो नई फिर से उगी है।
5: बिल्कुल,
6: कुछ वैसा ही लाइफ के साथ भी करें, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल और तुलसी का पौधा भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। लेकिन उससे पहले मैम जो प्यार से कहती हैं वो सुन लेते हैं, फिर आगे बताते हैं।
5: हाँ, जो मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, पुरानी यादें आपको परेशान कर रही हैं, कोई इंसान परेशान कर रहा है, तो उसको प्यार से अपने मन में बैठा करके, उसकी तस्वीर को बैठा करके सिर्फ उसको एक मैसेज देना है कि गो टू हेल।
6: यस, देखा, तो ये करना है आपको। अब आ जाते हैं पौधों पे, वरना जो लसना सुन रहे होंगे यही कहेंगे कि आर्यन जी का खाली ज्ञान देती रहती है, लेकिन अच्छा वाला।
5: लेकिन नागेश्वर जी एंड शमा फ्रॉम लखनऊ, प्रीति जी एंड आशु जी कहाँ हैं, हमारे जितने फीमेल लिसनर्स हैं जिनके लिए हम प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, फीमेल लिसनर्स क्यों गायब हो गई हैं सभी, तो प्लीज़ सभी से मेरी हार्दिक विनती है कि जितने भी फीमेल लिसनर्स हैं और जो सुन रहे हैं, वो एक बार चैट बॉक्स में आकर के अपनी हाजिरी ज़रूर दिया करिए।
6: तो आइए लिसनर्स चलते हैं और आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये कि ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। जड़ों में होल तब हो जाता है जब उन्हें ठीक से खाद नहीं मिलता, इसलिए प्रॉपर खाद डालना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो हम हमेशा पौधों को लेकर के बताते हैं कि ओवरफ्लो, ओवर वाटरिंग, यानी कि बहुत पानी देना। जैसे हमें लगता है ना कि जैसे हमारे शरीर को 10 ग्लास पानी की ज़रूरत होती है, कुछ लोग कहते हैं अरे यार पानी 2-3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर पिया करो, और नहीं तो बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी। अब इसका मतलब है कि अगर बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो आप 5 लीटर पानी पी लेंगे ताकि वो ज़्यादा होकर बाद में आपको वोमिट होने लगे। तो ऐसा नहीं करना है, उतना ही देना है जितने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बताया है कि पानी हमेशा जड़ से नीचे होना चाहिए। अगर जड़ से नीचे आप देते हैं और सिर्फ इतना देते हैं कि मिट्टी भीग जाए, तो इट मींस कि वो पानी सही दे रहे हैं आप, सही मात्रा है उसकी। दूसरी चीज़ होती है कि हाँ, गमले के नीचे जो हम ऑक्सीजन होल करते हैं, यानी कि पौधे को ऑक्सीजन मिलने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करना चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर ऑक्सीजन होल नहीं है तो आपके पौधे खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है फंगस और बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया के कारण मिट्टी खराब होती है, जिससे कि जड़ों में होल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप रोकना चाहते हैं तो मिट्टी कुछ दिन पर बदलते रहें। जैसे बरसात के मौसम में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि मिट्टी में काई लग जाती है, हम नहीं देखते हैं, तो वो मिट्टी जिसमें कि काई लग गई हो आपको उसको चेंज कर लेना है, फिर दूसरी मिट्टी डाल देनी है, लेकिन कभी जड़ से नहीं निकालना है। जैसे कुछ लोगों से कहा जाता है मिट्टी बदलो तो वो पूरा पौधा जड़ से निकाल करके
5: दूसरे में ट्रांसफर करने लगते हैं,
6: फिर मिट्टी बदलते हैं।
5: हाँ, और अगर वो जड़ से उखड़ गया तो यानी कि कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें होती हैं, तने होते हैं ना, वो बिल्कुल हिल जाते हैं, जिसके कारण से ना क्या होता है कि वो पौधा फिर से आप अगर उसको जमाना चाहेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल से वो कहीं और प्लांट्स में लग पाता है।
6: बिल्कुल, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको इस तरीके से करें। दूसरी चीज़ होती है कि हम पहचाने कैसे कि हमारे जड़ों में होल हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जड़ तो मिट्टी में है, अब कैसे पता चलेगा कि जड़ में होल हो रहा है। तो जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि अगर पत्तियां पीली पड़ने लगे,
5: अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में,
6: इस मीन्स कि जड़ में होल हो रहा है। दूसरी चीज होती है कि कई बार मिट्टी से या पौधे से बदबू आने लगती है। जैसे पौधे की आपने कोई फ्लावर लगाया तो उसकी स्मेल तो होती है, लेकिन अजीब सी गंध जैसी आने लगती है और हमें महसूस होता है, इट मींस कि जड़ में होल हो रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि जैसे होता है ना खाने में कई बार वाइट वाइट परत जैसी हो जाती है जब वो खराब हो रहा होता है, ठीक वैसे ही पौधों में भी होता है। पौधों में बस इतना होता है कि काली काली परत हो जाती है, मिट्टी पे हल्का हल्का काला काला जमने लगता है, इट मींस कि पौधा अंदर से जड़ से खराब हो रहा है, आपको उसको ठीक करने की जरूरत होती है
5: जी।
6: और जो पौधे में जैसे चिपचिपा हो जाता है बहुत ज्यादा, अगर मिट्टी बहुत ज्यादा चिपचिपी हो रही है तो भी आपको मिट्टी को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमारी मिट्टी जो है वो ख़राब हो रही है और जड़ में होल हो रहा है, यानी कि पौधों को सही करने की ज़रूरत है। और अगर लाइफ में इसी तरह कुछ इंसान परेशान कर रहे हैं तो उन्हें भी सही करने की ज़रूरत होती है।
5: हाँ यार, मेरी तो हार्दिक इच्छा है मेरी उनको ठीक करने की, लेकिन वो बस यही है ना कि वो ठीक पता नहीं कब होंगे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा
6: नहीं, यहाँ मैंने कहा जो परेशान करते हैं।
5: हाँ उन्हीं को ही ठीक करना,
6: उन्हीं को ठीक
5: करना, उनको ठीक करना, ढंग से ठीक करना,
6: ढंग से ठीक करना
5: है ना। तो ये जो पौधों की जानकारी,
6: मैम अगर ढंग से ठीक करेंगी तो सामने वाले का क्या होगा
5: पता नहीं, क्या होगा वही होगा जो मंजूरे समता होगा,
6: यही कहने जा रहे थे मैम, कभी कभी मुंह की बात कह देते।
5: तो चलें,
6: चलें
5: ब्रेक की ओर चल रहे हैं दोस्तों, और उसके बाद आएंगे फिर नए टॉपिक की ओर, लेकिन तब तक के लिए सुनते रहे इस प्यारे से शो को। एंड जितनी भी हमारी फीमेल लिसनर्स हैं उनसे मेरी हार्दिक विनती है कि अभी आकर के फटाफट चैट बॉक्स में आकर के एक अपनी एंट्री जरूर दे दें। तो आइए चलते हैं दोस्तों एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में RJ अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के लास्ट बट नॉट लीस्ट सेक्शन को लेकर के, कि भाई कहानी की जरूरत जो होती है ना वो हर उम्र में पड़ती है। क्यों अंशिका?
6: बिल्कुल।
5: कहानी किसी की जिंदगी की हो सकती है, कहानी किसी की खुद की हो सकती है, कहानी किसी की खुद की किसी अपनों की हो सकती है, ऐसा होता है, है ना।
6: प्यार की भी हो सकती है।
5: प्यार तो
6: क्योंकि कहते हैं ना प्यार की कोई उम्र नहीं,
5: प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तुम मुझे ये देख के क्यों बोल रही हो?
6: मैं आपको देख के काम
5: तुम मुझे कमेंट कर रही हो कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती।
6: अरे मैम, अब आप ऐसा समझेंगी तो फिर
5: पता नहीं क्यों हमको ऐसा फील हो रहा है।
6: ऐसा नहीं फील होना चाहिए था, मैं तो इधर देख रही थी
5: क्योंकि मैं 80 साल की नहीं हूँ अभी।
6: नहीं, मैंने आपको
5: उम्र में प्यार हुआ है तो हाँ ठीक है,
6: मैंने आपको नहीं कहा, मैंने एक प्यारी सी लाइन कही।
5: ठीक है, कोई बात नहीं, शुरू करें
6: जी।
5: तो प्यार की जरूरत, जैसा कि अंशिका ने कहा कि हर उम्र में पड़ती है, एग्जैक्टली हर उम्र में प्यार की नीड होती है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज प्यारी सी पोयम जो है, जो कि प्यार को ही दर्शाती है और उसका जो मॉरल है ये आप मुझे बताएंगे और अंशिका बताएंगे।
6: ओके,
5: ठीक है,
6: ठीक है,
5: सुने पढ़े। ये कहानी जो है ये 80 साल के करतार सिंह की है, जिन्होंने बैंक मैनेजर के पद से रिटायर होने के बाद अकेलेपन से हार मानने के बजाय अपने गांव को बदलने का फैसला किया। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी एज बढ़ जाती है तो हम हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं अपनी जिंदगी को लेकर के, कि अब जो है ना कि अब कुछ नहीं होना है और अब हमारे पास बची कुछ जो जिंदगी है वो हम अपने ईश्वर को दें। लेकिन लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम अपने ईश्वर को, हम अपने भगवान को तब भी याद कर सकते हैं जब आप अपने परिवार के साथ अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं।
6: बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कहा।
5: सही कहा कि नहीं कहा?
6: उस पॉइंट पे भी देखिए, जैसे एक ये होता है कि पूजा पाठ,
5: हाँ।
6: जैसे जब बढ़ती एज होती है तो कहा जाता है अरे अब तुम्हारे पास क्या, अब तो पूजा पाठ करो और भगवान का नाम लो, जैसे कहा जाता है। तो क्या हम अपना काम करते हैं तो भगवान का नाम नहीं लेते हैं?
5: बिल्कुल।
6: क्या अगर कोई, मान लीजिए घर का बुजुर्ग है, उसके पास कोई काम नहीं है, ऐसा भी हम मान लेते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि दिन भर पूजा पाठ वो करें?
5: हाँ।
6: ऐसा नहीं होता है, वो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, चलो ये मान लेते हैं कि कुछ लोगों की बढ़ती उम्र होती है तो वो सारे फास्ट छोड़ देते हैं। क्यों?
5: Exactly,
6: क्योंकि उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग वो नहीं रख सकते। तो क्या इसका मतलब है कि भगवान की पूजा नहीं करते? भगवान सिर्फ मन से खुश होते हैं।
5: बिल्कुल। और उसके बाद में क्या होता है कि जब लोग रिटायरमेंट के बाद आराम को चुनते हैं, तब करतार सिंह ने अपनी पेंशन के पैसों से कुछ पौधे खरीदे। ठीक है। और रोज सुबह उठकर अकेले ही सड़क किनारे पेड़ लगाना उसने शुरू कर दिया। शुरुआत में लोगों ने उस पर जैसे कहते हैं ना कि तंग, जैसे तंग दिली से कोई बोलता है, या फिर टॉन्ट कसना, लाइक ऐसा हुआ कि टॉन्ट वॉन्ट कसे बहुत सारे लोगों ने, उनको ये मतलब खिल्ली उड़ाई, कहा कि अब देखो ये क्या कर रहा है। लेकिन उसकी लगन देखकर गांव के अन्य भी बुजुर्ग उनके साथ इस काम में लग गए। सबने मिलकर सदाबहार बुजुर्ग नाम का एक ग्रुप बनाया। सदाबहार बुजुर्ग का एक ग्रुप बनाया जिसमें न सिर्फ पूरे गांव के 1000 पेड़ लगाए बल्कि बच्चों के लिए एक मुफ्त लाइब्रेरी की और शाम की पाठशाला भी शुरू करी उन्हीं पैसों से। ठीक है।

0: अब इस नेक काम का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि पहले बुजुर्ग अपनी बीमारियों को अकेलेपन से घिरे रहते थे, वे आज पूरी तरह स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। करतार सिंह ने यह साबित कर दिया कि बुजुर्ग समाज पर बोझ नहीं बल्कि अनुभव और समय का अनमोल खजाना होते हैं। आज 80 वर्ष की उम्र में भी उनकी फुर्ती नौजवानों जैसी है और उनका ये ग्रुप आज युवाओं के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है।
1: बिल्कुल, और बहुत ही प्यारी स्टोरी। थैंक यू सो मच मैम इतनी प्यारी स्टोरी सुनाने के लिए। और देखिए, आप सीख सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हम अकेले ही चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवा
0: बनता
1: गया। अगर कोई एक इंसान कोशिश ही ना करे तो कारवा कैसे बनेगा?
0: बिल्कुल।
1: जैसे देश की आजादी के लिए जब बात होती है तो कहा जाता है गांधी जी अकेले चले थे, लेकिन उनके साथ लोग जुड़ते गए और कितने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दे दी लेकिन देश को आजाद करा लिया।
0: Exactly.
1: तो ठीक उसी तरह है। और बिल्कुल, बुजुर्ग अनमोल खजाना होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। कभी भी ये नहीं समझ, जैसे आजकल क्या एक माइंडसेट बन चुका है कि अरे आप तो बेकार हो गए ना, एक वो माइंडसेट है, वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। मत भूलिएगा कि अगर एक बुजुर्ग अपनी पे आ जाए तो वो 10 जवानों के बराबर हो सकता है।
0: अच्छा।
1: इसलिए कभी भी उसकी
0: उनको टॉन्ट ना करें, उनके कामों की सराहना करें, उनको कभी भी बेसहाय, बेसहारा या जैसे कहते हैं ना कि मतलब बेकार नहीं समझना है कि अरे यार आपकी एज हो गई है, अब आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो। ये जो वर्ड कहने वाला होता है ना, ये बहुत उनको चुभता है ये बात की, मतलब मैंने जिंदगी भर किया, अब मुझे ये समझा रहे हैं कि अब आपसे नहीं होगा। ऐसा बहुत बार सुनने को मिला है। तो प्लीज ऐसा अगर कोई लोग भी कहते हैं तो ऐसा ना करें। एंड प्रीति जी, आप मेरा मैसेज आशु जी से जरूर पहुंचाइएगा, अनुष्का जी, आशु जी, सविता जी, एंड कौन कौन था,
1: नव्या,
0: नाजिया, सब पता नहीं कहाँ है, मतलब आती हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो होता है ना, ये स्पेशली विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है, तो हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर के आते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब आप खुद अगर ये बात को अगर आप कहें तो मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे इस शो को शुरू होते हुए 3 साल हो गए, एंड 3 साल में हम लोगों ने कभी भी किसी भी टॉपिक को रिपीट नहीं किया है।
1: बिल्कुल, हर दिन
0: बिल्कुल नया, हर हफ्ते नया, हर पल नया। तो आप खुद सोचिए कि ये पूरी मेहनत जो होती है वो किसके लिए होती है? सिर्फ आप लोगों के लिए होती है, हमारे लिसनर्स दोस्तों के लिए होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है, और चलते चलते आइए प्यारा सा गाना सुना देते हैं, और उसके बाद में मैं आऊंगी आपसे और अंशिका आएंगे टाटा बाय बाय करने के, लेकिन आइए ये गाना सुनते हैं।

अंशिका को दी है हमने 2 से 3 मिनट की इजाजत कि वो पानी पी ले और अभी आपके साथ आएंगी कॉलर ट्यून गोंडा में और मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए शुभ क्या होने वाली थी, मैं शुभ रात्रि होने वाली थी, नहीं तो अब मुझे दे इजाजत, मैं मिलूंगी कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

बहुत जताते हो चाह हमसे भाई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ आप सभी का यानी कि हमारे सभी लिसनर्स का वेलकम वेलकम वेलकम, तहे दिल से आप सभी का वेलकम है आपके अपने वाले बहुत ही प्यारे वाले कॉलिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उनका भी जो कि हमें चैट बॉक्स से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, और उनका भी जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, सभी का स्वागत स्वागत स्वागत है। तो वही स्वागत तो हो गया है, लेकिन हमारा चैट बॉक्स जो है वो अभी तक सूना सूना लग रहा है, यानी कि अभी भी कोई आया नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं और अपने शो को स्टार्ट करते हैं और फरमाइशों का जो सिलसिला है उसे शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक ये सिलसिला शुरू होगा तब तक लिसनर्स भी हमारे आ ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं फरमाइशों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले पहले पहले फटाफट से आप सभी आएँ, अपना हालचाल बताएं और हमें बताएं कि आप कैसे हैं। सो आइए लिसनर्स, फरमाइशों को शुरू करते हैं। पर इसी के साथ बता दूं कि भाई आज है थर्सडे, और थर्सडे के दिन हम लेकर के आते हैं, यानी कि मैं लेकर के आती हूँ ऐसी पहेलियाँ जो होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ छुपा होता है, और जो भी देता है उन पहेलियों का जवाब तो आप सभी देते हैं और उन पहेलियों को इन्जॉय करते हैं। तो आज भी लेकर के आई हूँ मैं, लेकिन पहली फरमाइश के साथ चलते हैं, और फिर जब हमारे लिसनर जो हैं वो हमारे आ जाएंगे फिर हम पहेलियाँ भी ज़रूर से बताएंगे। तो बताते हैं, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं, इस प्यारे से सॉन्ग को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बहुत ही प्यारा वाला शो जिसका नाम है कॉल ट्यून गोंडा, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून, बने रहिए, सुनते रहिए, और आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और देखिए बातों बातों में यही होता है ना, जब दोस्तों से मिलते हैं तो बातों बातों में कुछ ना कुछ रह जाता है। भाई ये तो बताना रहेगा कि ये फरमाइश किसकी है, तो ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है जो कि फरमाइश है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को। और अगर आप भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए फटाफट से फोन उठाएं, डायल करें 6393316429 6393316429 4129। और ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग देवी प्रसाद जी का, आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को।

तुझे प्यार करना सिखा दूं मैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी देवी प्रसाद जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है जूही जी की। तो आइए सुनते हैं जूही जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार बहुत सारी बातें करने के लिए। लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ रिजू जी आ गए हैं और इसी के साथ महेंद्र जी जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजे अंशिका मैम जी, कैसे हो आप? तो महेंद्र जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं ज़रूर बताइए। और हेलो रिजू जी। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं जानवी जी यानी कि जूही जी हमारी अगली फरमाइश जो कि है जूही जी की। तो आइए सुनते हैं जूही जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। सुने इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका स्टेडियम।

रब्बा भाई, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, रब्बा रब्बा मेरे रब्बा मुझे एक झलक तू दिखा। तो बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी जूही जी ने। अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है रमेश कुमार जी की। तो आइए सुनते हैं रमेश कुमार जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार एक प्यारी सी पहेली के साथ, क्योंकि आज है थर्सडे और आज होता है पहेलियों वाला बहुत ही अच्छा सा सेक्शन जिसमें कि हम आपको एक पहेली बताते हैं और देखते हैं कि आज हमारी पहेली का जवाब कौन सा लिसनर, मतलब हमारे कौन से लिसनर जो हैं वो दे पाते हैं। सो देखते हैं, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं रमेश कुमार जी के सॉन्ग को, एंजॉय करते हैं। आप सभी सुनिए, एंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और हाँ, कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाना चाहते हैं।

तो उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाएं, डायल करें 6393316429 और अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचा दें। फिर एक बार नंबर बता देती हूँ, 6693316429। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

वाह, चोरी चोरी चुपके चुपके बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी रमेश कुमार जी ने। तो इससे पहले कि हमारी अगली फरमाइश की तरफ हम आगे बढ़ें, बारी आ चुकी है आपके अपने बहुत ही मस्ती वाले सेगमेंट की कह लें तो, जिसका कि नाम है पहेलियाँ। तो आज भी आप सभी के लिए होने वाली हैं पहेलियाँ और देखते हैं कि कौन दे पाता है हमारी पहेलियों का जवाब। तो आज की जो पहेली है मेरे पास वो अब मैं पढ़ने वाली हूँ, तो आप सभी फटाफट से सुने और जवाब दें और अपने कहते हैं ना कि बिल्कुल फोकस से सुनिएगा। तो आज की पहेली है, वो क्या है जो पूरा कमरा तो भर देता है, वो क्या है जो पूरा कमरा तो भर देता है लेकिन रहने के लिए एक इंच की जगह भी नहीं घेरता। फिर एक बार बता देती हूँ, वो क्या है जो पूरा कमरा तो भर देता है लेकिन रहने के लिए एक इंच की जगह भी नहीं लेता है। क्या है ऐसी चीज़, सोचिए सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए, लसन सोचिए और फिर सोच करके आप हमें जवाब दीजिए। तब तक आइए चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन हाँ, इस पहेली का जवाब तो मैं आप सभी से ज़रूर चाहती हूँ। फिर एक बार पहेली पढ़ देती हूँ कि वह क्या है जो पूरा कमरा तो भर देता है लेकिन रहने के लिए एक इंच की भी जगह नहीं घेरता है। तो भाई देखते हैं कि इस पहेली का जवाब सबसे पहले कौन दे पाता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है जानवी जी की। तो आइए सुनते हैं जानवी जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहिए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और हाँ, कॉल करना और अपनी फरमाइश देना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर है 6393316429। तो आइए लिसनर्स सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बहुत ही मौसम जो है बहुत ही प्यारा है, बेईमान क्या कहें, बारिश जो है वो बहुत ही प्यारी सी हो रही है, कुछ ऐसा ही प्यारा सा मौसम है। और इसी के साथ में हमने जो पहेली पूछी थी उसका जवाब भी आ गया है, और जवाब जो है वो दिया है महेंद्र जी ने। महेंद्र जी ने लिखा है, रोशनी भी हो सकती है, हो सकती है नहीं, रोशनी ही है महेंद्र जी। और इसी के साथ में सनी पांडे जी भी आ गए हैं, जो कि लिख रहे हैं मोमबत्ती या बल्ब। सॉरी सनी जी, मोमबत्ती या बल्ब तो नहीं है। और इसी के साथ नागेश्वर जी आ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून अंशिका जी, गुड आफ्टरनून नागेश्वर जी, कैसे हैं आप। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है मुमताज जी की। तो आइए सुनते हैं मुमताज अंसारी जी के सॉन्ग को, जो कि बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे। और भाई आप सभी ने बहुत ही अच्छे से कहीं ना कहीं पहेली का जवाब देने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन सही जवाब जो दिया वो दिया महेंद्र जी ने। महेंद्र जी ने भाई, महेंद्र जी ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। तो महेंद्र जी आप ज़रूर से अपना कोई भी सॉन्ग हमें भेज दें, हम उसे ज़रूर प्ले करेंगे। सो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं और सुनते हैं मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

प्यारी बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी मुमताज अंसारी जी ने। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है राकेश जी की। तो आइए सुनते हैं राकेश जी की फरमाइश जो कि है बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

के इंतजार चली रहे, मैं तो अपने साजन के द्वार चली रहे। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है शरद प्रसाद प्रजापति जी की, जो कि हमें मथुरा से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं शरद जी के सॉन्ग को और इसके बाद में हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलेंगे। और उससे पहले नागेश्वर जी, धर्मेंद्र मोहन जी भी आ गए हैं। ओके, आप सभी का स्वागत है कॉल ट्यून गोंडा में। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं और बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ और सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की है शरद प्रसाद प्रजापति जी ने।

लिखा, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग मैंने खत महबूब के नाम लिखा, प्यार के कागज़ पे दिल की कलम से, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए बढ़ते हैं, इससे पहले बढ़े अगली फरमाइश की तरफ। हमारे चैट बॉक्स में जो है बहुत सारी मस्ती हो रही है, मतलब नागेश्वर जी जो हैं वो पूछ रहे हैं, पहेलियाँ पूछ रहे हैं, और साथ ही में पालकी में जगह मिलेगी, मुझे भी बैठना है। बिल्कुल नागेश्वर जी, जगह ही जगह मिलेगी आपको। और इसी के साथ धर्मेंद्र मोहन जी जो कि आवाज़ विकास से सुन रहे हैं लिखते हैं, अंशिका जी नमस्ते, नमस्ते आपको भी महेंद्र जी, तो आइए, धर्मेंद्र जी, तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ और चलते हैं जो कि हमारी अगली फरमाइश है। भाई अगली फरमाइश जो है वो है हमारे कान्हा का सॉन्ग, यानी कि कृष्ण जी का, क्योंकि कल है कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये कृष्ण जी का प्यारा सा सॉन्ग है। और हमारे प्यारे से लिसनर है जिनकी की फरमाइश थी कि कोई भी आप कृष्ण जी का सॉन्ग सुना दें, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को और याद करते हैं हमारे नटखट नंदलाल को, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंदा में, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, स्टे ट्यून्ड।

बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आई है। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है अगले लिसनर की, जिनका की नाम है जग्गू जी। तो आइए बढ़ते हैं अब अगली फरमाइश की तरफ, जो कि जग्गू जी की है। सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में, सुने इंजॉय करें, और हाँ सॉन्ग्स को सुनते रहिए, इंजॉय करते रहिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर देते रहिए। आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

कसम क्या होती है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी हमारे लिसनर यानी कि जग्गू जी ने। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है उस्मान खान जी की। तो आइए सुनते हैं उस्मान जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए बने रहे अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। और कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिए, नंबर है 6393316429। कॉल करें, अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाएँ। फिलहाल आइए सुनते हैं उस्मान जी के सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

अमर रहेगा। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आई है। बढ़ते हैं इससे पहले कि चले अगली फरमाइश की तरफ। महेंद्र जी लिख रहे हैं कि अंशिका मैम जी, हमने भी सॉन्ग भेज दी थी फरमाइश, तो मैं महेंद्र जी से पूछना चाहती हूँ कि महेंद्र जी आप अपना सॉन्ग फिर से एक बार ज़रूर बता दें, हम उसे ज़रूर प्ले करेंगे। महेंद्र जी आप अपना सॉन्ग एक बार और प्लीज़ बता दीजिए कि आपका सॉन्ग क्या है, हम उसे ज़रूर प्ले करेंगे। और इसी के साथ लिसनर्स आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और हमारी अगली फरमाइश जो कि है वो है नागेश्वर जी की। तो आइए सुनते हैं नागेश्वर जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहे हैं आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। और महेंद्र जी आप अपने सॉन्ग को एक बार फिर ज़रूर से भेजें।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग लिसनर्स, और आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। और महेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी या फिर एक बार अपना सॉन्ग बता दीजिए, हम उसे जरूर प्ले करेंगे। सो आइए लिसनर्स, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है शुभम जी की। और शुभम जी का जो सॉन्ग है वो भी बड़ा ही प्यारा है, जो कि है अरे द्वारपाल कन्हैया से कह दो। तो आइए सुनते हैं शुभम जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो सुदामा आए हैं, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है महेंद्र जी की। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को। और हाँ रिजू जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो आप ही का होगा। फिलहाल आइए सुनते हैं हम महेंद्र जी के सॉन्ग को, जो कि बड़े ही टाइम से महेंद्र जी जो हैं वो अपने सॉन्ग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उनके सॉन्ग को।
1: देखने के लिए शिमा

बिल्कुल आप आए बाहर आई जो कि फरमाइश थी महेंद्र जी की। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है रिजू जी की। तो आइए सुनते हैं रिजू जी के सॉन्ग को और इसके बाद हम सुनेंगे धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं। पर उससे पहले आइए सीधे चलते हैं रिजू जी के सॉन्ग की तरफ।

काफी कह लें कि बहुत ही सैड वाला सॉन्ग। क्या बात है रिजु जी, आज आपका मूड जो है वो थोड़ा सैड सैड है। वैसे मूड ही है, कभी सैड होता है कभी हैप्पी होता है। तो इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ चलें, गीता जी आ गई हैं, गीता श्रीवास्तव जी, गीतू जी जो कि लिख रही हैं, गुड आफ्टरनून आरजे अंशिका मैम, गुड आफ्टरनून गीतू जी, कैसी हैं आप? और साथ ही लिख रही हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग। और इसी के साथ महेंद्र जी, नागेश्वर जी, धर्मेंद्र मोहन जी, रिजु जी, सनी जी, जितने भी लिसनर हमारे साथ अभी तक कॉलर ट्यून गोंडा में बने हुए थे, उन सभी का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। और शर्मा लखनऊ लिख रहे हैं, गुड इवनिंग डियर मैम जी, गुड इवनिंग आपको भी। सो आइए लिसनर्स, अब चलते हैं हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट फरमाइश की तरफ, जो कि है धर्मेंद्र मोहन जी की। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के मिड में ही आपको बबाय करने के लिए, आपसे बातें करने के लिए। लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं और आइए सुनते हैं धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहिए आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, स्टे ट्यून्ड।

कर्ज से प्यारे के प्यारे से सॉन्ग के साथ में मेरा वक्त भी हो गया आप सभी से बाय-बाय कहने का। तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जबरदस्त रहिए और रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए। बाय-बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गोधूली, और आज गोधूली में स्पेशल कार्यक्रम है खेत खलिहान, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर बातचीत करते हैं। आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन है, क्या नाम है उनका, और किस विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे किसान भाई बहन भी उसका इंतज़ार करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं हरी शंकर सिंह जी, जो कि एक शोध छात्र हैं, PhD स्कॉलर हैं। क्योंकि शोध छात्र होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी जानकारी होती है, और एक स्टूडेंट भी कह सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम जानना चाहेंगे सर, आप अपने बारे में कुछ बताएं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद शाह जी।
1: जी बिल्कुल सर,
2: ज्ञान स्थली कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं गोंडा जिले के लिए, जो मेन हमारे किसान हैं, किसान भाई हैं, जो हमारे इस ज्ञान स्थली से जुड़े हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपके द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं कृषि संबंधित, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरी शंकर सिंह, पिताजी का नाम श्री राम मनोहर सिंह, ग्राम सभा मुजेड़ पश्चिम बेलसर से हूँ। मेरी BSc RML यूनिवर्सिटी से थी, राम मनोहर लोहिया जो अभी अयोध्या में है। मेरी MSc महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस से है, और अभी मैं PhD चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय कानपुर से कर रहा हूँ।
1: जी, तो ये सर हुई आपकी पढ़ाई लिखाई की जर्नी, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई की यात्रा। अब जर हम लोग जो विषय पे बातचीत करेंगे, वो मिट्टी के नमूने लेने की विधि, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है, उसका सही जो उत्पादन होता है और सही फसल जो होती वो मिट्टी होती है। जिस तरीके से एक बच्चे को टीका की ज़रूरत होती है, और जब टीका लग जाता है तो बच्चा जो है होता है वो स्वस्थ हो जाता है, उसी तरीके से मिट्टी की जाँच कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी में उर्वरक होती है और बहुत सारे तत्व होते हैं, और जब उनकी कमी हो जाती है तो उत्पादन बहुत कम हो जाता है और फसल पर प्रभाव पड़ता है। तो आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी के नमूने लेने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और क्या क्या है, इस विषय पर जानकारी दीजिए सर।
2: मिट्टी की उर्वरता का मूल्यांकन हो जाता है उससे, जो हमारे फसल को जरूरी है, जिस मिट्टी में हम लगा रहे हैं। जैसे हमारे, अगर हम बात करेंगे, जो हमारे यहाँ लूमी सॉयल है, जो हमारे यहाँ जलोढ़ मिट्टी जो बोलते हैं, वो हमारी फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, और मतलब उसमें सैंड और उसका लोम का मात्रा अच्छा होना चाहिए। और जो हमारी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी है हमारे क्रॉप के लिए, अगर उसमें हम मिट्टी की जांच कराएंगे, वही हमारी फसल के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहेंगी, और अच्छे उत्पादन उससे हम पा सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि मूल्यांकन, और दूसरा हमारे क्रॉप की सिफारिश क्या है, क्या मांग रही है, कौन सी क्रॉप है, उस बेस पे हम नमूने लेते हैं मिट्टी के।
1: जी, मतलब कहने का मतलब है कि कोई फसल हम बो रहे हैं या बोने का हमारा जो प्लान है, तो सबसे पहले मिट्टी का जो नमूना है उसकी जांच कराना बहुत ज़रूरी है। आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी का नमूना लेने के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि किस समय हम मिट्टी का नमूना ले जाएँ और जाँच कराएँ, और कहाँ पर कराएँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत जानना बहुत ज़रूरी है।
2: फसल लगाने के लमसम 15-20 दिन पहले ही मिट्टी का सैंपलिंग करना चाहिए, हम अपने खेत से मिट्टी लें, और उस समय ना लें जिस समय हमारी फसल, क्या नाम है, मिट्टी में लगी हो, जिस समय हमारे खेत में लगी हो, उस समय हम कतई सैंपलिंग ना करें। मिट्टी सैंपलिंग उसी समय करें जैसे 15-20 दिन पहले कर लेंगे, उसको इकट्ठा करके और हम रखेंगे, उसके बाद उसकी प्रक्रिया होती है आगे, तो उस बेस पर हम अपना सैंपलिंग करते रहें।
1: जी सर, सैंपलिंग की बात हो रही है, तो ये सैंपलिंग हम कहाँ पे, जिला स्तर पे, मतलब जो हमारा जो मंडल है वो कहाँ पे हमारे किसान भाई बहन ले जाएं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहन इस समय हम लोग को सुन रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि सर वो कहाँ पे ले जाएं, अपने नज़दीकी किस जगह पे ले जाएं कि जिससे उनकी मिट्टी की जांच हो सके।
2: सबसे अच्छी चीज़ तो अभी ये है कि जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसमें केवीके है
1: जी, कृषि विज्ञान केंद्र है
2: जी, अपने यहाँ अभी मनिकापुर में है केवीके, तो सबसे अच्छा चीज़ तो वही है क्योंकि वहाँ SMS भी बैठते हैं और क्या नाम है, आपको बृहद जानकारी मिल जाएगी और आप अपनी सैंपलिंग फ्री में वहाँ करा सकते हैं
1: जी,
2: मनिकापुर केवीके पे जाके
1: जी। मतलब आप कहने का मतलब है कि कोई किसान भाई मिट्टी की जांच कराना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र मनिकापुर में भी है और गोंडा में सर अपने यहाँ तो दो कृषि,
2: गोंडा में ब्लॉक पे भी होता है
1: जी। अच्छा ब्लॉक
2: जी, जैसे क्या नाम है तरबगंज जाके अपनी सैंपलिंग ले जाके किसान भाई करा सकते हैं
1: जी। मतलब ब्लॉक स्तर पे भी आप जाके अपनी मिट्टी का जांच करा सकते हैं। आप सर जानना चाहेंगे, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि खेत से मिट्टी का नमूना लेते समय कितनी गहराई से मिट्टी ली जाती है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बहनों के मन में सवाल होगा कि जब मिट्टी की जांच कराएं तो कितनी गहराई से मिट्टी ले जाएं। भाई हम अगर मिट्टी की जांच करा रहे हैं तो हमारे ये होता है कि हम कितनी गहराई से मिट्टी को निकालें कि जिससे हमारी मिट्टी की जांच जो है वो अच्छे तरीके से हो सके।
2: इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे जब हम अपना सीरियल क्रॉप लगाते हैं, जब धान गेहूं या ऐसा, तो उसमें सामान्यतः तो 15 सेंटीमीटर तक हम सैंपलिंग करते हैं। अगर हम इधर आएंगे बड़े पेड़ों के लिए, जैसे आम के बाग का सैंपलिंग करना है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर तक नीचे सैंपलिंग करेंगे और उस मिट्टी को क्या नाम है उतनी गहराई में जाके और उसके एक तरफ की परत को 6 इंच तक काट के निकाल के इकट्ठा करके और उसकी सैंपलिंग करके हम भेजते हैं
1: जी। तो खेत से मिट्टी का नमूना लेते समय कितनी गहराई से मिट्टी ली जाती है?
2: सामान्यतः 15 सेंटीमीटर तक गहरी मिट्टी लेनी चाहिए। और अगर हम बाग का कहीं मिट्टी का सैंपलिंग कर रहे हैं, जहां आम के पेड़ लगे हों, जहां हमारा नींबू लगा हो, इन सब चीज़ों में, इन सब बागों में लगभग 90 से 120 सेंटीमीटर तक जाके सैंपलिंग करनी चाहिए। एक टेंच मतलब एक गड्ढा खुदवा के और वहां से इसको सैंपलिंग करनी चाहिए।
1: तो अब सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी के नमूने लेने के लिए कौन कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है?
2: सर जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी में जो हम नमूने लेंगे उसके लिए कभी कभी क्या देखते हैं कि बहुत ही हार्ड, बहुत ही मजबूत मिट्टी होती है, उसके लिए स्क्रू टाइप अगर होता है, अगर वो चीज़ होती है उसमें एक जैसे आप बढ़ई के यहाँ देखे होंगे ऐसे घूमा घूमा घूमा वो होता है जो रोल करता है, लकड़ी छेदता है, उसी तरीके से एक होता है। और हमारे यहाँ किसान भाई एकदम सामान्य रूप से फावड़े और खुरपी की मदद से भी सैंपलिंग कर सकते हैं सॉइल की, जिससे क्या नाम है बीत आकार का उसमें कट करके और 6 इंच का मिट्टी निकाल के और उसको रख सकते हैं। और सैंपलिंग करने के लिए जो इसमें हम उपकरण यूज करते हैं, तसले का यूज़ कर लेंगे, प्लास्टिक बैग का यूज़ ले लेते हैं, नमूना का जो फॉर्म का आता है लिफाफा उसको हम साथ में रखते हैं ताकि उसमें सैंपलिंग करके और बकायदा डेट और नाम और आधार नंबर ये सब डाल के भेज सकें।
1: तो ये सर हो गई मिट्टी के नमूने के लेने के लिए उपकरण की आवश्यकता। आप सर जानना चाहेंगे कि नमूना लेते समय खेत का कौन सा भाग छोड़ देना चाहिए?
2: नमूना लेते समय पहली चीज़ तो हम मेढ़ के किनारे की मिट्टी का हम सैंपलिंग नहीं करेंगे, जहाँ हमारे ऑर्गेनिक का नाम है मैटर पड़े हुए हैं, जहाँ हमारे खाद इकट्ठा की जाती हैं वहाँ का हम सैंपलिंग नहीं करेंगे, जहाँ हमारा हमेशा पानी भरा हुआ रहता है वहाँ की सैंपलिंग नहीं करेंगे। सही तरीके से सैंपलिंग बीच के खेतों का ही करना चाहिए, किनारे आप 2-3 मीटर की परिधि छोड़ के बीच की ही सैंपलिंग करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है
1: जी। अभी आपने सर कहा कि बीच का ही सैंपलिंग करना चाहिए, ऐसा क्यों सर?
2: बीज का सैंपलिंग से ये होता है कि जैसे किनारे कभी हो सकता है बहुत ज़्यादा खाद मिल जाए, बीज का मतलब जो एक सैंपलिंग करने का तरीका है, सैंपलिंग कई प्रकार से हैं, तो आप कभी कभी सैंपलिंग जैसे अभी आगे हम बताएंगे आपको कि जो एक प्रोसेस है सैंपलिंग का, जिग जैग सैंपलिंग सबसे सही सैंपलिंग होती है। कभी कभी आप सीधी सैंपलिंग करेंगे तो उसमें आपको न्यूट्रिएंट जो उसमें उर्वरक मौजूद हैं वो आपको सही मात्रा में नहीं दिखाएंगे, रिजल्ट सही नहीं मिलेगा आपको, इसलिए हम जिगजैग विधि का उपयोग करते हैं और सैंपलिंग बीज के खेतों का ही लेते हैं
1: जी। अभी आपने सर जिगजैग का जिक्र किया, अब हमारे मन में सवाल हो रहा है कि सर ये जिगजैग है क्या, क्योंकि हमारे किसान भाई बहन इस समय जो रेडियो सुन रहे हैं उनके बहुत सारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जिगजैग है क्या और ये इसको क्या कहते हैं।
2: जैसे मान लीजिए हमारे पास प्लॉट है तो प्लॉट अगर हम एक सीधी लाइन में सैंपलिंग करेंगे
1: जी,
2: तो वो सैंपलिंग हमारी सक्सेस नहीं मानी जाती। अगर हम सैंपलिंग का इधर एक लिए, एक दाहिनी तरफ ले लिए, फिर एक बाएं तरफ ले लिए, थोड़ा आगे आगे बढ़ के
1: जी,
2: मतलब इधर उधर तिरछा मिर्छा सैंपलिंग करेंगे, तो हमारे खेत के लिए सबसे अच्छी सैंपलिंग वही मानी जाती है, जिससे हमको सारे उर्वरक का ध्यान रखते हुए और क्या नाम है, जो हमारे खेत में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं उनका पता लगता है।
1: आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी के नमूने लेते समय समय खेत को कितने भागों में बांटना चाहिए?
2: मिट्टी की एकरूपता के अनुसार खेत को समान प्राकृतिक वाले टुकड़ों में बांटना चाहिए।
1: अगर हम उसको मतलब बांटते हैं, तो बांटते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: जैसे अगर हम खेत को अगर एक टुकड़े में बांटेंगे सामान्य रूप से, तो ये लगना चाहिए कि हाँ मिट्टी जो हम सैंपलिंग कर रहे हैं एक ही तरीके से हैं, कोई छायादार ना हो या कोई बहुत ज़्यादा पानी जहाँ डंप हो जाता है, जहाँ पानी इकट्ठे हो जाते हैं रखे रहें, तो उस तरह का सॉयल ना होना चाहिए, एक ही प्रकार के सैंपलिंग की रहे। अगर मान लीजिए सॉयल उसी का कर रहे हैं जहाँ गीली मिट्टी ज़्यादा है, तो हम उसी का ही रख लें, एक ही प्रकार का, मतलब यही हुआ
1: जी। आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी के नमूने लेते समय कितने स्थानों से मिट्टी ली जाती है? क्योंकि जब मिट्टी ले रहे हैं, तो अभी आपने कहा कि मेड़ के किनारे से मिट्टी लेना चाहिए, बीच में लेना चाहिए, तो आप जानना चाहेंगे कि कितने भागों का मिट्टी हमें लेना चाहिए कि जिससे खेत की जो मिट्टी की जांच है वो अच्छे से हो सके?
2: कम से कम 10 से 15 जगह पर पूरे खेत में सैंपलिंग करनी चाहिए, जिससे हमारा जो सॉयल है, सॉयल सैंपलिंग करके और उसको इकट्ठा मिला के और उसमें जो पार्टीशन करते हैं, तो इस हिसाब से मिट्टी लेनी चाहिए, मतलब कुल मिला के 10 से 15 जगह पर सैंपलिंग कर लेनी चाहिए।
1: आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी के नमूने को लेने की कौन कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है?
2: सर्वाधिक उपयुक्त अभी आपसे बताया है कि जिगजैग विधि, ये सबसे ज़्यादा सही है और हमारे फसल के लिए भी सबसे ज़्यादा सही है
1: जी,
2: जो हमारे खेत का सही रिजल्ट दे पाती है कि हमारे खेत में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद हैं।
1: सर आपने अभी न्यूट्रिएंट की बात की, तो न्यूट्रिएंट जो है ये हम खेतों में कैसे बनाए रखें और कैसे जो हमारे किसान भाई हैं किन किन बातों का ध्यान रखें कि जिससे खेतों में न्यूट्रिएंट बनी रहे और खेत जो है वो अच्छे उत्पादन दे सके?
2: इसके लिए तो सबसे अच्छा मतलब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि एक बार आप उथली जड़ की फसल लगाएं और एक बार गहरे जड़ की फसल लगाएं, तो उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का बैलेंस हमारे जो क्या नाम फसल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बना रहता है और हमारी फसल नीचे से भी क्या नाम उर्वरक ले सकती हैं, न्यूट्रिएंट नीचे से भी लेंगी और न्यूट्रिएंट ऊपर से भी लेंगी। जैसे हमारे गेहूं की जो फसल है वो उथली जड़ की फसल कही जाएंगी
1: जी,
2: क्योंकि उनका एक सीमित जड़ जो जहाँ से न्यूट्रिएंट लेंगी वो ऊपर से ही लेंगी। अब उसमें गहरी जड़ की फसल आ गई जैसे मक्का है
1: जी,
2: तो मक्का नीचे से जाके अपना न्यूट्रिएंट भी ले सकता है, तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट हम बैलेंस प्लांट के लिए कर सकते हैं।

0: हैं
1: जी। अब सर जानना चाहेंगे कि नमूना लेते समय जिग जैग विधि का क्या महत्व है, क्योंकि जिग जैग जो है अभी आपने बताया कि ये जो विधि है बहुत अच्छी विधि है, तो इसका जो महत्व है वो क्या क्या महत्व है इसके बारे में?
0: जिग जैग विधि का महत्व तो सबसे ज़्यादा सही यही विधि मानी जाती है। विधियाँ दो हैं इसमें कि जो एक सीधे लाइन में सैम्पलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, सैम्पलिंग करिए आप लेकिन उसमें उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा आपको। जिग जैग इसलिए कहा गया कि तिरछा मिर्छा, एक सीधी लाइन में ना चल के एक दाहिने लीजिए एक बाएं लीजिए पूरे प्लॉट में, तो उससे क्या होगा कि आपको सही उर्वरक का पता चलेगा और आपको आपके फसल को क्या चाहिए न्यूट्रिएंट वो सही मात्रा में उस प्लॉट के विषय में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी
1: जी। अब एक हो गया है छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं मिट्टी के नमूने लेने की विधि, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरी शंकर जी। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होते हैं कार्यक्रम लेकर खेत खलिहान।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260961 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: दोस्तों, एक बार आपका पुनः खेत खलियान कार्यक्रम में स्वागत है और हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं मिट्टी के नमूने लेने की विधि। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हरी शंकर, जो की एक PhD स्कॉलर छात्र है, शोध छात्र है। क्योंकि मिट्टी की बात हो रही है और मिट्टी जब अच्छी होती है

0: कहा जाता है कि जब मिट्टी अच्छी रहेगी तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और किसान के चेहरे पे मुस्कान भी होगी। तो इसी विषय पर जानकारी ज्यादा देने के लिए आज हमारे साथ हैं हरि शंकर सिंह जी, जो कि एक शोध छात्र हैं। आप सर, हम जानना चाहेंगे कि नमूना लेते समय मिट्टी को किस प्रकार साफ सुथरे बर्तन में रखा जाना चाहिए।
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हम मिट्टी कभी कहने में सैंपलिंग करते हैं खेतों से, तो उसमें हम एक प्लास्टिक का ट्रे रखते हैं
0: जी।
1: तो ट्रे से ये चीज होती है कि पहली चीज वो प्लास्टिक की होती है, उसमें मिट्टी का कोई मतलब कनेक्शन नहीं होता उससे। अगर वहीं हम कहीं लोहे का ले लिए तो हो सकता है कि हमारे मिट्टी में आयरन ज्यादा हो और वो लोहा या जो उसका वो होता है चूरा जो लोहे लगा होता है वो हमारे मिट्टी में मिलके हमारे आयरन की मात्रा को और बढ़ा दे, तो गलत रिपोर्टिंग उससे भी मिल सकती है मुझे, जो हमारे फसल के लिए थोड़ा सा भी सही नहीं है। तो इसीलिए हमको प्लास्टिक बैग का उपयोग करना चाहिए, ट्रे का उपयोग करना चाहिए।
0: अब सर, ये आपने तो ये बात है, अब हम सर जानना चाहेंगे कि मिश्रित नमूना तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है।
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी हमने आगे आपको बताया कि पूरे खेत में लमसम 10 से 15 जगह मिट्टी होनी चाहिए। ये आपको, ये मेरा टॉपिक है, आपको पूरी चीज़ कवर करके बताएगा। 10 से 15 जगह नमूने अगर आप ले लिए हैं और हर नमूने से लमसम आधे आधे किलो मिट्टी लें। अगर नमूना आप बड़ा खेत है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम आप ज़्यादा कम कर सकते हैं उस हिसाब से। नमूना आप ले लिए, नमूना लेने के बाद उसको चार भाग में डिवाइड करिए। आमने सामने के भाग को उठा के अलग कर दीजिए, फिर आमने सामने के भाग को इकट्ठा करिए, फिर उसमें चार करिए। और ये कब तक करना है? जब तक आपके सैंपल में 500 ग्राम मिट्टी ना बचे, मतलब आधा किलो मिट्टी आखिरी में बचना चाहिए। इस तरीके की आप सैंपलिंग करेंगे और उसको आप थैले में पैक करके फिर आप उसको क्या नाम है लैब में भेजेंगे।
0: तो आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी के नमूने को किस प्रकार सुखाया जाता है।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को हम हमेशा क्या नाम है धूप में नहीं सुखाते, इसको हम ले जाके छांव में सुखाएंगे और क्या नाम है इसमें धूप नहीं लगने देंगे। छांव में सुखाने से मिट्टी जो है अच्छे से सूख जाती है और हमारे लैब के लिए जो क्या नाम है जांच की विधि है उसमें सहयोग करती है।
0: अब सर मिट्टी की बात हो रही है, अब ये तो सुखाया जाता है, मतलब ले जाके मतलब बाहर इसको सुखाया जाता है। तो अब सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी को सुखाने के बाद किस चीज में भरकर भेजा जाता है।
1: मिट्टी को जैसे अभी हम बताए आपसे कि उसको 500 ग्राम मिट्टी हम इकट्ठा करेंगे और उसको इकट्ठा करने के बाद उसको हम थैले में रख के और क्या नाम है 500 ग्राम मिट्टी को और वो जो है हमारा जो कपड़े का ही लमसम यूज करते हैं थैला, वो केवीके पे वो मिल भी जाएगा आपको सैंपलिंग करने के लिए, वो लेके आएंगे आप उसी में रख के और हम सीधा केवीके पे फिर पहुंचा देंगे पुनः, ताकि वो हमारा प्रैक्टिकल कर पाए उस पे और हमको उसका रिजल्ट दे दें बाद में
0: जी। नमूना भेजते समय उस पर कौन कौन सी जानकारियाँ लिखी जाती हैं सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, जब जांच हो जाती है तो उनमें क्या क्या लिखा जाता है कि जिससे किसान भाई बहन जो हैं वो समझ सके कि हमारी मिट्टी अच्छी है। क्योंकि कोई भी जांच होता है, जैसे अभी हम अपनी ही जाँच कराएं तो मान लीजिए तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये बीमारी है, शुगर है या डायबिटीज हो गया है या बीपी के पेशेंट हैं या और बीमारियां हमको घेर ली हैं। तो ऐसे मिट्टी की जब जांच होती है तो उसमें क्या लिख के आता है कि आपकी मिट्टी में उर्वरक की कमी है या नाइट्रोजन की कमी है या फास्फोरस की कमी है, क्योंकि बहुत जानना बहुत जरूरी है ये चीज
1: जी। आप अभी पहला प्रश्न ये पूछे कि नमूना भेजने का कौन सा विधि होना चाहिए, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि किसान का नाम, खेत संख्या, ग्राम सभा, जिला कौन सा रहेगा और इसमें आप गहराई के साथ साथ अपने क्या नाम है आधार कार्ड की संख्या भी डाल दें ताकि सही से उसकी रिपोर्ट बन सके और आपको मिले
0: जी। मतलब ये रिपोर्ट आने के बाद में फिर हम अपना फसल की जो है वो बुआई अच्छे ढंग से करें।
1: मतलब आपका खेत कैसा है और आपके खेत में कौन सा न्यूट्रिएंट अच्छे मात्रा में है और आपका खेत किस फसल के लिए तैयार है, वो आप उसमें बुआई करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं
0: जी। अब सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी की नमूने की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए।
1: इसमें मिट्टी अभी आपको बताए कि जब एक 10 से 15 जगह अगर आप सैंपलिंग करते हैं किसी प्लॉट में, तो ये करते करते हमको लेके आना है केवल 500 ग्राम तक, हमको लैब के लिए केवल सैंपलिंग 500 ग्राम तक भेजना है। अगर हम पूरा सैंपल भेज देते हैं लैब में तो वहाँ का आदमी जो है जो उसकी विधि होती है, ये विधि अगर किसान करेगा तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उससे वो सीख भी पाएगा और लैब में उसका वर्कलोड नहीं बढ़ेगा।

0: इसमें अपना इसको कुटाई करके मिट्टी को जो सैंपलिंग करेंगे तो इसमें ढेले होते हैं, इसको कूट के पीस के एकदम इसको लेके आना है आधे किलो तक, और उस विधि से आप जो है लैब में पहुंचाइए, और लैब में पहुंचाने के बाद आपको इसकी सैंपलिंग करके इसको रिपोर्ट पूरी आपको मिल जाएगी।
1: जी तो ये सर बात हो गई। आप सर जानना चाहेंगे कि नमूना लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए हमें?
0: नमूना लेते समय हम देखना चाहिए कि ये क्या नाम है, किसी खाद की बोरी ना हो, सही उपकरण से नमूना लें। जैसे अभी मैं बताया हूँ आपको कि नमूना जो है क्या नाम है, लोहे के उससे बहुत ही जो मूर्छा लगा हुआ लोहा होता है उससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आयरन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो हमारे स्वस्थ मृदा होती है उसमें हमारा ऑर्गेनिक कार्बन जो है मीडियम रेंज में होता है, 0.5 से 0.75% में होता है, और जो NPK रेशियो जो होती हैं वो हमारा सबसे सुंदर आता है अगर 280 से 560, और फास्फोरस 10 से 25, ये सब KG प्रति हेक्टेयर में मैं बता रहा हूँ, अगर इतना आ रहा है आपके रिपोर्ट में तो ये मान के चलिए आपका मिट्टी जो है वो स्वस्थ है, और उसमें आप अच्छे से उपज ले सकते हैं जिस क्रॉप की जितनी डिमांड हो
1: जी
0: उस हिसाब से, और इसमें जो है पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए 108 से 280 के बीच में।
1: जी तो सर ये बात हो गई कि नमूना लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आप सर जानना चाहेंगे उर्वरक डाले हुए खेत से नमूना कब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी देखा गया है कि किसान भाई उर्वरक डाल देते हैं और उसके बाद में फिर मिट्टी जांच के लिए भेजते हैं अपना नमूना, तो क्या सर ये उचित है कि नहीं, मतलब लेना चाहिए कि नहीं?
0: ये उचित कतई नहीं है, क्योंकि आप उर्वरक अगर डाल देंगे तो आप तुरंत अगर नमूना लेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। ये अगर हम किसी फसल को अगर समझना है तो उससे पहले हम नमूना लेंगे, 15-20 दिन पहले उससे हम नमूना का नाम उसका ले लेंगे, मिट्टी की सैंपलिंग करेंगे और उसको हम KVK तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आप बीज से अगर हम क्या नाम फसल लगा दिए हैं और उर्वरक डाल दिए हैं फिर नमूना लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे खाद का जो हम दिए हैं फर्टिलाइज़र वो भी उसमें चला जाएगा और बाद में सैंपलिंग में दिखेगा।
1: जी जी जी आप जानना चाहेंगे कि सर मिट्टी परीक्षण से किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं
0: फसल के लिए? जो हमारा उर्वरक, इसमें जो हमारा सबसे अच्छा लाभ ये है कि पहली चीज़ तो हमको उर्वरक की, जो हम बहुत ज़्यादा उर्वरक दे देते हैं उसमें हमको अच्छा लाभ मिलेगा कि हम कम उर्वरक उसमें यूज़ करेंगे, और लागत में हमको बचत आएगी, जो हम ज़्यादा खाद देते हैं उसको ज़्यादा हम और क्या नाम है उपज में हमको उसमें वृद्धि मिल जाएगी।
1: जी तो ये हुई बात सर मिट्टी परीक्षण से किस प्रकार लाभ प्राप्त होते हैं। आप सर जानना चाहेंगे कि मिट्टी के नमूने को विश्लेषण के लिए कहाँ भेजा जाता है?
0: मिट्टी के नमूने के विश्लेषण के लिए हम अपने यहाँ अगर बात करेंगे तो तरबगंज में भी है हमारे यहाँ, और हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो क्या नाम है उसके सेंटर्स हैं KVK जो मनिकापुर में स्थित है, वहाँ भी हम अपना सैंपलिंग भेज सकते और उसका सैंपल का रिपोर्ट ले सकते हैं।
1: जी सर आप जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई कभी कभी देखा गया है कि तराई एरिया में है, मतलब वहाँ पे फसल लगी है, तो वहाँ पे जो मिट्टी की जांच है वो हमें कब कराना चाहिए? कभी कभी देखा गया है कि बाढ़ आ जाता है और बाढ़ की वजह से जो फसल है वो नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पे किसान भाई बहन मिट्टी की जांच साल भर में कराएं या कितने दिन के बाद जांच कराना चाहिए, क्योंकि फसल वहाँ पे उत्पादन जो है वो कम देखा गया है या कभी कभी होता ही नहीं है, तो हमारे किसान भाई वहाँ पे जो मिट्टी की जांच है वो कब कब कराएं? वो
0: जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि नदियों के किनारे क्या नाम है तरबूज खरबूज इन सब की बुआई चल रही है
1: जी,
0: वो मिट्टी कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जब कभी बाढ़ ग्रस्त एरिया जो क्षेत्र होते हैं, जो हमारे यहाँ इधर अगर घाघरा की बात करेंगे तो वहाँ वो मिट्टी कट के आके इकट्ठा होती हैं
1: जी,
0: तो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती हैं, इसलिए उसमें क्या नाम है कोई भी फसल आप लगाते हैं तो उग जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि मिट्टी, आप दूसरा क्वेश्चन ये था कि कितने दिनों में कराना चाहिए, ये आप 2 से 3 साल में अवश्य करा लें, इससे आपके खेत का खेत में रहे न्यूट्रिएंट का भी पता लगेगा और आपकी फसल भी इसमें अच्छी होगी।
1: जी
0: जी
1: तो अब सर चलते चलते हमारे किसान भाई बहनों को क्या आह्वान करना चाहते हैं जो फसल लगाए हैं या जो मिट्टी की जांच अभी तक नहीं कराए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: अपने यहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में कि मिट्टी की जांच ना कराना। मिट्टी की जांच कराना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काहे कि हमारा जो फसल है वो बिना न्यूट्रिएंट के आगे बढ़ेगा नहीं। मिट्टी की जांच बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसी भी फसल के लिए, और किसान भाई इसमें जाके अपना दो तीन साल के अंतराल में अपना रिपोर्ट लेते रहें ताकि उनके खेत का एक जो न्यूट्रिएंट का साइकिल है वो मेंटेन रहे और हमारी फसल अच्छी हो और अच्छा लागत उससे उनको प्राप्त हो सके।
2: तो हरिशंकर जी, इरफान जी ने तो आपसे बहुत सारे सवाल कर लिए, अब लास्ट में बस आपसे एक ही सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। वो ये है कि नमूना लेने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करने में सामान्यतः कितना समय लगता है?
0: सैंपलिंग करने के बाद जब हम मान लीजिए केवीके पे ही हम जा रहे हैं, किसान लोग जो जा रहे हैं, तो इसका रिपोर्टिंग करने में लमसम 10 से 15 दिन आपको लग जाते हैं कि आपको उसका रिपोर्ट प्राप्त करने में।
2: ओके, 10 से 15 दिन रिपोर्ट प्राप्त करने
0: में। जी, जी।
2: तो उम्मीद है श्रोताओं कि आज का जो हमारा विषय था और जो हमारे विशेषज्ञ थे और उन्होंने बहुत ही बखूबी से चुकी हर एक सवाल का जवाब दिया है, तो आप सभी तक सारे जवाब पहुंच गए होंगे और आपने उसे नोट भी कर लिया होगा और काफी सारे आपके समस्याएं भी इससे सुलझ गई होंगी। तो फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाले एपिसोड में, आपके अपने वाले फेवरेट वाले शो में, जिसका नाम है गौधुली स्पेशल खेत खलिहान। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। टाटा टेक केयर। बहुत बहुत नमस्कार।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9268 9976 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
5: गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: गोरिया चांद के अजूरिया, हाँ भाई, जब गोरिया चांद के अजूरिया हुई तो कुछ और काहे दिखाई। ईशा माँ बदलन के पीछे जब चांद हुई तब उजियारा काहे हुई। तो सभन के भाई स्वागत है आप सभन के भोजपुरिया शाम माँ और रवलोगन के साथ है। आज बिना है लाइव और आज भाई देखत देखत दिन वो आ चुका है जहाँ हमने सबके मतलब त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाते हैं। और अभी कल बीता है हल छठ और अब कल है जन्माष्टमी और एक साथ लगातार त्यौहार पे त्यौहार, त्यौहार पे त्यौहार। और त्यौहार सिर्फ त्यौहार नहीं होते, वो होते हैं खुशियन के बहार। तो अब सी चला खुशियन के बहार एक दूसरे के साथ साझा करी, ना सिर्फ अपना त्यौहार मनाई बल्कि दूसरन के भी त्यौहार साकार करी। तो भाई के कहाँ कहाँ से सुने थे, फटाफट से उठ जाएं। सनी पांडे शुभ संध्या, अरविंद शुभ संध्या, रुवा कैसन बानी और आज भोजपुरिया शाम माँ गोंडा मैसे मसाला के सबके स्वागत है। और आज हमारे दिमाग में कुछ अतरंगी विचार आवा तो हम सोचन की ओका आप सबके साथ साझा करी। और साझा करे के संगे मन कहीस की एगो कविता जो ने कहा मतलब बहुत खास कविता माना जाता है और वो कविता सुने के बाद माँ कोई भी इंसान कोई से भी खुश हो जाए। मतलब क्योंकि अगर आपका तारीफ करे है और स्पेशल बात माँ तो कोनो लड़का का अगर कोनो बिटिया के तारीफ करे है तो वो ई अगर कविता सुनाए दे तो ओकर बात जोन है ना वो जम जाए। फिलहाल तो ये कविता हिंदी और उर्दू अल्फाज माँ है लेकिन ओका हम तनी भर अपने अवधि मिजाज माँ सुनाए के आप सबसे ई कहा चाहिए है कि जहाँ अंग्रेजी और हिंदी भाषा के कमाल नहीं चलत हुआ अवधि आपन जोन है ना वो पूरा मतलब कहा था ना कि धमाल मचाए दिया थे। तो ध्यान से सुनी अगर कोनो लड़का के कोनो लड़की के अपन दिल के बात कहे के और दिल के बात कहे के पहले सामने वाले का ओकर तारीफ करके खुश कीन जात है तो आप सभी ई कविता जरूर सुनिए। वैसे तो हिंदी में बड़ी खूबसूरत लागत है लेकिन कबू कबू का होता है मामला ऐसा होता है ना कि सामने वाला हिंदी से उतना कनेक्ट नहीं होता जितना अपने मातृभाषा से होता है। और सरकार भी कहा थे कि पढ़ाई लिखाई और कोनो भी ऐसा बड़ी चीज़ जो उनके सबका समझावे का हो अगर उनकी मातृभाषा में समझाई जाए तब बड़ा आसानी से मामला जोन है ना उस सरलतम तरीके से अपने जो कहा थे ना कि अंतिम परिणाम पर पहुँच जाते हैं। तो ध्यान से सुनी कि वैसे तो दिमाग में हमारे बहुत खुराफात चल रहा है कविता का सोच के लेकिन अब ज़्यादा खुराफात ना करत हुए हमारे दिमाग में जो बात है वो हम सुनाए दी थे। लेकिन उकरे पहले आप सबसे पूछे थे कि भाई अगर आपके मन का कहे कि केहू का अपने दिल के बात कहे के तो रउआ लोग का सोचिए, आप सब भी सोचिए ना कि काहे ना अपन दिल के बात अपने मदर भाषा में या कहा जाता है कि अपने जो भाषा बोल चाल वाली है वो मन बतावा जाए। तो सबन के पहले तो स्वागत, जे जहाँ जहाँ से सुनत हैं सब जने उठ जाओ जाग जाओ। और आप सबका बताए दी कि आज जो नई शाम है ना सिर्फ आज के शाम है बल्कि आप सबके लिए आज के शाम खास है कहे कि आज भोजपुरी और अवधी भाषा के जो बातचीत हुई और साथ ही साथ बहुत दिन बाद आज हम आप सबके साथ भोजपुरिया शामा लाइव हन, मतलब 2-3 बार से हम नाई रहन और वही कारण हम चाहे थे कि आप सब ई जो शाम है एक फ़ायदा उठाएं और अपने पसंद के गाना भोजपुरी गाना अवधी गाना 7:05 पे सुन सकते हैं। मतलब 7 बजे से आप फरमाइश करी हैं तो आरजे बिना आपके फरमाइश के जो न कहा था ना कि गाना है ओका बजाए के आपके दिल तक पहुंचाए दें। तो चला अब वो कविता के बारी है जोने का सुनाए के आप केहू के दिल मा सेंध लगाए सकत हो। हा। पहले कविता सुनी तब बताइए कि एक कविता केकर है। बहुते सुंदर हऊ तू, बहुते सुंदर हऊ तू, कबू हम कही देई कि मोहब्बत है तुमसे ता हमका करेजा है गलत ना समझिया, का करब हमरे जरूरत हो तू, बहुते सुंदर हो तू। फूलन के डार जैसन बाह तोहार, फूलन के डार जैसन बाह तोहार, चुपचाप जादू करेलू जैसन अखिया तोहार, जे काटा मिले सब अपने अचरा मा धै देव, जे काटा मिले सब अपने अचरा मा धै लेव, तोहरे रस्ता मा फूलन के सेज बिछाइब, दुनिया के नजर से अपने का बचई के रखिहा, दुनिया के नजर से तू अपना के बचई के रखिहा, काहू और से दिल तू कहूँ ना लगईहा, काहे कि हमरी अमानत हो तू, बहुते खूबसूरत हो तू, बहुते सुंदर हो तू, तोहार चेहरा जैसन सुनहरा सवेरा हो, देखत ही लागे उजियार भरा हो, कजरारी घटा जैसन लटवा तोहार, मनमा जाने कौन सावन के बयार, गुलाब से नाजुक खुशबू के तनहा, तोहार होठ जैसन खिलत फूलन के चमनहा, जुल्फन का जब तू बादर जैसन बिखरिहा, तब बदरा भी जई के ठहर जई है, इतना पावन सूरत हो तू, बहुते खूबसूरत बहुत सुंदर हो तू, जे कली बन के अक्सर मुस्कुरावत रही हा, जे बिरहा के रात मा चुपके से रोआवत रही हा, जे पलमा दुनिया बदल देत है, जे मनमा नई गजल जगा देत है, जे बात छिपावे चाहो छिपावे न पावे, याद भुलावे के चाहो भुलावे न चाहे, उहे तो पहला मोहब्बत हो तू, उहे दिल के सबसे मीठी चाहत हो तू, बहुते सुंदर हो तू, बहुते सुंदर हो तू। ता आज के शुरुआत ई कविता से भय, वैसे ई कविता जोन है हम कन्वर्ट केहन है, एगो कविता जोन की सुन के सबके दिल में बाहर आ जाती रही, ताहिर फराज के कविता रही कि बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। बस यह कविता के सोच के हम अवधि में कविता बनाए दें कि जेकरे करेजा के बाद दूसरे के लगे ना ही पहुँचत है, ओकरे धनी के लगे ना ही पहुँचत है, तो ये कविता सुनाए के आपन दिल के बाद दूसरे का सुनाए सकत है। फिलहाल तो आज बात करत करत हमका याद आएगा कि आज ता भाई शाम बड़ी खूबसूरत है, बयार बड़ा नीक चलता है, और मना कहा था कि बस ऐसे बैठ के एक दूसरे का सुना जाए, एक दूसरे से बात कहानी किया जाए, और ये खूबसूरत जो शाम के बेला है एका ऐसे जाए ना दिया जाए का कहा था। और देखते देखते भाई आप सबके हमार फेवरेट टीचर लोगन के दिन आ चुका है, बहुते जल्दी मनावा जाए। कौन दिन है? हाँ बिल्कुल समझ गई ना आप सब है कि आए वाले दो दिन में आप सबके शिक्षक दिवस है, जोने के पहले से अग्रिम बधाई सभी हमारे लिए, एगो शिक्षक के निहायत हो, कुछ ना कुछ सिखावत हो समझावत हो, सबके अंदाज अपने आप में खास है, तो ही से हर अंदाज में कुछ ना कुछ सीखे का मिलत है। तो चलिए आगे बात हो जाए और एगो गीत सुन लें जाए अपने भाषा के, और सुन के बताएं ये कैसन है गाना, और ये गाना खास बदरा के लिए जो न बरस बरस के आजकल तनी धूम मचाए है, तो हमार और आपके पसंदीदा गाना

तब वापस से आरजे बीना के संगे कुछ और नया जाने के समय आ चुका है। जी हाँ, आज आप सबका बताए वाले हैं हम अपने गोंडा शहर के एगो ऐसन ऐतिहासिक जगह के बारे में, जिक्रे बारे में शायद तो बहुत सारे लोगन का तो पता हुई, लेकिन जो दूर दराज बैठा हमें सबका सुनत है शायद उन्हें सबका ना पता ही। गोंडा शहर में जिसे गोंडा शहर के पहचान है दुखरनाथ मंदिर और बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक जगह हैं, वैसे ने आज हम आपका बतावे वाली हैं इन्हीं के एगो खास कहत हैं कि 5000 साल पुराना मंदिर के बारे में, जेकर ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता बड़ी खास है। तो चलिए आप सबका बताई तनी ध्यान से सुनी और सुने के बाद मैं बताई हैं कि आपका ये मंदिर के बारे में जाने के बाद कैसा लगा। तो गोंडा शहर में बिल्कुल गुरु नानक चौराहा के लगे एगो मंदिर है जिसका नाम है श्री काली भवानी मंदिर। कहा थे कि मंदिर जो है 5000 साल पुरान है। मान्यता तो यो है कि लोग कहा थे त्रेता युग में राजा दिलीप एकर निर्माण कराई नहा। काला पत्थर से प्रतिमा बने के कारण ही मंदिर के नाम पड़ गवा काली भवानी मंदिर। नवरात्रि के समय मा ही अब भारी भीड़ उमरत है। कुछ मंदिरन के कहानी बहुत पुरान होते है, वैसे ही ये मंदिर भी है जेकर कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये मंदिर त्रेता युग मा बना। कहते हैं कि महाराजा दिलीप के पिता भागीरथ जे की गंगा माई का जमीन पे लाए रहे, उन्हीं के वजह से ये मंदिर बना। महाराजा जोन दिलीप रहे वे गाय के बहुत सेवा करते रहे। वह ये जगह पर गौ सेवा करे आए रहे। गौ सेवा करत करत एक दिन उन्हें बड़ी थकान भय। तब मंदिर के पीछे एक नीम के पेड़ रहा, उही के नीचे आराम करत करत उन्हें नींद आई गई। सपना माँ माता उन्हें आए के कहीं कि यहाँ उनकर स्थापना की जाए और फिर महाराजा दिलीप जोन रहे वह काली भवानी मंदिर के यहाँ स्थापना की। तब से ई हमारे शहर के पहचान बन गए। आप सब बताइए कि आप सबका ई मंदिर के बारे में जान के कैसन लाग। सब कहते हैं कि ई मंदिर जोन है एबा जोन गर्भगृह है हुआ माता जी के काले रंग के प्रतिमा है जो उनकी काले पत्थर से बनी है। लोग कहते हैं कि ई मंदिर में नवरात्रि के समय मन्नत मानी जाती और कोरा भरा जात है और यहाँ के ई प्राचीन परंपरा है। ई मंदिर में हर साल हजारों लोग दर्शन करे आवत हैं और सब कहते हैं कि यहाँ कोई भी मान्यता मानी जाए तो पूरी जरूर होती। और कोरा भरे के जो परंपरा है एक बारे में भी बताई दी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जो हमारे सबके भाषा के है और लोगन का समझे में, इवन हम तो कहा कि हमारे जो शहर के लोग हैं जो अवधि भाषा बोल के बड़ा भय उन्हों का बहुत सारे शब्द का मतलब नहीं पता। कोरा भरे के मतलब ही होते कि जब मान्यता मानत ही औरतन जिनके संतान नहीं हो उनके जब संतान मिल जाते है तो यहाँ आए के माता जी से वह कोरा भरवावत थी अपन और माता जी के 16 श्रृंगार करत थी, फूल फल अर्पित करत थी और ना सिर्फ मतलब पुत्र या संतान के प्राप्ति के लिए बल्कि विवाह नौकरी और जैसन भी मनोकामना हो वो सब यहाँ पूरी होते हैं ऐसा सबके मान्यता है। तो ये तो बड़ी खास बात हुई गया। और आपको बताई कि अभी एकरे पहले एक गाना आप सुने होरिलवा। होरिलवा नवजात शिशु का कहा जाता है। बहुत सब लोग सोचे हुए हैं कि होरिलवा का मतलब क्या है। होरिलवा नवजात शिशु का कहा जाता है। अब यहाँ के स्थानीय लोगों के अंदर बड़ी ई मंदिर का लेके मान्यता है। और एक बात हम आज कहा चाहिए थे कि देखा अब नवरात्र के बाद कई दिन गए हैं तो आप सब ये ना सोचिए कि भगवान सिर्फ नवरात्र में है और यो ना सोचिए जो लोग इतनी दूर दूर से या बहुत दूर से सुनत है कि भगवान के दर पे जाई तो ही भगवान हमार मनोकामना पूर्ण करिए। आप कहीं से भी भगवान का सच्चे मन से, हम तो कोनो भगवान के नाम भी ना बताई, ईश्वर जहाँ भी है अगर सच्चे मन से आप उसे कुछ भी मांगो, अगर आपके नियत सही है, आप कहो के अहित नहीं कहो तो आपके जो जरूरत है जो भी आपका चाहिए वो जरूर मिली।
एक संगे अब देखा जाए इधर उत्तराखंड मा और इधर का कहा जाता है नैनीताल के तरफ भूस्खलन बहुत तेजी से होता है। तो अभी इधर बीच अगर आप सब दर्शन करे या जाए के प्लानिंग व्लानिंग करत हो तो बिल्कुल भी ना करो, मौसम ठीक ना चलता है पहाड़ी क्षेत्र में तो इस तरफ नहीं जाए है। तो बिल्कुल अपन प्लान का कह दिए निरस्त और सिर्फ घरे बैठ के व्यस्त रहें और ईश्वर से कामना करें जे जहां रहे तहां स्वस्थ रहे और ईश्वर अपन अनुकंपा उन सबके ऊपर बनाए रखें। चित्रकूट भी जाए के सोचे थे तो अभी कुछ दिन ना जाए, वैसे तो ये तो न्यूज में ही आपका पता चल गया हुई, लेकिन भूस्खलन के मामला हर पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की वजह से सुने में आवत है। तो बिल्कुल भगवान वहीं ना मिले, भगवान आप जहां हो वहीं मिले और पर्व विशेष पे तो बिल्कुल भी आप एकदम भीड़ में ना घुसें, भगवान का शांति से भी आप मिल सकते हैं। जब कोई दिन ना हो खास भगवान आपका आराम से दर्शन दें, आप देखो हर क्यों के मंदिर या कहूँ भी जाए के पीछे पर्पज ये होता है कि वो भगवान से थोड़ा रूबरू होए, दर्शन करे या जो भी है। तो अगर वो चीज़ ना संभव हो तो मतलब जाए के का मतलब है, तो ज़रूरी ना है कि आप कहूँ भी जाए के एकदम बैठ जाएं और फिर कहें कि ना हमें तो दर्शन करे खे। तो बस चला अब एक और गाना सुनाई दिया और सुने के बाद माँ कुछ ही देर में आप सबके जो नाउधी भोजपुरी फरमाइश है शुरू, माँ कुछ ही देर में आप सबके जो नाउधी भोजपुरी फरमाइश है शुरू हो जाए। फिलहाल आज के डेट के जो बड़ा वायरल गाना रहा हम सोचें हमू अपने कार्यक्रम में बजाए दी, कहे कि हमारे सबके यूपी के भाषा के खास भाषा आप सबका पता है कि कौन भाषा में गाना है, सुन के बताई हैं और बताई हैं कैसन है ये गीत और हमें तो ये बड़ा प्यारा लग। अब आप सबके बारी है, सुन के बतावें कि गाना मा आपका कैसन भावना है।

आपको एक पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर भक्ति करनी है ना, तो जाइए आप भ्रमण, हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: भाई सबन के वापस से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गोंडा मैसे मसाला माँ। और भाई गौरव है हमरे सबके संगे, और नहीं सिर्फ गौरव आप नहीं हैं, बहुत सारा लोग हैं। सबलू जी हैं, यदि प्रेम के मतलब सिर्फ पा लेख है तो राधा कृष्ण के नाम आज ना लिया जाती तो बात सही है। और देखा कल जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी से जुड़ी बहुत सारी कथा कहानी हम सब सुने हैं, लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि जन्माष्टमी जो है वही बतावत है कि कितनी भी अंधियारी रात होए और आपका लागे कि उम्मीद सब छूटत है, लेकिन ये समझिए कि वो उम्मीद के किरण बन के ईश्वर उस अंधेरे कमरे में या जहाँ एकदम उम्मीद ख़त्म होती हुआ जन्म लेते हैं। वैसे ने भादु के काली रात माँ, अष्टमी के काली रात माँ भगवान के जन्म भवा और वे सबके कष्ट हरे के लिए दुनिया में आए। तो ईश्वर का भी मतलब इंसान बने के पड़ा सबके मदद करे के लिए, तो हम सब तो इंसान बन के ऑलरेडी पैदा भेने, तो हमें सबका एक दूसरे के मदद करे चाहिए, क्यों के कष्ट के कारण नहीं बने के चाहिए। तो अब धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है भोजपुरिया फरमाइश के। तो सबसे पहली जो फरमाइश आई है आज के डेट में वो है अरविंद जी के, अरविंद फ्रॉम मनकापुर। अरविंद जी हमें सबका मनकापुर से सुनत है, तो इनका पहला जो फरमाइश है वो कौन गाना है भाई, नई झुलनी के छैया आहा दोपहरिया बिताएला, बड़ा अच्छा गाना है निरहुआ हिंदुस्तानी से। तो चलिए सुना जाए और लगातार आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपन फरमाइश करके शाम के जो नी संगीत में बेला है का और सुरीला बनाए सकते हैं। तो पहली फरमाइश अरविंद के तरफ से नई झुलनी के।
1: बस एक बात हमार मान लेती, इचुरकुट पहनल छोड़ के मस्त लुग्गा पहन के घूंघट निकाल के हमरे सामने आ जाए तू, साला हमार करेजा जुड़ा जाए।
2: ए जी

तो चलिए ये गाना सुने के बाद माँ सबका भाई हर मौसम के बारे में पता चल गवा। अब अगला गाना सुने के बारी है और ये गाना के फरमाइश है नागेश्वर के। बनारस घूमे के बाद होए वाली है वादा करा बनारस घुमाइबा।

अगला गाना के फरमाइश है धर्मेंद्र के, और गाना है दिखते जुड़ाए जेके हिया।

चलिए अगला गाना के रुख खींच जाए, और अगला गाना है सबू साहब के फरमाइश के। चलिए देखिए कौन गाना है रवा के फरमाइश के। राधा दिलवा ले जा रुमाल का बात है, कल जन्माष्टमी है तो आज ये गाना सुने के तो बनत है, चला सुना जाए। और ईशाम का जो रंग है वह रंग जमावट है।

अब चलिए अगला जो गाना है वो सुने के बारी है। वो है हमारे एगो बहुत फेवरेट लिसनर पूजा के। पूजा सुना चाहती गाना सरकारी दुल्हा। चलिए इंजॉय करें।

तई गाना सुने के बाद अब अगला गाना के बारी है, राजा जी के दिलवा। आहा, क्या बात है। और ये गाना के फरमाइश है नाजिया अंसारी के। चलिए सुनिए।

गाना है सूरज के फरमाइश के, और हमरे सोनिया लिखत थी कि दिल के दर्द केहू समझे नहीं, हसत चेहरा के पीछे के रोवल देखे नहीं, हम त सबकर खुशी चाहेली पर हमार खुशी केहू के याद आवत नहीं, अखिया से गिरल लोर केहू पोछत नहीं के, सच्चा प्यार के मोल यहाँ केहू बूझत नहीं के, हम था बस तोहरे याद मा जी ले चाहे जमाना हमसे मुंह फेर लेवे। तो ये गाना सुने के बाद अगला गाना के बारी है, चला सुना जाए अगला गाना के फरमाइश है इम्तियाज जी के, चलिए सुनी बताएं कैसन है। एशियन पेंट

आहा। ओहो, बारिश में ये गाना सुने का तो सबके बहुत जरूरत है। फिलहाल सबका पता है कि कौन पेंट सीलन आवे से रोकत है, लेकिन भाई ये गाना सुन के मजा आएगा वाह, और एकदम अलग मूड बन गवा। एशियन पेंट कितना बढ़िया प्रचार, का बात है मजा आएगा वाह। तो चलिए अगला गाना सुना जाए अनुष्का के फरमाइश के, सोना के पलना।

अब अगला गाना सुने के बारी है, कोनो देवता के गढ़ सवार बड़ा अच्छा गाना है और ये गाना है फरमाइश धर्मेश के।

0: बाबूजी, हेलो। हाँ बाबूजी,
1: लाइन में लागल
0: बनी बाबूजी, लाइन में लागल बनी।
1: चल जल्दी करे हो।

अब इतना प्यारा गीत सुने के बाद मन तो एकदम डोल गवा और देखा फरमाइश सुनत सुनत हमें लगा था कि दिल कहा था कि बस सुना करिए और रंग बिरंगी फरमाइश जब सुन ली थी ना तो दिल और कहा था कि अरे वाह क्या बात है आज के शाम तो बस ये गाना सुन के ही बीत जा तो ठीक रहा। तो चलिए अब आखिरी भोजपुरी फरमाइश के वक्त आ चुका है और आप लोगों से विदा लिए कि भी समय आ चुका है तो जन आखिरी फरमाइश है वो बड़े ख़ास है और हमारे लिसनर संगीता जी के फरमाइश के गाना है। गाना के बोल हैं लाल लाल होठवा से बरसे ललैया। तो बड़ा पुराना गाना है का सुनने के बाद मैं आप सबका लगी कि इतना पुराना गाना जुने के इतना खूबसूरत बोल है कि कहाँ था। तो सुनी और मुस्कुरावत रही बजावत रही अपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान स्थली 89.6 FM ईहा गोंडा शहर पथरगंज स्टेडियम।

फिर जैसे तुम हो मैं भी वैसा हूँ। सांचे में ढालने की कर लो कोशिशें, सांचे में ढालने की कर लो कोशिशें, दिखता सोना हूँ पर पत्थर जैसा हूँ। मुझे समझने की कोशिश करने वाले लोगों, मुझे समझने की कोशिश करने वाले लोगों, मुझे ही नहीं पता कि आखिर मैं कैसा हूँ, कि आखिर मैं कैसा हूँ। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो परमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप डेफिनेटली सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल, वो तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, मुझसे नहीं बताएंगे तब किससे बताएंगे, आखिर मैं हूं ना। उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, सब्दुल सामंत मुंबई से, महेंद्र राजस्थान से, सोनिया तिवारी गोंडा से, राजेश कुमार सिंह मालवे नगर गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, उषा कश्यप जी गोंडा से आपका भी स्वागत है, निधि सीतापुर से, राजू सीतापुर से, मोहित मालवे नगर गोंडा से आपका भी स्वागत है। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, गौरव इंडिया वाले स्टे ट्यून्ड वेलकम इन योर शो, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, कार्तिक कश्यप गोंडा से, शशि सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत है, निबर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सबीहा गोंडा से आप सभी का स्वागत है, रौनक तिवारी और रितेश साहू स्टे ट्यून्ड, और एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की पहली फरमाइश। सो पहली फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, और दिल से स्वागत है आपका के गुप्ता जी, और के गुप्ता जी को सुनना है गाना, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, और ऑब्वियसली इन्हें देखकर पी रहे हैं सभी। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए, और अपने अर्जित सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी और इन्हें देखकर पी रहे हैं सभी। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। किसकी फरमाइश पर? जानते हैं ना किकी गुप्ता जी की फरमाइश पर, जो कि हैं तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से आपका स्वागत है। अरविंद मनकापुर से स्टेट यून एंड वेलकम इन योर शो। गौरव इंडिया वाले स्टेट यून एंड राजेश कुमार सिंचाई विभाग से आपका भी स्वागत है। इसी के साथ में नागेश्वर धाकर स्टेट यून एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की। धर्मेश त्रिपाठी को सुनना है गाना रातों को उठ उठ कर। सो एंजॉय करते हैं इश्क ना देखे जात का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: अच्छी सी इन तगड़ी तगड़ी बीट्स के साथ में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा सदाबहार नगमा सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर जो कि है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज के फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगी कि गोंडा का मौसम वाकई में बाहर बहुत अच्छा है। अभी मैं मतलब मैं तुरंत निकली थी पानी लेने के लिए बाहर, और जब मैं बाहर गई ओ माय गॉड, एनजीएम का नज़ारा देखने लायक है, ये शाम का माहौल देखने लायक है, और ये ठंडी ठंडी हवाएं, एक तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा ठंडी भी लगती है तो उस मैटर में, तो सच में इतनी ठंडी ठंडी हवाएं उसके साथ में इतना ठंडा ठंडा पानी, दिल खुश हो गया सच में बाय गॉड। अगर आप लोग भी कहीं बिजी हो, घर के अंदर हो और आपको नहीं पता कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा, सो आप जाओ बालकनी में, जाओ छत पे, जाओ बाहर, देखो नज़ारा बहुत बढ़िया लग रहा है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना नागिन सा रूप है तेरा। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बगावत पिक्चर का जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून एवरीवन।
1: कैसे लगा रही है
2: कौन है यहाँ?

0: डर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

बगावत पिक्चर का ये गाना मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है जग्गू दादा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले सोनिया तिवारी का कहना है कि धूल बनकर उड़ रहे हैं उस गली के आसपास, बेखबर मौसम को शायद आज भी तेरी तलाश, तैरती फिरती हैं बातें जहन में खामोश सी, दर्द बनता है इबादत जब न समझे कोई काश। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सी लाइंस थी सोनिया तिवारी जी। अब एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश है सबलू सावंत जी की मुंबई से। उनको सुनना है संजोग पिक्चर का गाना, और ये गाना मेरा भी फेवरेट है, मेरी मम्मी का भी फेवरेट है। बचपन में ही ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, सिर्फ इस वजह से जो इसमें ये है ना जू जू जू जू जू, ओ माई गॉड, ये जू जू जू जू जू बहुत अच्छा लगता है मुझे इस गाने में। और लता मंगेशकर जी की आवाज ने तो चार चांद क्या हजारों लाखों चांद लगा दिए इस गाने में। सो एंजॉय करते हैं संजोग पिक्चर का ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा, सिर्फ और सिर्फ हमारे सबलू सावंत जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरी।

अब याद आया मुझे कि आखिर लता मंगेशकर जी की इतने सुरीले नगमे की याद क्यों आ गई, यशोदा मैया की याद क्यों आ गई, क्योंकि है भैया कल जन्माष्टमी, मैं तो एकदम से भूल ही गई थी। तो प्री आई मीन एडवांस में जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी मेरे मित्रों को, मेरे दोस्तों को, मेरे सभी रेडियो वाले ज्ञानस्थली 89.6 एफएम के मेंबर्स को प्री में एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। सो ये फरमाइश थी सब्र सावंत की। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है गाना नींद किसे चैन कहाँ। ओ माय गॉड, वैसे भी ऐसे मौसम में सच में नींद किसे ही और चैन कहाँ ही। नींद और चैन नहीं है राजस्थान में, आपका नींद चैन नहीं है क्या, आपके शहर से दूर है क्या, चैट बॉक्स में लेके जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं आपकी।

ये जमाना दीवाना का हमने एंजॉय किया है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा महेंद्र की फरमाइश पे जो कि है राजस्थान से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले महेंद्र का कुछ कहना भी है दोस्तों। इनका कहना है कि दिल की बात समझकर जो चेहरे पर मुस्कान ले आए, आपकी एक सुरीली आवाज ही पूरे दिन को खास बनाए। यूं ही अपनी प्यारी बातों से हर श्रोता का दिल जीतते रहिए, आपकी वजह से ही रेडियो सुनने का असली मजा आए। धन्यवाद मैम जी फरमाइश पूरी करने के लिए, सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट मीन्स रियली अ लॉट महेंद्र फ्रॉम राजस्थान। और अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की, और उनको सुनना है गाना दगा बाजरे, तोरे नैना बड़े दगा बाजरे। सो इंजॉय करते हैं ये गाना, और इस गाने में शायद लाइन आती है काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल, काहे ना तू माने बतिया है, कुछ ऐसी लाइन है शायद इस गाने में। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो एंजॉय करते हैं सोनिया तिवारी की फरमाइश पर दबंग 2 का ये सुपर डुपर डुपर हिट गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

इसके पहले सबलू सावंत जी मुंबई से आपको ढेर सारी बधाइयां और मिठाई, वो मोतीचूर के लड्डू और सेठोरा, सब कुछ जो भी होता है वो मेरे पास जैसे भी आप भेज पाओ भेज देना। ओके, बहुत बहुत बधाई हो आपको और मुझे भी। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैं भी तो बुआ बनी हूँ ना।

हमने एंजॉय किया दबंग 2 का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी बहुत ही खूबसूरत सी सोनिया तिवारी की फरमाइश पर, और इसी के साथ में इनका कहना है कि बारिश और इस दिलकश मौसम का खुमार, बारिश और इस दिलकश मौसम का खुमार याद दिलाता है राधा कृष्ण का निश्चल प्यार, उनकी भक्ति में खोकर जो सुकून मिलता है वैसी मीठी नींद फिर कहाँ मिलता है, प्रेम की छाँव में सारे दर्द सो जाते हैं जब हम पूरी तरह श्याम राधा के हो जाते हैं। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन, और आपको भी सोनिया तिवारी जी, इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और उनको सुनना है गाना तुम अकेले तो बाग में जाया ना करो, तो कच्चा हाथ पगा लेके जावा करें कहां चचा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

माय गॉड, कितना खूबसूरत गाना था ना ये। लता जी की और मोहम्मद रफी जी की आवाज में हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही प्यारा सा हाउ रोमांटिक गाना था ये मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की तरफ से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले धर्मेंद्र मोहन का आवाज विकास गोंडा से कहना, सिंपल जी बहुत बेहतरीन आवाज, अरे वाह तालियां बजाओ ना। सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश भी धर्मेंद्र मोहन जी की ही है, आवाज विकास गोंडा से। उनको सुनना है उदित नारायण की आवाज में दही हांडी वाला सॉन्ग गोविंदा आया धूम मचाने। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर जो की है आवाज विकास गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।

दही हांडी वाली हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की तरफ से, जो की आवास विकास गोंडा से, बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। सो क्या आप सभी तैयार हैं अगले फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? हाँ तो बोल ही दीजिएगा ना, जल्दी से, बस जल्दी से, बहुत जल्दी से एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले सबलू सावंत का मुंबई से कहना है कि शिकवा करूं भी तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा। एक आंसू भी गिरता है तो लोग हजार सवाल पूछते हैं, एक आंसू भी गिरता है तो लोग हजार सवाल पूछते हैं। ऐ बचपन लौटा मुझे खुलकर रोना है, हमारा दर्द किसने देखा है, हमें तो बस खुदा ही तड़पते देखता है। ओ माय गॉड, इतना दर्द कहाँ से लाते हैं आप? कहीं अगर किलो के भाव बिक रहा हो तो मुझे भी चाहिए, लेकिन आप इतना दर्द मत लेके आओ। आज तो सेलिब्रेशन का डे है ना, तो सेलिब्रेट करिए और इंजॉय करिए ये वाला गाना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, भीगी पलके का ये गाना इंजॉय करेंगे हम मोहित की फरमाइश पर, जो की है मालवीय नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

तुम्हारा हमारा, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना मोहित की फरमाइश पर जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना तू है 16-17 साल की। सो एंजॉय करते हैं ये गाना झनकार बीट्स के साथ में अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ हमारे अजय मिश्रा की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। धर्मेंद्र मोहन जी, सात हाथ पगहा नहीं एक हाथ पगहा साथ ही लेके चल बो का, ऐसा है कहावत।

0: एंजॉय किया बहुत अतरंगी सा गाना सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा की फरमाइश पर, जो कि है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से। बढ़ते हमारी आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। सो एंजॉय करते हैं नगमा इसी फरमाइशी गीत के। उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आप के अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाक से पेट पूजा भी कर लेना, क्योंकि पेट भरा रहता है तो दिल अपने आप खुश रहता है, ये मेरी मम्मी का कहना है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। Stay tuned everyone.
1: पंद्रह सौ प्रीलोडेड गानों

0: का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने परस्पर संबंधों के संपूर्ण आयाम तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
1: भारत और बेल्जियम दोनों ही रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं और आतंकवाद के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया।
1: इस वर्ष की शुरुआत में हमने ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच यह अभूतपूर्व सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को भी नई मजबूती देगा। भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति और इस एग्रीमेंट ने हमारे आर्थिक संबंधों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते

0: पर भी हस्ताक्षर किए गए। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने यह बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
2: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
3: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साहजनक है और भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
2: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4,216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस

0: संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदांबी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में MSME के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

वंस अगेन वेलकम बैक इन योर शो गोंडा मैसेज मसाला नहीं गोंडा मैसेज मसाला बिल्कुल भी नहीं पर माय शी विद यू आई जस्ट सिंपल इज नॉट सो सिंपल सो स्टे ट्यून्ड एंड री वेलकम एवरीवन सो किसी का क्या खूब कहना है किसी ने क्या खूब कहा है कि जवाब नहीं मिला तो सवाल कम कर दिए बात नहीं हुई तो ख्याल कम कर दिए वक्त नहीं मिला तो इंतजार कम कर दिया अपनापन कम लगा तो अधिकार कम कर दिया और जब समझ आया कि जगह मांगने से नहीं मिलती तो चुपचाप अपनी जगह भी छोड़ दिया। अजीब नहीं था ये सफर बस एक बात समझ आ गई अजीब नहीं था ये सफर बस एक बात समझ आ गई जहां अपनापन मांगना पड़े वहां थोड़ा दूर हो जाना बेहतर है और जहां खुद को साबित करना पड़े वहां खुद में लौट आना बेहतर है। बहुत ही खूब कहा है किसी ने बहुत ही उम्दा कहा है किसी ने सो एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार सिसोदिया की उनको सुनना है गाना जमाने की बुराई मुझ में है सनम सो एंजॉय करते हैं जुनून पिक्चर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ राजेश सिसोदिया की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में और ये है आपका अपना फरमाइशी प्रोग्राम जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस आपके नाम से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन

माय गॉड, ये जुनून पिक्चर का गाना था जमाने की बुराई मुझ में है सनम। ये दर्द भरा बेवफाई वाला नगमा हमने एंजॉय किया है सिर्फ और सिर्फ राजेश सिसोदिया की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों कहना चाहूंगी कि फर्क तो बहुत पड़ता है फिर भी लोगों को कहने देते हैं, फर्क तो बहुत पड़ता है फिर भी लोगों को कहने देते हैं, हर किसी को नहीं समझा सकते इसलिए अब रहने देते हैं, मोड़ नहीं सकते किस्मत को अपनी तरफ इसलिए वक्त के साथ खुद को बहने देते हैं, और जवाब देने लायक नहीं बने अभी हम, जवाब देने लायक नहीं बने अभी हम इसलिए खुद को थोड़ी तकलीफ सहने देते हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश निधि की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना भूल भुलैया तेरी अखियां सैयां। सो एंजॉय करते हैं ये आंखों के लोचे वाला गाना, ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, रेखा जी का नगमा, अमीरी गरीबी पिक्चर का गाना सिर्फ और सिर्फ निधि की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

फरमाइश थी निधि की सीतापुर से बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले जैसे जैसे वक्त होता जाता है ना बाहर एक गजल का, मेरे को नज्म याद आते जाते हैं, फिर मैं बाहर एक गजल वाले जोन में जाने लग जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रोग्राम से ज्यादा बाहर एक गजल प्रोग्राम को प्यार करती हूँ, पता नहीं क्यों, गजलें ज्यादा पसंद है ना इसलिए शायद। तो कहना है कि वक्त के साथ चेहरों से नकाब उतरते देखे हैं, वक्त के साथ चेहरों से नकाब उतरते देखे हैं, जिन पर गुरूर था वो रिश्ते बिखरते देखे हैं। मतलबी दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता, हम जो है ना हमने अपनों को ही गैरों की खातिर बदलते हुए देखे हैं। अब तो खुद से भी शिकायत नहीं रही है जिंदगी, अब तो खुद से भी शिकायत नहीं रही है जिंदगी, हमने इस सफर में कई हम सफर बिछड़ते देखे हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में मुमताज अंसारी जी की, उनको सुनना है गाना तू मेरी जिंदगी है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आशिकी पिक्चर का अनुराधा जी की, कुमार सानू की आवाज में, मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय के ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे चलेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले दोस्तों कुछ कहना चाहूंगी मैं। आज बहुत कहना चाहती हूँ कि मेरे लहजे में बेरुखी नहीं बस मेरी पहचान है, मेरे लहजे में बेरुखी नहीं बस मेरी पहचान है। मैं वो लड़की हूँ जिसे अपनी बर्बादी पर भी गुमान है, मैंने आईनों से भी अपना रिश्ता कब का तोड़ दिया, जो था कभी मेरा उसे खुद ही पीछे छोड़ दिया। अब किसी अंजाम का मुझ पर कोई असर नहीं होता, मैं वो किस्सा हूँ जो खत्म होकर भी खत्म नहीं होता। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की, पटेल नगर गोंडा से। उनको सुना है गाना आएगी हर पल तुझे मेरी याद, और फिर उसी के साथ में निशा को सुनना है गाना आएगा मजा बरसात का। एंजॉय करते हैं ये दो गाना और इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, सो मच लव टू यू गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से एक नई सुबह, एक नई शुरुआत और एक नई जज्बात के साथ। बाय बाय।

0: नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स, और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन और नमन आपके ही प्यारे से कार्यक्रम बहारे गजल में। ये वो कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में हम बात करते हैं नींव के उन ईंट की जो हमको दिखाई नहीं पड़ते लेकिन जिनका बहुत बड़ा योगदान होता है साहित्य की दुनिया में, अदब की दुनिया में, संगीत की दुनिया में, गीत की दुनिया में। जी हाँ, वो लिख देते हैं, लोग गा देते हैं और हमारे दिल को सुकून मिल जाता है। अलग अलग शायर जिंदगी के अलग अलग मौजूआत को टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं वो हम आप सभी के जिंदगी को बारीकी से परखने वाला एक जौहरी है, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने जीवन में न जाने कितने पहलू देखे और कई सारे पहलुओं को छूती हुई उनकी गजल शुरुआत में जब वो आए तो झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तू बता तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। यहां से उन्होंने मुशायरे की दुनिया में कदम रखा और जब इस दुनिया को अलविदा कहने वाले थे तो उन्होंने लिखा कि मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी, पेशानी कहते हैं माथे को, मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी पे ये ऐलान लिख देना, मेरे खून से पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जो जिन्होंने दोस्त तो छोड़िए दुश्मनों के बारे में भी बात की तो बहुत खूब की। उन्होंने कहा कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी हम मुझको खानदानी चाहिए। मतलब वो कहते थे कि किसी तुच्छ व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है कि आप जरा अपने बराबर के या अपने से ऊंचे व्यक्ति से शत्रुता रखो, वो आपको कुछ सिखा के जाएगा जो खानदानी इंसान होगा। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। जी हाँ, ये वही शायर हैं जो लिखते हैं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जादू मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। लेकिन यहां पर आकर उन्होंने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा यह एक नामुराद आशिक है कि अगर महबूबा ने छोड़ दिया तो फिर
चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा नहीं, इसके आगे दो पंक्तियां और हैं जिसके जैसा आपको होना चाहिए। और वो पंक्ति उन्होंने लिखी है कि मुझसे बिछड़ कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, मुझसे बिछड़ कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। अब देखिए, एक व्यक्ति जो चलता है आंखों से, मोहब्बत की शायरी करता है, दुश्मन के तरीके बताता है, और वही व्यक्ति जब जीवन के आखिरी पड़ाव पर आता है और उनको लगता है कि कहा भी जाता है कि किसी भी कहानी का प्रारंभ उसके अंत का प्रतीक होता है, बिखरते मुरझाने को फूल, उदय होता छिपने को चंद, शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद। ये कहानी है और ये सच है कि फूल खिले हैं तो मुरझाएंगे, सूर्य या चंद्रमा अगर उदित हुआ है तो उसे अस्त होना ही पड़ेगा, बादल में अगर पानी है तो बरसेंगे और जल रहित हो जाएंगे, अगर दीप जला है तो उसको बुझना है। जिंदगी एक ऐसी कहानी है दोस्तों जिसकी हकीकत मौत है। और उन्होंने जब एक पिता बनकर लिखा, एक शायर बनकर, तो जब वो पिता के रूप में आए तो उन्होंने कहा कि सबकी नींदों में चलें, ख्वाबों में शामिल हो जाएं, सबकी नींदों में चलें, ख्वाबों में शामिल हो जाएं, लोग सोए हैं चलो शहर में दाखिल हो जाएं, कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, उसकी कोशिश है कि हम उसे मुफ्त में हासिल हो जाएं। और ये शायद दुनिया के हर पिता का दर्द बयां कर दिया इन दो पंक्तियों में। कहा कि ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाए। जी हाँ, जिंदगी के इतने सारे पहलुओं को जिस शायर ने छुआ, उनका बहुत ही मोहतरम और मोतबर नाम है, बहुत ही विख्यात नाम है, डॉक्टर राहत इंदौरी। आज उन्हीं पर करेंगे चर्चा, उनके जिंदगी के बारे में, उनकी गज़लों के बारे में, उनकी नज़मों के बारे में, उनके अपने व्यक्तित्व के बारे में। फिलहाल आपको ले चलते हैं एक प्यारे से संगीत में अंतराल के उस पार। हमारे साथ चंदन तिवारी जी जुड़े हैं, क्या बात है मनु सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सविता शास्त्री जी हैं चरण स्पर्श आपको, अरविंद जी हैं मनकापुर से। हेलो मनु सर, कैसे हैं आप? जी हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप बताइए आप कैसे हैं। फिलहाल आपको सुनाते हैं प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप

0: जी किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वास्तव भाई अरविंद जी लिखते हैं भाई, वाह वाह क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चलते हैं, बढ़ते हैं राहत इंदौरी साहब की तरफ। आपको बताएं कि जब वो मुशायरों की दुनिया में आए तो यहाँ पर गाने का रिवाज चलता था, लोग गाते हुए पढ़ते थे गजलों को। राहत इंदौरी साहब को या तो गाना आता नहीं था और या तो उन्होंने गाया नहीं, बात जो कुछ भी रही हो, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे शेर पढ़ने शुरू किए, प्रारंभ किए। शायद ही कभी उन्होंने कोई अपनी गजल गाई हो, खाली बोली है और वो सीधे रूह को छू जाती है। उन्होंने लिखा कि हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। मतलब हम अपनी जिंदगी यहां पर हार कर जा रहे हैं। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। सोचिए मतलब कितनी प्यारी बात है, कितना दर्द है कि मतलब जिस शहर में उनकी महबूबा रहती हैं, उस शहर के जितने भी लोग हैं उनके हाथों में राहत साहब के लिए पत्थर है कि आएंगे तो पत्थर से बात होगा। उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। अगर वो जा ही रहे थे तो कम से कम कुछ निशानी दे जाते, और निशानी में क्या देते, जख्म। हम क्या मांगते हैं निशानी के तौर पर, फूल। एक फिल्म देखी थी मैंने, और उस फिल्म में का नाम है मुगले आजम। बहुत ही प्यारी बात मुझको याद आ गई। तो वहां पर कव्वाली चलती है, कंपटीशन होता है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे। ये आप सभी लोगों ने सुनी ही होगी। तो जब कव्वाली समाप्त होती है तो दिलीप कुमार जो अनारकली बनी है उनको कांटे देते हैं, और जो एक जो उनसे प्रेम कम करती है, इसलिए प्रेम करती है कि वो रानी बन जाएगी, तो उसको गुलाब देते हैं। तो जब कांटा दिया और एक को गुलाब दिया, तो अभिनेता ने अभिनेत्री से पूछा कि मैंने आपको गुलाब दिया, आपको खराब नहीं लगा? अब यहां पर जिंदगी का फलसफा है, जिंदगी जो दे उसे आप किस प्रकार से लेते हैं। बहुत प्यारी बात मुझको लगी। तो उसने कहा जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझको कांटे दिए। तो पूछा गया क्यों, उत्तर मिला कांटों को मुरझाने का डर नहीं होता जहां पना, फूल मुरझा जाते हैं। सोचिए मतलब कोई कांटा पाकर भी कैसे खुश हो सकता है, ये उसके नजरिए पर डिपेंड करता है, ये उसका परसेप्शन है, समझ है कि उन्होंने हमको कांटा दिया है और उसको फूल दिया है तो उसके फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन मेरा कांटा हमेशा मेरे साथ रहेगा। किसी बड़े शायर का शेर है कि अपना प्यार फूलों की तरह ना हो, अपना प्यार फूलों की तरह ना हो, जो एक बार खिले तो मुरझा जाए, अपना प्यार कांटों की तरह हो जो एक बार चुभे तो बार बार याद आए। तो किसी मामले में जख्म मोहब्बत से ज्यादा अजीज हो सकते हैं, प्यारे हो सकते हैं। अब तो हर हाथ का पत्थर में पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। अब के मायूस हुआ यारों को रुखसत करके, जा रहे थे तो कोई जख्म लगाते जाते। रेंगने की भी इजाजत नहीं हमको वरना, रेंगने की भी इजाजत नहीं हमको वरना, हम जिधर जाते नए फूल खिलाते जाते। मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, सहरा मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान का पत्थर कितना गर्म होगा आप अंदाजा लगाएं। मैं तो जलते हुए सहराओं का एक पत्थर था, अरे तुम तो दरिया थे मेरी प्यास बुझाते जाते। चलो मैं गर्म था, सहरा का पत्थर था, आप तो पानी थे, आप तो मेरी प्यास बुझा सकते थे। और अंत की पंक्तियां तो आहा, कहते हैं कि मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, मुझको रोने का सलीका भी नहीं है शायद, लोग हंसते हैं मुझे देख के आते जाते। उन्होंने कहा कि मैं मुझको शायद रोने का हुनर भी नहीं आता, जब मैं रोता हूं तो लोग मुझको देखकर हंसते हैं। अब सोचिए आप अपना गम दिखा रहे हो, सामने वाला हंसे तो कैसा लगेगा। देवदास फिल्म की एक शायरी है कि दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो कोई बात नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करता है। जी हाँ, किसी का दिल जल रहा है और किसी के लिए वो बहुत प्यारी पंक्तियाँ हैं। अपना अपना देखने का नज़रिया है। हमारे साथ धर्मेश त्रिपाठी जी हैं। जी हाँ, शुभ संध्या, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और हमारे साथ वर्षा टेल सिंगर वाय शिल्पी बनर्जी जी, चरण स्पर्श आपको, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, जो भी गीत गाते बहुत अच्छा लगता है, हमारे साथ उपस्थित हैं। और अरविंद जी हैं भाई हमारे साथ। और जी, और आइए अब आपको ले चलते हैं गज़ल की एक दुनिया में। और ये बहुत ही प्यारी गज़ल है और मुझको लगता है कि मैंने स्वयं खुद, मुझे याद है कि पिछले 3-4 महीनों से ये गज़ल नहीं सुनी है। मेहंदी हसन की गज़ल में, मेहंदी हसन की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल है। और इसके शब्दों पर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये गज़ल आपके रूह में उतर रही है। तैयार हो जाइए इस प्यारी सी गज़ल के लिए। आपसे मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार, तब तक सुनते रहिए। और रेडियो गैन 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन।
1: यूं न मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल बादे सबा हो जैसे, बादे सबा सुबह की खूबसूरत हवा। तो पेशे खिदमत है।

चौधरी साहब, बादल भाई जरा सी लाइट देता कि मैं कुछ आंखों में आंखें मिले, कुछ हम ख्याल हों, कुछ जरा सी लाइट आ गई, कोई पता नहीं लग रहा कि हाँ जरा सी और।

जी हाँ, तो आप जिनके करीब होते हैं वास्तव में वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं। जी बहुत ही प्यारी सी गजल हमने आपको सुनाई ये पंकज उदास की आवाज में। हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी भी हैं। मनुष्य जी गुड इवनिंग, यू वेलकम। सर जी आप जितने करीब होते हैं वो बड़े खुशनसीब होते हैं। विजयपाल यादव जी हैं भाई जी, आपको भी प्रणाम करते हैं। और जी अब चलते हैं राहत इंदौरी साहब की तरफ। उन्होंने लिखा, एक इंसान आपकी जिंदगी में कभी ऐसा आता है कि जिसका गलत भी आपको सही लगता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि इस दुनिया में कम से कम इंसान के पास एक ऐसा साथी होना चाहिए जो आपको सही या गलत से जज न करे, वो सिर्फ आपके साथ रहे। अगर हम सही हैं तब तो दुनिया हमारा साथ दे सकती है, लेकिन अगर कहीं हम थोड़े से गलत हो गए और ऐसे मौके पर जो हमारा साथ देता है वो हमारा अपना होता है, जिसके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि हम किधर खड़े हैं। बात क्या है, ये बात नहीं है, बात ये है कि वहाँ जिस तरफ भी वो खड़ा है मैं उस पक्ष के साथ हूँ। और ऐसा अगर एक दोस्त भी आपके पास हो तो आप समझिए आप बहुत खुशनसीब हैं, जो आपको गलत या सही, राइट या रॉन्ग से न पहचानता हो, बस आपको जानता हो और आप गलत नहीं हो सकते ये उसका एहसास हो। रातिंदुरी ने लिखा कि तेरी हर बात मोहब्बत में गंवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गंवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। खसारा मतलब नुकसान। मैं एक बात मुनव्वर राणा साहब को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि मोहब्बत बनियों के बस की बात नहीं है। तो लोग बुरा माने भाई, हो सकता है उस समाज में कोई उस वर्ग विशेष का व्यक्ति बैठा रहा हो। तो फिर उन्होंने आगे कहा कि मेरा तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता हो कि हमने क्या लिया उसके बदले क्या दिया, या हमने क्या दिया और उसके बदले हमें क्या मिला। अगर आप तिजारत जानते हैं, अगर आप हर चीज़ को व्यापार के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बाकी सब कीजिए। ये वो काम है जो मुनाफा और घाटा ये नहीं देखता। राहत इंदौरी साहब ने साफ साफ कहा, तेरी हर बात मोहब्बत में गंवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, नुकसान किए हुए बैठे हैं, लेकिन अफसोस नहीं है, ठीक है, अच्छा है। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। कभी आपने भी महसूस किया होगा कि कॉलेज की लाइफ हो या आपकी स्कूल लाइफ हो या ऐसे कोई संबंध रहे हो तो लोग क्या हाल है उनका भाई, होता है कि नहीं, सभी के साथ होता है। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, अब देखिए ये सियासत पर टिप्पणी है, बहुत देखिए शायर अपनी बात को कितनी शालीनता के साथ कहते हैं, बगैर किसी खराब बात को कहे हुए। उन्होंने कहा, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। एक चिंगारी थी, उसने कहा ये तो आग भड़का सकती है, तो आंधी को इशारा किया कि चिंगारी है जरा इसको आग दो। व्यक्ति ने समय का फायदा उठाया, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने,
आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, अरे चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। वो अध्यापक भी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पढ़ाए हुए पता नहीं कितने लोग शायद हो गए। वो जो गजल

उसकी कत्थई आंखों में है, तो उसमें एक पंक्ति है कि इश्क विश्क के सारे नुस्खे मुझसे पूछते रहते हैं, ताहिर वाहिर जौहर वौहर कौहर वौहर सब। मतलब उन्होंने कई सारे शायरों को बताया, नाम ले लिया कि ये लोग हमसे शायरी सीख कर गए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज जो दुनिया में जिनका बड़ा नाम है वो हमारा पैर छू कर गए हैं, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, ने कहा एक बूंद हूँ और एक बूंद में भंवर हूँ। मतलब आप जानते होंगे कि भंवर में आप फंसे तो फिर डूबते चले जाएंगे। मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। आपने ठीक किया, हमसे अलग हो गए। मुंतजिर मतलब होता है इच्छा रखना। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। चाहता हूं कि जरा सितारे सो जाएं तो अपने चांद को इशारा करूंगा, अरे भाई आ जाओ। और आपको याद होगा वो दौर जब छतों पर लोग एक दूसरे को देखकर काम चला लिया करते थे, और वास्तव में प्रेम उस समय दर्शन का विषय होता था। और मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कह सकता हूँ कि प्रेम फिलॉसफी का विषय है, दर्शन का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय बिल्कुल नहीं है। आज समाज के कुछ लोगों ने प्रेम को प्रदर्शन का विषय बना रखा है, जो ठीक नहीं है। ये दर्शन का विषय है, ये बहुत पाकीज़ा चीज़ है। हमारे साथ अरविंद जी हैं। चारों तरफ बिखर गई सांसों की खुशबुएं, राह वफा में आप जहां भी जिधर गए। जी हां, आपने पंक्तियां मेरे लिए लिखी तो मैं कहूँगा आपके लिए कि कल किसने दिन भर मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। जन्माष्टमी की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आसमान वाले ने चाहा तो शनिवार को आपसे पुनः मुलाकात होगी आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, प्यार की भाषा। फागुन अपने रंग धरती पर बिखेरता हुआ, झपलता से गुलाल से गालों को आरक्त करता हुआ, चंचलता से पानी की फुहारों से लोगों के दिलों और उमंगों को भिगोता हुआ चला गया। सेमल के लाल नारंगी फूलों से लदे पेड़ और अलग अलग रंगों में यहाँ वहां से झांकते बोगनवेलिया के झाड़ हर ओर मानो रंग ही रंग बिखरे हुए थे। फागुन जाते जाते गर्मियों के आने का संकेत भी कर गया। हालांकि उस समय भी धूप के तीखेपन में कोई कमी नहीं थी, पर सुबह शाम हल्का खुशनुमा मौसम हो ही जाता था। लेकिन जाते जाते वो अपने साथ रंगों की मस्ती तो ले ही गया, साथ ही मौसम की गुनगुनाहट भी। उफ, ये गर्मी, I simply hate it। माथे पर आए पसीने को दुपट्टे से पोछते हुए इला ने अपने गॉगल्स आंखों पर सटा दिए। लगता है हर समय या तो छतरी लेकर जाना होगा या फिर एसी कार में जाना पड़ेगा, कहते कहते वो खुद ही हंस पड़ी। तो मैडम, ये काम क्या इस बंदे को करना होगा कि रोज आपके घर से निकलने से पहले फोन करके आपको छतरी रखने के लिए याद दिलाए, या फिर खुद ही छतरी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होना पड़ेगा। व्योम चलते चलते ठहर गया था। उसकी बात सुनकर इला को और भी हंसी आ गई। ज्यादा स्टाइल मारने के बजाय कुछ ठंडा पिला दो तो बेहतर होगा, वो बोली। क्या लोगी, कोल्ड कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? व्योम बोला, कोल्ड कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। इला चहकी, चलो यहीं किसी फूड कोर्ट में बैठते हैं, व्योम बोला। अब तक दोनों राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंच चुके थे। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की यहाँ रोज की बात हो गई थी। चाहे सुबह हो, दोपहर, शाम या रात, लोगों की आवाजाही में कोई कमी नजर नहीं आती थी। जहां जाओ हर तरफ शोर और भीड़ ही नजर आती है। पहले ही क्या कम पोल्यूशन था जो अब ये नॉइस पोल्यूशन भी झेलना पड़ता है, इला ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा।

0: आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की भाषा। अब तक आपने सुना इला और व्योम एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दिन गर्मी के टाइम वो दोनों मिलने बाहर गए हुए थे। अब आगे।
1: अच्छा है यहाँ एसी है,
0: व्योम मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, जिसे देखकर इला जोर से हंस पड़ी। उड़ा लो मजाक मेरा, जैसे कि मुझे ही गर्मी लगती है। मैडम, गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी, अब बिन मौसम बरसात तो आने से रही, व्योम ने कोल्ड कॉफी का सिप लेते हुए कहा। उसे इला को छेड़ने में बहुत मजा आ रहा था। छेड़ लो बच्चू, कभी मेरी भी पारी आएगी, इला ने बनावटी गुस्सा दिखाया। बंदे को छेड़ने का पूरा अधिकार है, आखिर प्यार जो करता है, और वो भी जी जान से। व्योम की बात से सहमत इला ने सहमति में सिर हिला दिया। 2 साल पहले हुई उनकी मुलाकात उनके जीवन में प्यार के इतने सतरंगी रंग भर देगी, तब कहां सोचा था उन्होंने। बस अब तो दोनों को इंतजार है एक अच्छी सी नौकरी का, फिर तो तुरंत शादी के बंधन में बंध जाएंगे। व्योम MBA कर चुका था और इला मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहती थी।
1: चलो अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है, माँ डांटेगी कि रोज रोज आखिर व्योम से मिलने क्यों जाना है,
0: इला उठते हुए बोली। दोनों ग्रीन पार्क स्टेशन से निकलकर बाहर आए ही थे कि वहां बारिश हो रही थी।
1: अरे ये क्या, पीछे तो कहीं भी बारिश नहीं थी, फिर यहाँ कैसे हो गई?
0: लगता है मौसम भी आज हम पर मेहरबान है, जो बिन मौसम की बारिश से एकदम सुहाना हो गया है। इला हैरान थी। मुझे तो लगता है कि 2 आवारा बादल के टुकड़े होंगे, जो प्यार के नशे की खुमारी में आसमान में टकराए होंगे और बारिश की कुछ बूंदें आ गई होंगी, वरना केवल तुम्हारे ही इलाके में बारिश ना हुई होती। जैसे ही उनके नशे की खुमारी उतरेगी, दोनों कहीं दूर छिटक जाएंगे और बस बारिश भी गायब हो जाएगी। आसमान को देखता हुआ व्योम कुछ शायराना अंदाज में बोला, तुम भी किसी आवारा बादल की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्यार की खुमारी भी एक दिन उतर जाए और तुम भी मुझसे छिटक कर कहीं दूर चले जाओ। इला की गंभीर आवाज में एक दर्द छिपा था, शायद उस अनजाने भय की निशानी था जो हर प्यार करने वाले के दिल में कहीं ना कहीं छुपा होता है।
1: कैसी बात कर रही हो, आखिर तुम सोच भी कैसे लेती हो ऐसा, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर,
0: व्योम भी भावुक हो गया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की भाषा। अब तक आपने सुना इला और व्योम एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दिन गर्मी के टाइम वो दोनों मिलने बाहर गए हुए थे। अब आगे, मेरा प्यार इतना खोखला नहीं है, मैं खुद को इसे साबित नहीं करना चाहता, पर कभी मन में शक आए तो आजमा लेना। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, इला ने व्योम का हाथ कस कर थामते हुए कहा। जब से वो उसकी जिंदगी में आया था, उसे लगता था कि हर चीज बहुत खूबसूरत हो गई है। कितना परफेक्ट इंसान था वो। प्यार, सम्मान देने के साथ साथ उसे बखूबी समझता भी था। बिना कुछ कहे भी जब कोई आपकी बात समझ जाए तो वही प्यार कहलाता है। इला को एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का जॉब मिल गया और व्योम का विदेश से ऑफर आया, लेकिन वो इला से दूर नहीं जाना चाहता था। इला के बहुत समझाने पर वो मान गया और सिंगापुर चला गया। दोनों ने तय किया था कि 6 महीने बाद जब दोनों अपनी अपनी नौकरी में सेट हो जाएंगे तभी शादी करेंगे। फोन, मैसेज और वेबकैम पर रोज उनकी बातें होती और अपने दिल का सारा हाल एक दूसरे से कहने के बाद ही उन्हें चैन आता। इला कंपनी के एक प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए जयपुर गई थी, क्योंकि उसी मार्केट में उन्हें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना था। वहां से वापस आते हुए वो बहुत उत्साहित थी, क्योंकि उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसने फोन पर ये बात व्योम को भी बता दी थी। अब एक प्रमोशन उसका ड्यू हो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नियति उसकी खुशियों के चटकीले रंगों में काले स्याह रंग उड़ेलने वाली है। रात का समय था, न जाने कैसे ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ा और उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई। ड्राइवर की तो तभी मौत हो गई, लेकिन हफ्ते भर बाद जब इला को होश आया तो पता चला कि उसे सिर पर गहरी चोट आई थी और उसकी आवाज ही चली गई थी। धुंधला सा कुछ याद आ रहा था उसे कि वो व्योम से बात कर रही थी कि तभी सामने से आते ट्रक को देखकर उसे लगा था कि शायद वो व्योम से आखिरी बार बात कर रही है और वो चिल्लाकर ड्राइवर को सचेत करना ही चाहती थी कि आवाज ही नहीं निकली थी। सब कुछ खत्म हो चुका था उसके लिए। परिवार के लोग इसी बात से खुश थे कि इला सकुशल थी, उसकी जान बच गई थी, पर वो जो हर पल व्योम से बात करने को लालायित रहती थी, नियति से खफा थी, जिसने उसकी आवाज छीनकर व्योम को भी उससे छीन लिया था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की भाषा। अब तक आपने सुना व्योम और इला एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन एक एक्सीडेंट में इला की आवाज चली गई और इला ने व्योम से सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए। अब आगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि व्योम अब तुम्हें नहीं अपनाएगा? वो तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ ने लाख समझाया पर इला का दर्द उसकी आंखों से लगातार बहता रहा। वो केवल लिखकर ही सब बात करती। उसने सब से कह दिया था कि व्योम को इस बारे में कुछ ना बताया जाए और ना ही वो अब उससे कांटेक्ट रखना चाहती थी। अपने प्यार पर इतना ही भरोसा था तुझे? उसकी फ्रेंड रमा ने जब सवाल किया तो इला ने लिखा, अपने प्यार पर तो मुझे बहुत भरोसा है, पर मैं आधी अधूरी इला जो अपनी बात तक ठीक से ना कह सके उसे सौंपना नहीं चाहती। वो एक परफेक्ट इंसान है, उसे परफेक्ट ही मिलना चाहिए सब कुछ। व्योम ने बहुत बार उससे मिलने की कोशिश की, फोन किया, मैसेज भेजे, चैट पर इनवाइट किया, पर इला की तो जैसे आवाज के साथ साथ भावनाएं भी मौन हो गई थीं। अपने सपनों को उसने चुप्पी के तालों के पीछे कैद कर दिया था। उसकी आवाज पर कितना फिदा था व्योम। कैसी अजीब विडंबना है ना जीवन की, जो चीज सबसे प्यारी थी उससे वही छिन गई थी। 3-4 महीने बाद व्योम के साथ उसका संपर्क बिल्कुल ही टूट गया। व्योम ने फोन करने बंद कर दिए थे। ऐसा ही तो चाहती थी वो, फिर क्यों उसे बुरा लगता था? कई बार सोचती थी कि आखिर व्योम भी किसी आवारा बादल की तरह ही निकला, जिसके प्यार के नशे की खुमारी उसके एक एक्सीडेंट के साथ उतर गई। वक्त गुजरने के साथ इला ने अपने को संभाल लिया। उसने साइन लैंग्वेज सीख ली और मूक बधिरों के एक संस्थान में नौकरी कर ली। वक्त तो गुजर जाता था उसका, पर व्योम का प्यार जब तब टीस बनकर उभर आता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसने व्योम को बिना कुछ कहने सुनने का मौका दिए उसके प्यार का अपमान किया था या व्योम ने उसे छला था। जब भी बारिश आती तो आवारा बादल का ख्याल उसे आ जाता। वो मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई जानी पहचानी आहट, एक परिचित सी खुशबू और दिल के तारों को छूता कोई संगीत सा उसे अपने कानों में बजता महसूस हुआ।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है प्यार की भाषा। अब तक आपने सुना, इला और व्योम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। अलग अलग देशों में होने के बावजूद रोज ढेरों बातें करते थे। लेकिन जब एक एक्सीडेंट में इला ने अपनी आवाज खो दी तो उसने व्योम से दूरी बना ली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि व्योम को एक आधी अधूरी जिंदगी मिले। एक दिन वो एक मॉल में थी, तभी व्योम उसे मिला। अब आगे एस्केलेटर पर ही पीछे मुड़कर देखा, चटकीले रंगों में मानो फूल ही फूल हर ओर बिखरते महसूस हुए। जल्दी जल्दी वहां से कदम बढ़ाने लगी, मानो उस परिचय के बंधन से छूटकर भाग जाना चाहती हो। अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया उसने। ओह, इस छुअन के लिए पूरे एक बरस से तरस रही थी वो। मन में असंख्य प्रश्न और तरंगे बहने लगी, पर कहे तो कैसे कहे, वो लब हिले भी तो वो सच जान जाएगा। तब हाथ छुड़ाना चाहा, पर नाकामयाब रही। भरपूर नजरों से व्योम ने इला को देखा, प्यार था उन आंखों में, वही प्यार जो पहले इला को उसकी आंखों में दिखता था। कैसी हो, व्योम ने हाथों के इशारे से पूछा। मुझे बस इतना ही समझा, एक बार भी मेरे प्यार पर भरोसा करने का मन नहीं हुआ तुम्हारा, अनगिनत प्रश्न व्योम पूछ रहा था। पर ये क्या, वो तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा था। अवाक थी इला। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, इला ने इशारे से पूछा। क्योंकि तुम नहीं बोल सकती। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आवाज चली गई तो मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ दूंगा। मैं कोई आवारा बादल नहीं। जब तुम्हारे मुझसे कांटेक्ट ना रखने की वजह पता चली तो मैंने ठान लिया कि मैं भी अपना प्यार साबित करके ही रहूंगा। बस तब से साइन लैंग्वेज सीख रहा था। अब जब मुझे आ गई तो तुम्हारे सामने आ गया। उसके बाद इशारों में ही दोनों घंटों शिकवे शिकायतें करते रहे। इला के आंसू बहे जा रहे थे। उसके आंसू पोंछते हुए व्योम बोला, लगता है दो आवारा बादल इस बार तुम्हारी आंखों से बरस रहे हैं। व्योम के सीने से लगते हुए इला को लगा कि व्योम वो बादल है जो जब आसमान में उड़ता है तो बारिश को तरसती धरती उसकी बूंदों से भीग जी उठती है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी प्यार की भाषा। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: कहीं दोस्ती की वफा है तो कहीं सत्यम शिवम का शोर, इनके बिना हर महफिल अधूरी, हर साज लगता है बेनूर।
2: मेलोडीन की वो प्यारी तान और वायलिन का वो मीठा शोर खींच ले जाता है हमें फिर से बीते सुनहरे दौर की ओर। एक लक्ष्मी की धुन तो दूजे प्यारे का सांझ निराला था, इन्होंने तो हर टूटते दिल को अपने संगीत से सवारा था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
2: तो चलते हैं रात के सफर में, आज बहुत ही दो प्यारे से हमारे अनमोल सितारों को लेकर के, जिनके सफर में आज हम बताने वाले हैं उनके कुछ बीते लम्हों को और कुछ गानों के पीछे की कहानियों को। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना सफर भूले बिसरे गीत जो रात के सफर में है।

जी हाँ दोस्तों, दोस्ती की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी कि दोस्ती अगर किसी से हो जाती है तो वो इस जन्म की मुझे लगता है कि नहीं होती है, वो दोस्ती होती है हमारे काफी पुराने जन्मों की। कुछ ऐसी ही मिसाल इन दोनों की दोस्ती ने करी, कुछ ऐसी मिसाल जो कि हमारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम यूं ही नहीं पड़ा था। हम सब बताएंगे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कैसे बनी। बिल्कुल, इन दोनों की मुलाकात किसी स्टूडियो में नहीं बल्कि एक मैच के फील्ड में हुई थी। प्यारेलाल जी अपने दोस्तों के साथ मैच देखने गए थे। लक्ष्मीकांत जी ने आकर उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। बस फिर क्या था, वहीं उनकी दोनों की शुरुआत हुई और मुलाकात। कह सकते हैं कि दोस्ती की मुलाकात या शुरुआत उसी समय, लक्ष्मीकांत जी करीब 15 साल के थे और प्यारे लाल जी मात्र 12 साल के। ये दोस्ती महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये दोस्ती की मिसाल बनने के लिए ही इन दोनों को ईश्वर ने मिलवाया था। और शायद आज उनकी जोड़ी हम सभी के जहन में इस तरीके से है जैसे मानो कि कोई न भूलने वाला कुछ ऐसा फूल हो। जैसे हम कई बार कभी बगीचे में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर कहाँ पड़ती है, गुलाब के फूल पे, है ना। तो ठीक वैसे ही इन दोनों जोड़ियों के लिए हम गुलाब की दोस्ती को कायम कर सकते हैं। आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा नगमा

0: अभी आपने सुना आरजे ख्वाहिश की पसंद का एक बहुत ही प्यारा सा गाना। क्यों आरजे ख्वाहिश?
1: बिल्कुल आरजे गुमसुम। और ये गाना आज बड़ा ही बेहद सुरीला सा लगा। वैसे कभी कभी हम लोग कभी जाते हैं ना तो सफर के दौरान सुनते हैं, लेकिन आज जब हम लोगों ने सुना तो बड़ा ही मजा आ गया।
0: यही तो बातें होती है पुराने गानों की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं लिसनर्स, कि हम सभी को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक मेंटोर की ज़रूरत होती है। ज़रूरत होती है कि हमारे स्ट्रगल में कोई ना कोई हमारा साथ दे, हमें आगे बढ़ाए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के जीवन में इस रोल को अदा किया हमारी हम सभी की प्यारी लता मंगेशकर जी ने। लता जी ने इन्हें आगे बढ़ाया, बहुत साथ दिया इनका। लता जी ने ही कोलाबा के रेडियो क्लब में लक्ष्मीकांत जी को मेडोलिन बजाना सिखाया। उनके हुनर से वो बहुत ही प्रभावित थी। लता जी को उनका मेडोलिन बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने ही इन दोनों को संगीत अकादमी सुरील कला केंद्र में दाखिला भी दिलाया। इतना ही नहीं, लता जी उस वक्त बड़े संगीतकारों से इनकी सिफारिश भी करती थी ताकि इन्हें काम मिल सके और इनके हुनर को पहचान मिल सके।
1: बिल्कुल, तो आपने सुना ना कि किसी न किसी एक मेंटोर को होना जरूरी होता है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जो कि दोनों ने फिल्माया है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, और जिनका साथ दिया था हम सबकी स्वर कोकिला लता जी ने।

कहते हैं कि हर किसी के नाम के आगे कोई ना कोई ऐसी पहचान जुड़ी हुई होती है, और ये भी कहा जाता है कि हर किसी के नाम का एक अर्थ होता है। नाम का अर्थ अगर हम जान लें तो उसके बारे में पूरी ही पूरी उनके जीवन की विस्तृत जानकारी हमें मिल सकती है। और बिल्कुल हर किसी के नाम का कोई ना कोई अर्थ भी होता है। लक्ष्मीकांत जी के नाम का भी एक बहुत बड़ा अर्थ है, आइए हम आपको बताते हैं। लक्ष्मीकांत जी का जन्म दिवाली के दिन हुआ था, जब लक्ष्मी पूजन हो रहा था, इसलिए उनका नाम लक्ष्मीकांत रखा गया। साथ ही साथ प्यारे लाल जी के नाम के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि हमें जब सबसे प्यारी कोई चीज लगती है तब हम उनके घर में निक नेम रख देते हैं, यानी कि उनके घर का नाम। आजकल सभी के घर का नाम कुछ न कुछ है, निक नेम मतलब छोटा किसी का नाम का स्वरूप। ऐसे ही प्यारे लाल जी का जब नाम पड़ा तो वो घर में सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे, इसीलिए आज तक उनके नाम के आगे प्यारे लाल फेमस हो गया। एक बार प्यारे लाल जी विदेश जाकर म्यूजिक सिखाना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने उन्हें बड़े भाई की तरह समझाया कि हम एक साथ कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे, और प्यारे लाल जी रुक गए। और फिर क्या था वो तो आप सभी को पता ही है। इनकी जोड़ी के तौर पर पहली रिलीज फिल्म पारसमणि, जो कि 1963 में आई थी। इनके गाने हंसता हुआ नूरानी चेहरा आज भी वो सबके दिलों में छाया हुआ है। और एक गीत और भी था जो वो जब याद आए, ये जबरदस्त हिट हुए थे दोनों सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

इस जोड़ी ने 1963 से 1998 के बीच करीब 635 से भी ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, हम सबका फेवरेट 1 2 3 तेजाब मूवी का ये गाना, जिसमें की धुन जो दी थी वो दी थी लक्ष्मीकांत जी ने। और ये गाना उन्होंने कहाँ सुना आपको पता है? ये गाना उन्होंने गणेश पंडाल में बजते हुए सुना था और फिर उन्होंने इसे डमी लिरिक्स में लिखा और जावेद अख्तर जी को सुनाया। जावेद अख्तर जी को ये बहुत ही पसंद आया और उसके बाद उन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड भी किया। 1964 की फिल्म दोस्ती ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे के लिए इन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा संगीत।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
0: कैसे?

उन्हें मिले। ये जोड़ी हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और लंबे समय तक चलने वाली संगीतकार जोड़ियों में से एक है। इनके बनने और सफलता इन दोनों की कहानियों में किसी एक पटकथा से कम नहीं है। मोहम्मद रफी के साथ इनका रिश्ता सबसे ज्यादा और सबसे अहम जोड़ी के नाम पर माना जाता है। 1998 में लक्ष्मीकांत जी के निधन के बाद ये ऐतिहासिक सफर खत्म हुआ, लेकिन प्यारे लाल जी ने आज भी उनकी यादों को संजो कर रखा हुआ है। दोनों ही बेहद करीब परिवारों में से एक और संगीत के जरिए अपनी किस्मत को संवारने वाले थे। कहा जाता है कि जब लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे तो प्यारे लाल जी की धुन अपने आप बन जाया करती थी। बस तब क्या था, आप उनकी जोड़ी के संगीत और उनके गानों को आज भी दिल से सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके प्यारे से एक और गीत को।

लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी की जुगलबंदी का तो क्या ही कहना। जहाँ लक्ष्मीकांत जी गानों की धुन बनाते थे और गायकों के साथ काम करते थे, वहीं पर प्यारे लाल जी को इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का और उन्हें अरेंज करने का बहुत शौक था और वो इसमें बहुत माहिर भी थे। वे लगभग अपने सभी गानों में वायलिन जरूर बजाते थे और इसी के लिए बहुत मशहूर भी थे। आइए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

स्वतंत्र संगीतकार बनने से पहले उन्होंने कल्याण जी आनंद जी के साथ सहायक यानी असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने आरडी बर्मन और एसडी बर्मन के लिए म्यूजिक अरेंजमेंट भी करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं ना कि जब बड़ी सफलता सामने हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। उनकी और एक बड़ी सफलता 1964 की फिल्म दोस्ती ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन जय किशन जी के जाने के बाद राज कपूर ने एलपी को चुना और उन्होंने बॉबी और सत्यम शुम सुंदरम जैसा कालजयी संगीत भी दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जी का पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुंडालकर और प्यारे लाल जी का पूरा नाम प्यारे लाल राम प्रसाद शर्मा है। तो आइए उन्हीं की संगीत से ये जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं।

लता मंगेशकर जी ने जब लक्ष्मीकांत जी को मैंडोलिन बजाते हुए देखा तो वो बहुत ही खुश हुई और उन्हें उनका मैंडोलिन बजाना बहुत पसंद भी आया, जिसके बाद उन्होंने सुरील कला केंद्र में उन दोनों का दाखिला भी करवा दिया। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस दौर में लता मंगेशकर जी ने उनकी बहुत मदद की। शंकर जयकिशन और नौशाद जैसे बड़े बड़े सिंगर्स से उनकी सिफारिश भी की ताकि उन्हें काम मिल सके और वो आगे बढ़ सके। कहते हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल पूरक बन जाते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, जहां लक्ष्मीकांत जी बहुत मिलनसार प्रोड्यूसर थे और सिंगर्स के साथ बहुत ही प्यार से डील करते थे। वहीं प्यारेलाल जी थोड़े शांत स्वभाव के थे और जल्दी किसी से बात करना या घुलना मिलना उन्हें पसंद नहीं था। वो हमेशा सबको गाइड तो करते थे पर खुलकर कभी किसी से बात नहीं किया करते थे। आज भी जब आप पुराने गानों में मैडोलिन की प्यारी सी आवाज सुनते हैं तो समझ जाइए कि वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ही कोई गाना है। जहां बड़ा सा वायलिन सुनाई दे वहां प्यारेलाल जी का जादू, तो लक्ष्मीकांत जी की धुन होना तो लाजमी ही है। तो आइए चलिए सुनते हैं इन्हीं का एक प्यारा सा गीत।

0: महफिल आज की यही थमती है, पर यादें यही रहेंगी। उनकी हर एक सरगम कानों में मधुर बन कर बहेगी। एलपी के सुरों के साथ विदा लेते हैं आज हम।
1: वक्त के पन्नों से यादों का वो दौर नहीं मिटता, संगीत का ये बहता हुआ दरिया कभी नहीं रुकता। लक्ष्मीकांत की धुन और प्यारे लाल का वो जादू आज भी कर देता है हर धड़कन को बेकाबू। फिर मिलेंगे भूले बिसरे के बहुत सारे सुरीले गीतों के साथ मिटाने हर गम को। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश और आपसे लेती हूँ विदा। रात के सफर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
0: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8880094000।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।